0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
6: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
5: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
6: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
5: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: सुप्रभात, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं गागन, या आप जा रहे हैं पागवाड़ी की साइड? मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इस स्टेशन को आपको सुन के बहुत आनंद आने वाला है। आनंद के साथ है आप। और सुबह सुबह का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, और आज का इस सुबह का जो समय है और भी स्पेशल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ आपकी फिटनेस का राज। वो कौन है? बिल्कुल मेरे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मैदान जी स्टूडियो में मौजूद है। हमने उनको आमंत्रित किया है आपके लिए स्पेशल। सुबह सुबह मैंने उनको परेशान कर दिया है, हालांकि उनकी क्लासेस होती हैं, बट स्पेशली वो मेरे लिए आई हैं। आई एम सो हैप्पी। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में, हमारे एफएम मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: हाँ, वो बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा है बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह सुबह जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत में कौन कौन से योगा की एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं?
1: देखिए, पहले जैसे आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम को हम अपनी एक्सरसाइज में हम अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की सारी स्टिफनेस दूर हो जाती है और हम अपने डेली रूटीन के काम आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा समय भी ना हो तो हम 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का सूक्ष्म व्यायाम करें, और उससे हमारी बॉडी एकदम से एनर्जाइज हो जाती है। बाकी जैसे आप कहीं ड्राइविंग पे हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप आराम से लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। अगर हम अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और हमारी पूरी दिनचर्या अच्छे से बीतती है। तो आप गाड़ी में बैठे बैठे आप कुछ तो नहीं कर सकते, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम कभी अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते।
0: बिल्कुल, एग्जैक्टली।
1: तो जैसे जिन श्वासों से हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जो श्वासें हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उनपे कभी अवेयर नहीं होते, उनपे कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे अगर हम ड्राइविंग करते टाइम, तो हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा, फोकस्ड रहेगा, और हमारी ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी, हम अपने जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम। और इसके अलावा सुबह सुबह और कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी सुपर फास्ट हो गई है, बहुत ही लोगों को जल्दी रहती है हर चीज की, तो एक्सरसाइज में भी जल्दी होती है, तो क्या योगा करते टाइम भी हमें जल्दी मचानी चाहिए, बड़ी शांति के साथ करना चाहिए?
1: देखिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
1: टाइम तो होना ही चाहिए।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें। उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं, बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
0: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
1: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
0: ठीक है,
1: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है। हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके
1: मैं आपको एक मुद्रा और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है,
0: प्लीज,
1: और सबके लिए बहुत नेसेसरी है, वो बताना चाहती हूँ, वो है वायु मुद्रा।
0: वायु मुद्रा,
1: तो वायु मुद्रा से जैसे हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, जो भी किसी को कोई भी पेन्स है, हेडेक है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, तो अगर हम वायु मुद्रा 15 मिनट्स के लिए लगा लें तो हमारी बॉडी हील होने लगती है और हमारी बॉडी के पेन्स चले जाते हैं।
0: वाओ, क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी है कि आप मतलब इन चीजों से भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। स्ट्रेस का कितना जो है योगा से बेनिफिट होता है?
1: देखिए, स्ट्रेस का तो 100% बेनिफिट होता है।
0: ओके,
1: अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं
0: जी,
1: तो उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स पे के लिए अवेयर होते हैं, और आपका स्ट्रेस योग करने से अपने आप ही चला जाता है। आप आधा घंटा योग करके देखें, आपका स्ट्रेस एकदम से ही गायब हो जाएगा, ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
0: वाओ, दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी, आपने मोटिवेट किया। मैं जाते जाते
1: मेडिटेशन तो है ही भाई, आपको स्ट्रेस से दूर करने
0: के। कई लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़े सारे ख्याल आते हैं और मन जो है लगता ही नहीं है स्थिरता के साथ।
1: देखिए, मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है, जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं,
0: ओके,
1: उसमें डेफिनेटली 100% ध्यान लग जाता है,
0: ओके,
1: और बैठे बैठे अपनी मैट पे जिस भी जगह पर जाना चाहिए वहाँ जा सकते हैं।
0: क्या बात,
1: हमें कहीं मंदिर और गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी मैट पे ही बैठ के मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं।
0: अरे वाह, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती है। रुचि मैम, थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप आए और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जानकारियां दी, स्पेशली हेल्थ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहें?
1: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी दिनचर्या में, जैसे हम अपने डेली और अपने कार्य करते हैं, वैसे ही हमें योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाएंगे। इसमें यह भी बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए, कि ये भगवत गीता में भी बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगा कर्मसु कौशलम।
0: अरे वाह,
1: योग करने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है।
0: क्या बात है।
1: तो अगर हमने योग कर लिया और उसके बाद जब हम अपना कोई भी वर्क करेंगे, ये मेरा खुद अपनाया हुआ, ये देखा हुआ है सभी के प्रति, मैंने जो भी लोग मेरे यहाँ आते हैं तो उनके कार्यों में अपने आप ही कुशलता आने लगती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनके काम सारे अच्छी होने लगी।
0: ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी। अच्छा मैम, आप एक विमेन हैं और एक विमेन के लिए इतनी सारी चीजें करना, इट्स नॉट इजी, है ना?
1: yes,
0: हर
1: yes.
0: किसी के पीछे एक इंसान का हाथ तो होता है जब वो सक्सेसफुल होता है। आज जी. आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, आपने शेयर की हमारे सुनने वालों के साथ, तो मतलब इसके पीछे किसका क्रेडिट है और क्या मतलब आपको कभी घर से कैसा सपोर्ट रहा है आपका?
1: देखिए मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है।
0: अरे वाह, क्या नाम है सर?
1: मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर मनीष मदान।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: आरसी मदान गैसेज एंड क्रॉकरीज के मालिक हैं वो।
0: अरे वाह,
1: तो उनका बहुत कॉपरेशन रहता है मेरा योगा। उनका पहले उनका इंटरेस्ट रहता था कि मैं उनके आउटलेट्स पर बैठूं, शोरूम पर उनका साथ दूं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट योग की तरफ ज्यादा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया।
0: Lovely.
1: और जब मैं अपनी स्टडीज भी कर रही थी, जब एक्चुअली मैंने आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज कम्प्लीट की थी योग की, तो उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया।
0: नवली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
1: मैं सुबह योगा भी करवाती हूँ योगा स्टूडियो के लिए। तो मतलब जैसे मैं उनको बोल देती हूँ कि यार आप टाइमिंग पे, मतलब अपनी टाइमिंग्स पे सब चीजें कर लीजिएगा, मुझे जाना है उधर, अपने टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ आप कर लीजिएगा। हाँ, तो वो मेरा मतलब
0: कंपनी देती
1: है, सपोर्ट
0: करते हैं। बाकी जो पुरुष सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, कल हो सकता है आपकी वाली मैडम भी यहाँ बैठ के आपकी तारीफ करे, तो थोड़े से जो है आप भी लग जाओ बस काम पे, फॉलो करो। बाकी जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती है?
1: यही कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करें तो उन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
0: ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही मजेदार वाली, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी बचा के रखते हैं रुचि मैम।
1: हाँ जी,
0: चलिए मैम, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू गाइस, एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी। विरासत

0: मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार,
1: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ,
0: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

मैं चुप होकर भी हर बात हूँ, मैं दिन होकर भी अंधेरी रात हूँ। तू चिंता मत कर मेरी गोरा, मैं दूर होकर भी तेरे साथ हूँ, मैं दूर होकर भी तेरे साथ हूँ।

0: देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
3: हैं। Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC 132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
8: यह कार्यवाही पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
9: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
10: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
11: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद।

शिता और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सरदार आदमी तो नहीं पता लेकिन पूरा शहर रेडियो सुन रहा था। FM मुरादाबाद 89.6 इसी रेडियो पर सारा शहर झूम रहा था।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: और tune into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
5: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: कहा मेरी कसम?
5: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाय चाय चाय
8: बिंदास मॉर्निंग।
5: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
9: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
10: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
9: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
11: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
12: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
13: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
12: पर पापा।
13: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
14: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
15: टायर लो सोना जीतो।
16: क्या?
15: जी हाँ,
17: चावला टायर
15: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
17: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
18: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है सर? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: ब्यूटीफुल।
1: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: वाओ।
1: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। तो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
1: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी, जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
0: जी,
1: हैं।
0: जी, जी, जी।
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी, जी, जी,
1: जी। ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं,
0: बट
1: ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती हैं। तो कुछ जैसे कि, जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीज़ों का ध्यान दें।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
1: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ
1: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
0: दिस इज कंगारू मदर केयर, आई थिंक
1: sort of, it's a different thing.
0: All right.
1: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
0: जी।
1: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
0: ओके।
1: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है। कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है
0: तो जी,
1: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
0: ओके,
1: ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
0: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
1: बेबी को 2-3 आवर्ली इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
0: हैं, हाँ जी,
1: उनको नहीं पता नहीं होता पता है वो क्या करती हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
0: जी।
1: तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
0: ओके,
1: क्योंकि क्या होता है अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
0: हाँ जी,
1: उसमें
0: हाँ
1: हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद ज़रूरी होता है, तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
0: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है ना, तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
1: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
0: मतलब कोई रीजन, कोई कारण मतलब जिसे पता,
1: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है, ठीक है। कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डाइपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीज़ें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डाइपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
1: छोटे बच्चों में ज़्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज़्यादा होता है,
0: ठीक है, बहुत
1: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज़्यादा होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है, मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो,

0: केजी से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 केजी से ज्यादा तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: ठीक है।
1: हाँ
0: तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है, जिनका जैसे 1.5 केजी मतलब 1.5 किलो 2.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में, कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 केजी के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है। उससे कम है अगर
1: जी,
0: हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से नहीं बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्री टर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कत करते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफ़ी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद ज़रूरत होती है, यहाँ पर हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश देंगे जाते जाते?
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत,
1: हाँ जी,
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है।
1: जी जी।
0: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं,

0: ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीज़ देखने को मिलती है तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे सर। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: नए हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
5: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
8: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
9: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ,
8: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
9: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
8: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
10: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
11: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़,
8: आपके शहर का सामुदायिक रेडियो।
4: मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं, उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, सीबीआई, ईडी या नारकोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
12: क्या?
4: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
12: मैं क्या करूँ साहब?
4: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी, अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
12: मैंने
13: ऐसे भेज दिए हैं। और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट, ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोता और डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz,
14: आपके शहर का सामुदायिक रेडियो।
13: एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।
15: सुप्रभात, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं, आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं गागन, या आप जा रहे हैं पागवाड़ी की साइड, मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इस स्टेशन को आपको सुन के बहुत आनंद आने वाला है। आनंद के साथ हैं आप और सुबह सुबह का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। और आज का इस सुबह का जो समय है और भी स्पेशल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ आपकी फिटनेस का राज। वो कौन है? बिल्कुल, मेरे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मैदान जी स्टूडियो में मौजूद है। हमने उनको आमंत्रित किया है आपके लिए स्पेशल। सुबह सुबह मैंने उनको परेशान कर दिया है, हालांकि उनकी क्लासेस होती हैं, बट स्पेशली वो मेरे लिए आई हैं। आई एम सो हैप्पी। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे FM मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
16: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
15: हाँ, वो बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा है बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह सुबह जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत में कौन कौन से योगा की एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं?
16: देखिए, पहले जैसे आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम को हम अपनी एक्सरसाइज में, हम अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की सारी स्टिफनेस दूर हो जाती है और हम अपने डेली रूटीन के काम आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा समय भी ना हो तो हम 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का सूक्ष्म व्यायाम करें और उससे हमारी बॉडी एकदम से एनर्जाइज हो जाती है। बाकी जैसे आप कहीं ड्राइविंग पे हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप आराम से लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। अगर हम अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और हमारी पूरी दिनचर्या अच्छे से बीतती है। तो आप गाड़ी में बैठे बैठे आप कुछ तो नहीं कर सकते, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम कभी अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते।
17: बिल्कुल एग्जैक्टली।
16: तो जैसे जिन श्वासों से हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जो श्वासें हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उनपे कभी अवेयर नहीं होते, उनपे कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे अगर हम ड्राइविंग करते टाइम, तो हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा, फोकस्ड रहेगा और हमारी ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी, हम अपने जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
17: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम। और इसके अलावा सुबह सुबह और कौन कौन सी चीजें, क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी सुपर फास्ट हो गई है, बहुत ही लोगों को जल्दी रहती है हर चीज की, तो एक्सरसाइज में भी जल्दी होती है, तो क्या योगा करते टाइम भी हमें जल्दी मचानी चाहिए, बड़ी शांति के साथ करना चाहिए?
16: देखिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर आप अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
17: बिल्कुल सही कहा आपने, और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
16: टाइम तो होना ही चाहिए।
17: बिल्कुल बिल्कुल।
16: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें, उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं, बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
17: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
16: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
17: ठीक है,
16: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस्ड रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है, हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
17: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके
16: मैं आपको एक मुद्रा और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है
17: प्लीज
16: और सबके लिए बहुत नेसेसरी है वो बताना चाहती हूँ, वो है वायु मुद्रा।
17: वायु मुद्रा,
16: तो वायु मुद्रा से जैसे हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, जो भी किसी को कोई भी पेन्स है, हेडेक है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, तो अगर हम वायु मुद्रा 15 मिनट्स के लिए लगा लें तो हमारी बॉडी हील होने लगती है और हमारी बॉडी के पेन्स चले जाते हैं।
17: वाओ, क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी है कि आप मतलब इन चीजों से भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते
16: जी,
17: हैं
16: जी।
17: स्ट्रेस का कितना जो है योगा से बेनिफिट होता है?
16: देखिए, स्ट्रेस का तो 100% बेनिफिट होता है।
17: ओके।
16: अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं
17: जी,
16: तो उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स पे के लिए अवेयर होते हैं और आपका स्ट्रेस योग करने से अपने आप ही चला जाता है। आप आधा घंटा योग करके देखें, आपका स्ट्रेस एकदम से ही गायब हो जाएगा, ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
17: वाओ, दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी, आपने मोटिवेट किया। मैं जाते जाते
16: मेडिटेशन तो है ही भाई, आपको स्ट्रेस से दूर करने
17: के। कई लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़े सारे ख्याल आते हैं और मन जो है लगता ही नहीं है स्थिरता के साथ।
16: देखिए, मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं,
17: ओके,
16: उसमें डेफिनेटली 100% ध्यान लग जाता है,
17: ओके,
16: और बैठे बैठे अपनी मैट पे जिस भी जगह पर जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं।
17: क्या बात,
16: हमें कहीं मंदिर और गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अगर हम चाहें तो अपनी मैट पे ही बैठ के मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं।
17: अरे वाह, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती है। रुचि मैम, थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप आए और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जानकारियां दी, स्पेशली हेल्थ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहें?
16: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी दिनचर्या में, जैसे हम अपने डेली और अपने कार्य करते हैं, वैसे ही हमें योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाएंगे। इसमें यह भी बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए, कि ये भगवत गीता में भी बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगा कर्मसु कौशलम।
17: अरे वाह,
16: योग करने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है।
17: क्या बात है,
16: तो अगर हमने योग कर लिया और उसके बाद जब हम अपना कोई भी वर्क करेंगे, ये मेरा खुद अपनाया हुआ ये देखा हुआ है, सभी के प्रति मैंने जो भी लोग मेरे यहाँ आते हैं तो उनके कार्यों में अपने आप ही कुशलता आने लगती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनके काम सारे बड़े अच्छे होने लगे।
17: ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी। अच्छा मैम, आप एक विमेन हैं और एक विमेन के लिए इतनी सारी चीजें करना इट्स नॉट इजी, है ना। हर किसी के पीछे एक इंसान का हाथ तो होता है जब वो सक्सेसफुल होता है। आज आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, आपने शेयर की हमारे सुनने वालों के साथ, तो मतलब इसके पीछे किसका क्रेडिट है और क्या मतलब आपको कभी घर से कैसा सपोर्ट रहा है आपका?
16: देखिए मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है।
17: अरे वाह, क्या नाम है सर?
16: मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर मनीष मदान।
17: अरे वाह, क्या बात है।
16: आरसी मदान गैसेज एंड क्रॉकरीज के मालिक हैं वो।
17: अरे वाह,
16: तो उनका बहुत कोऑपरेशन रहता है मेरा योगा। उनका पहले उनका इंटरेस्ट रहता था कि मैं उनके आउटलेट्स पर बैठूं, शोरूम पर उनका साथ दूं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट योग की तरफ ज्यादा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया।
17: Lovely.
16: और जब मैं अपनी स्टडीज भी कर रही थी, जब एक्चुअली मैंने आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी योग की, तो उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया।
17: लवली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
16: सुबह योगा भी करवाती हूँ योगा स्टूडियो के लिए। तो मतलब जैसे मैं उनको बोल देती हूँ कि यार आप टाइमिंग पे, मतलब अपनी टाइमिंग्स पे सब चीजें कर लीजिएगा, मुझे जाना है उधर, अपने टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ आप कर लीजिएगा। हाँ, तो वो मेरा
17: कंपनी देती है, सपोर्ट करते हैं। बाकी जो पुरुष सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, कल हो सकता है आपकी वाली मैडम भी यहाँ बैठ के आपकी तारीफ करे, तो थोड़े से जो है आप भी लग जाओ बस काम पे, फॉलो करो। बाकी जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती है?
16: यही कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करें तो उन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
17: ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही मजेदार वाली, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी बचा के रखते हैं रुचि मैम। चलिए मैम, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू गाइस, एफएम मुरादाबाद 89.6।

नहीं। खूबसूरत, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत ये प्यारा सा गीत, जिसको सुन के ना मन के अंदर सिर्फ सकारात्मकता आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। और ऐसे खूबसूरत गीत के साथ अगर हमारी एंट्री हो जाए तो फिर डबल आनंद हो जाता है जी। वेलकम बैक है, सुप्रभात, नमस्कारम। 9:02 हो गए हैं, आरजी आनंद के साथ हैं आप, जुड़ चुके हैं आपके शहर के मॉर्निंग मैगजीन शो बिंदास मॉर्निंग पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, जैसे कि मैंने कहा। और ये वो स्टेशन है, वो मैजिकल रेडियो स्टेशन है जहां पर बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। अब से लेकर 10 बजे तक इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पीसी वाली कंपनी में आपका साथ देने के लिए आ गया हूं आपके रेडियो सेट पर। हां जी, आप इंतजार कर रहे थे मेरा। अरे यार, मैं भी आपका इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब तक आपसे बातचीत ना हो जाए ना, तो कुछ तो ऐसा लगता है कि यार अधूरा सा है मेरी मॉर्निंग में, कुछ तो अनकम्प्लीट सा है। मतलब इतनी ज्यादा आदत हो गई मुझे आपकी, मैं क्या बताऊँ यार। मतलब मोहब्बत सच्ची वाली तो मेरे को आपसे यार।

0: अब जो है मेरा और आपका जो साथ है वो 9 बजे से जुड़ता है। जी हाँ, यानी कि मैं और आप मिलते हैं ठीक 9 बजे से इसी स्टेशन पर, इसी कार्यक्रम में। तो अभी कुछ एड ब्रेक के बाद, शॉर्टली एड ब्रेक है, मैं लौट कर आता हूँ। आज का थॉट ऑफ द डे, आज का मौसम का हाल और क्या कुछ खास है आज के दिन में, ये सब कुछ साझा करूंगा जरा सी देर में। स्टे ट्यून, बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइए।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
7: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

श्रोताओं, आज दिन है बुधवार का, बुध करे सुख। जी हाँ, वेंसडे मॉर्निंग है, बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का। और आज के दिन की सभी को ढेरों मंगल शुभकामनाएं। 20 मई हो गई है आज साथियों, और देखिए समय का भी पता नहीं चलता है और तारीख का भी पता नहीं चल रहा है, कितनी तेजी से जो है आगे बढ़ता जा रहा है मई का महीना धीरे धीरे। लेकिन गर्मी का जो स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि गर्मियां जो है अब लगभग अपने पूरे पीक पर है, पूरे समय पर है। तो ऐसे में आपको अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखना है। बच्चों की छुट्टियां कुछ स्कूल्स में हो गई, अनाउंसमेंट कहीं कहीं पर आज और कल हो ही जाएंगी, तो बच्चों को भी जो है स्पेशली उनका भी ख्याल रखना है, पार्टी का तो खास करके ख्याल रखना है। बात करें अगर करंट टेम्परेचर की, तो आपको बताते चलें, अभी का जो वेदर है वो 32 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, यानी कि जो अभी मिनिमम टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है, और जो मैक्सिमम जा सकता है वो पाजी इससे ज्यादा जा सकता है, यानी कि जो गर्मी का स्तर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। जी हाँ श्रोताओं, मतलब 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, तो गर्मी जो है और तेजी से बढ़ सकती है। अगर बात करूँ ह्यूमिडिटी की, तो आज 53 डिग्री, यानी कि आज जो है गर्माहट और ज्यादा चिपचिपे रहने वाली, यानी कि पसीने पसीने होते रहेंगे। लेकिन ऐसे में आपको डिहाइड्रेटेड रखना है, अपने आपको पानी पीते रहना है। हवा की बात करूँ तो 3 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने वाली है। एयर क्वालिटी तो खैर फिलहाल कुछ मुझे ठीक ठाक नजर आ नहीं रही है, लेकिन मौसम का हालचाल तो ऐसे ही कह रहा है कि इस मौसम में आपने अपना जरा खास ख्याल रखना है मेरे दोस्त। बाकी आप मुझे जरा अपने हालचाल बताइए, जरा मैसेज करिए मुझे 9837896896 पे, हमें इंतजार है आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस का। हेलो हाय गुड मॉर्निंग के संदेश पहुंचाइए, जरा आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम की शुरुआत होगी एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब गीत के साथ। क्या सॉन्ग है, लेकिन उससे पहले आज का बहुत ही खूबसूरत सा विचार, जिसे कह सकते हैं मोटिवेशनल लाइन, जो सुबह सुबह आपको रिचार्जेबल बना देंगी मेरे दोस्त। कहते हैं कभी हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन से होती है। आज जो दर्द सह रहे हो ना, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तो इसीलिए धीरे चलो, रुकना मत, मतलब चलते चलो, रुको मत, और धीरे धीरे जो है कदमों को बढ़ाओ, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं, है ना। तो आप जो है चलते रहिए पॉजिटिव कदमों के साथ, जो है प्रयास करते रहिए। और दोस्तों, सही दिशा में किया गया प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी वेस्ट नहीं जाता। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, और अच्छी सोच के साथ, और सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ निकालिए अपने घर से बाहर अपने पॉजिटिव कदम को। मुस्कुराते हुए कीजिए अपने दिन की शुरुआत। सुप्रभात आनंद के साथ थे आप, गुड मॉर्निंग।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
0: श्रोताओं, इस खूबसूरत से मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल मैसेज के बाद स्वागत है आपका। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट वाला प्रोग्राम जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग, जहां मॉर्निंग की सुपर डुपर एनर्जी की डोज और इन्फॉर्मेशन का डोज भी आपको मिलता है।

दोस्तों बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। आज का दिन क्यों खास है, आज इतिहास के पन्नों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है 20 मई की तारीख। उससे पहले मैं एक चीज जो आपको बताना चाहूंगा वो ये कि मेरी घड़ी का जो टाइम है स्टूडियो क्लॉक में जो वक्त हो रहा है वो कितना हो रहा है जी, 9:15:30 हो गए स्टूडियो क्लॉक में और आप सुन रहे हैं वेंसडे की सुबह आरजे आनंद को। चलिए बात कर लेते हैं आज 20 मई की तारीख क्यों है इतिहास के पन्नों के लिए महत्वपूर्ण। श्रोताओं आपको बताते चले, आज का दिन इसलिए खास भी है क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हम सेलिब्रेट करते हैं वो आपको धीरे धीरे पता लगेंगी इसी प्रोग्राम में। लेकिन आपको बता दें पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार जी का जो जन्म था वो आज ही के दिन हुआ था सन 1910 में। और आपको बताते चलें लेवी स्ट्रॉन्ग ऑफ जेकब डिवीज को डीनम कपड़ों जीन्स की मजबूती, और ये जो एक ये मैं आपके साथ जो बात शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। क्योंकि श्रोताओं हर दिन का इतिहास हमें कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतरीन सिखाता है और हर दिन की तारीख हमें कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों से रूबरू कराती है। सन 1873 में आज के दिन लेवी स्ट्रॉस और जैकब डिवाइस को डेनिम कपड़ों के जैसे जीन्स की मजबूती के लिए कॉपर रिवर्स का जो पैंट प्रदान किया गया था वो आज के दिन किया गया था श्रोताओं। और संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका के नियंत्रण से मुक्त होकर क्यूबा को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला था सन 1902 में आज ही के दिन। सन 2002 में पूर्वी तोमर को औपचारिक रूप से इंडोनेशिया से आजादी मिली और यह एक नया लोकतंत्र देश बना। श्रोताओं आपको बता दें आज के दिन विश्व जो है मधुमक्खी दिवस, यानी कि आज का जो दिन है वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज विश्व मधुमक्खी दिवस हम मनाते हैं। मधुमक्खियों को जो है इनकी खेती भी होती है, मधुमक्खी पालन जो होता है मधुमक्खी पालन से बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ जो अभी आपसे भी जाननी है और मुझे आपसे भी समझनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैंने बीच में खेती का भी जिक्र किया है, लेकिन मैंने वो खेती का जिक्र क्यों किया है इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत खबर जो मुझे लगता है कि आज की सुबह उनको ज़रूर बतानी चाहिए, तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास और अहम जानकारी लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का दिन क्यों खास है, आज 20 मई की सुबह क्या कुछ स्पेशल हम मनाते हैं वो सब चर्चाएं मैं आपसे कर रहा था। इन शॉर्टली वक्त हो गया है 9:18, तो हमने आपको बताया आज क्या क्या चीज़ें खास हैं आज के इतिहास के पन्नों में। और महत्वपूर्ण दिवस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विश्व मधुमक्खी दिवस जो आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यह जो दिवस है प्रतिवर्ष 20 मई को ही मनाया जाता है श्रोताओं।

चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ संदेश भी आप लोगों के पहुंच रहे हैं, जरूर मैं शामिल करूंगा। लेकिन उससे पहले आज के दिन जन्मे कुछ खास कलाकारों के नाम ले लेता हूं। सन 1977 में अंजुम चोपड़ा, जो भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान है, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ था श्रोताओं। और बात करें अगर एक और खास नाम की, जिनका जन्म आज के दिन हुआ, जो इतिहास के पन्नों को और भी स्पेशल बनाते हैं, जी हाँ, यस आई एम टॉकिंग अबाउट सुमित्रा नंदन पंत, जो प्रसिद्ध हिंदी कवि, इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 20 मई को। और पीरू सिंह, जो भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में एक रहे, 1918 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आगे भी आपको तमाम जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता दिया है। एक खूबसूरत गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज गर्ल, आप सुन रहे हैं आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग, और ये है आपके शहर का अपना फेवरेट वाला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। बहुत ही खूबसूरत गाना निकाल दिया है मैंने, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वेंसडे की सुबह है, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस। और क्या कुछ खास चल रहा है हमारे आसपास, सारी अपडेट, सब कुछ, एवरीथिंग आपको पता लगेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। डोंट गो एनीवेयर, गुड मॉर्निंग।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
8: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
9: बसंती इनके सामने मत नाचना।
10: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
11: भैया नाचते नाचते अगर अच्छे गाने सुनने को मिल जाए तो डांस और जो अंदर का जो मतलब एक पॉजिटिविटी है, जो हैप्पीनेस है ना, वो बाहर अपने आप आ जाती है। वेलकम बैक है, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आप सुन रहे हैं आरजी आनंद के साथ। दिस इज योर फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। क्लॉक में वक्त हो गया है 9:25। लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छी जानकारियों के साथ अच्छे गानों का साथ जो है वो लगातार बरकरार रहता है। खूब सारे श्रोता साथी जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस प्रोग्राम में। जुल्फी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं खुली बाहों के साथ, स्वागत है। जुल्फी भाई लिखते हैं, हेलो आनंद भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? आपके गाने सुनकर बहुत मजा आता है और साथ ही साथ आप जो सवाल जवाब करते हैं इससे तो हमारी मॉर्निंग और भी बिंदास हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी भाई। और एक मैसेज आ गया है रेडियो वाला आनंद को, गुड मॉर्निंग है विक्की सागर का, क्या बात है विक्की जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका गुड मॉर्निंग मुझ तक पहुंच गया है। और लिखते हैं बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, क्या करें ऐसे में? भाई साहब ऐसे में कुछ नहीं करना है, गर्मी से बचना है और अपना ख्याल रखना है। अच्छा इस गर्मी में ना जो लोग चाय प्रेमी होते हैं वो चाय पीना बंद नहीं करते हैं यार, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जिनको चाय से मोहब्बत है, जिनको चाय की तलब होती है ना, वो चाय पी ही आते हैं, चाहे कितना भी गर्मी का पारा हाई हो, लेकिन उनको चाय से मोहब्बत है तो उन्होंने चाय पीनी ही पीनी है। और कल यानी कि 21 मई को हम सेलिब्रेट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल टी डे कल सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि बहुत ही अपने आप में खूबसूरत दिन है। तो अगर हम चाय की बात करें तो चाय के साथ कुछ ना कुछ हर किसी का फेवरेट एक कॉम्बो होता है। जैसे ना मुझे यार बनमस का बहुत पसंद है, जब भी मैं चाय पीने जाता हूँ तो मुझे बनमस का आई लव दिस यार, कटिंग चाय ऑल्सो माई फेवरेट यार। आपको क्या लगता है चाय के साथ बेस्ट कॉम्बो क्या हो सकता है? चाय आलू पराठा, चाय समोसे या चाय पकौड़े, क्या क्या लगता क्या है आपको? आपको आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू चाय के साथ सबसे बेस्ट कॉम्बो, सबसे बेहतरीन क्या चीज़ है जो हम चाय के साथ ले सकते हैं? आप अपनी अपनी राय बताइए, आपको चाय के साथ क्या पसंद है? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ अभी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। 9:27 हो रहे हैं, कुछ अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप तक पहुंचेंगी इसी चैनल के माध्यम से, तो आप कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्रोताओं आप भी अपने संदेश पहुंचा सकते हैं 9837896896 नंबर मैंने आपको बता दिया है, इस नंबर पे आपने हमें मैसेज करना है। और अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं खूबसूरत गीत की ओर, ये गीत सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और इस गीत के बाद वापस लौट कर आएंगे थोड़ी देर में। अरिजीत सिंह का बहुत ही खूबसूरत गाना डंकी फिल्म से निकाला हूं मैं, एंजॉय कीजिए इस गाने को, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री, और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
7: सरदार आदमी तो नहीं पता लेकिन पूरा शहर रेडियो सुन रहा था, एफएम मुरादाबाद 89.6। इसी रेडियो पर सारा शहर झूम रहा था।
8: तेरा क्या होगा कालिया।
9: और ट्यून इनटू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

एक बार फिर से श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। और आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू हीट वेव का जो है तांडव वो जारी है। और ये आलम जो है दुनिया के देश में, स्पेशली अपने दुनिया भर में और अपने देश में तो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। भारत में सबसे ज्यादा जो गर्म इलाका और सबसे गर्म एरिया जो माना जा रहा है, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में जो है एक अलग ही आंकड़ा निकलकर सामने आया। स्पेशली अगर मैं बात करूं, कल 19 मई को भी बहुत ज्यादा गर्म रहे उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में, बहुत ज्यादा गर्मी रही। और आपको बता दें, इस सूची में सबसे ऊपर मुरादाबाद, एग्जैक्टली अपना मुरादाबाद का नाम भी रहा है, क्योंकि कल का जो दिन था बहुत गर्म था श्रोताओं। और आज भी बताया जा रहा है कि आज भी जो गर्मी है वो अच्छी खासी पड़ने वाली है। तो मुरादाबाद का टेम्परेचर आज भी अच्छा खासा जाने वाला है। 12 बजे के बाद गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। स्पेशली कल जो है मुरादाबाद का गर्म टेम्परेचर सबसे ज्यादा देखने को मिला। मुरादाबाद, बांदा, इटावा और औरैया का नाम जो है शामिल है, जहां पर अगर मैं बात करूं कल के टेम्परेचर की, तो 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है जो है और ये टेम्परेचर। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इन शहरों में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भाई, लू के थपेड़ों ने, ये तो बिल्कुल सही बात है। और कल मुरादाबाद में सच में बहुत भयंकर गर्मी थी। इनफैक्ट आज भी टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया, 40 तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में आपने ख्याल रखना है अपना, अपने छोटे बच्चों का और स्पेशली अपने घर के बुजुर्गों का भी ख्याल रखना है।

तो ऐसे में हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप जो है अपना प्लीज ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी विशेष कर ख्याल रखिए। दोस्तों ये जो गर्मी है ये आपको लग रही है ना कि ऐसा फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये गर्मी या इस लू की चपेट में अगर कोई आ जाता है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आपको ऐसे में बिल्कुल खास करके अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है। चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में लौट कर आएंगे तो कुछ और बातें भी करेंगे आपके साथ।

और बाकी दोस्तों, मैं आपसे एक चीज और कहना चाह रहा था कि अगर आपसे मैं एक सवाल जवाब यहाँ पर कर रहा था, जिसमें आपने बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुँचा दिए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले एक कड़क अपडेट आपको बता देता हूँ, वो ये है कि भैया, सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी तो जूझ ही रहा है। जिंदगी तो भैया देखिए प्रॉब्लम से भरी हुई है ही, लेकिन ये जो चीजें आसपास महंगी हो जाती है तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है, बिकॉज बजट सारा गड़बड़ा जाता है। और इसी महंगाई के दौर में एक और बड़ा झटका मिल गया कि भैया, अब सुबह का नाश्ता भी महंगा हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें भैया, अब जो है ब्रेड, जो ब्रेड से बनी आप डिशेस खाते हैं, वो अब महंगी होने वाली है, क्योंकि ब्रेड के भी दाम बढ़ गए हैं। जी हाँ श्रोताओं, 5 रुपये और एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं ब्रेड के ऊपर। यानी कि अगर आप ब्रेड खरीदने जाते हैं सुबह सुबह नाश्ते के लिए, तो उस पर 5 रुपये और एक्स्ट्रा हो गए हैं। जी हाँ, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ पाजी, अब जो है आपने ख्याल रखना है, और ये जो चीज़ें बढ़ रही है ना, इनका भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं और हेल्दी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें यार अपनी डाइट में। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ, इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बहुत ही खास होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आखिर क्यों, जरूर बताऊंगा। व्हाट्सएप पर भी एक नया अपडेट आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का। कौन सा जो है इंटरेस्टिंग फीचर ला रहा है व्हाट्सएप? सोशल मीडिया का जमाना है, हम सभी को पता है, हम सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, हम सभी बेसिकली व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप पे नया फीचर आ रहा है, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम रोल प्ले करता है, जरूर आपको पता लगेगा। आप ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। बहुत लंबी चौड़ी बातें कर ली मैंने, चलो एक काम करते हैं, बढ़िया सा गाना सुनते हैं और इस गाने को सुन के अपने मूड को फ्रेश करते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत मैंने लाइन अप कर दिया है आपके लिए, निकल चुका है आपके रेडियो सेट में, आप इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे RJ आनंद के साथ। बहुत प्यारा गाना है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपका फेवरेट कॉम्बो क्या है चाय के साथ? जैसे मुझे चाय के साथ बनमस का बहुत पसंद है, चाय एंड आलू का पराठा बहुत पसंद है, आपका फेवरेट कॉम्बो क्या है? क्योंकि कल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल टी डे होगा कल सेलिब्रेट, उसी की खास मौके पर मैं सोच रहा हूँ आज आपसे पूछ लूँ आपका फेवरेट कॉम्बो क्या है चाय के साथ। आप व्हाट्सएप करिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। गुड मॉर्निंग।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफ एम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: वेलकम बैक। ये 9:43 का समय हो गया है। स्टूडियो क्लॉक में आनंद के साथ हैं आप। और दोस्तों आपको फटाफट से बता देते हैं कि जल्द ही व्हाट्सएप पर हेलो भेजकर जान पाएंगे अपना पीएफ का बैलेंस। एग्जैक्टली देश के करोड़ों जो नौकरी पेशागार लोग हैं उनके लिए भैया जो पीएफ होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मतलब जल्दी एक बड़ी सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है, यानी कि अब बताया जा रहा है कि अब आप पीएफ अपना पीएफ का बैलेंस जो है अब आप डेफिनेटली देख सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। जी हाँ, अब आप बहुत इजीली देख पाएंगे, बहुत इजीली आप जान पाएंगे। एंड क्लेम स्टेटस चेक करने के लिए, आखिरी 5 ट्रांजेक्शन जानने के लिए बार बार आपको वेबसाइट या ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें EPFO जल्द ही व्हाट्सएप बेस्ट नई सेवा शुरू कर सकता है, जहां यूजर सिर्फ हेलो भेजकर अपना पीएफ अकाउंट की जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो जान पाएंगे, जो भी जरूरी जानकारियां हैं वो उन तक पहुंचाई जाएंगी सिर्फ एक हेलो के माध्यम से। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बेहतर और बेहतरीन तरीका है, अच्छा है, बढ़िया है, सॉलिड है।

आपको बता दें, पेटीएम ने बच्चों के लिए पॉकेट मनी फीचर लॉन्च किया है, जिससे वो बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। जी हाँ, इस फीचर में माता पिता खर्च की लिमिट सेट कर सकेंगे, हर ट्रांजेक्शन पर पूरा कंट्रोल उनके पास रहेगा। बच्चे जो भी अपने खाने पीने की चीजें हैं, मेट्रो टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग और रिचार्ज जैसे छोटे मोटे पेमेंट आसानी से कर पाएंगे, जबकि सुरक्षा और निगरानी पूरी तरह से पेरेंट्स के हाथ में होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत चीज है छोटे बच्चों के लिए। जी हाँ श्रोताओं, अब जो है आप बहुत अच्छे से आपके जो बच्चे हैं वो कर पाएंगे बिना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो भी वो यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे, पर उसकी सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ पेरेंट्स के हाथ में ही होंगी। दोस्तों आपको बता दें, हर सुबह पहले से बेहतर जो है बनने का मौका और बेहतरीन बनने का मौका लेकर आती है। हर दिन की सुबह आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन लेकर आती है। और कहते हैं ना, लाइफ में बदलाव बहुत जरूरी है, और बदलाव कब मिलता है जिंदगी में, जब आप उसकी शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज 20 मई है और आज से देश भर में लगभग 7 से 8 लाख मेडिकल स्टोर बंद रह सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। देश भर में ऑनलाइन ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर जो दवा बिक्री के लोग हैं, मतलब बताया जा रहा है कि आज 20 मई को जो है मेडिकल स्टोर बंद हो सकते हैं। ओ माई गॉड। फिलहाल श्रोताओं आगे पढ़ते हैं, और आपके संदेश भी बहुत सारे पहुंच रहे हैं मुझ तक। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? आपके प्रोग्राम से बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं। हाउ आर यू? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। देखिए मैं बहुत बढ़िया हूं, थैंक यू सो मच मेरे बारे में जानने के लिए, मेरा हालचाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये नीलम जी का मैसेज मेरे पास पहुंचा है प्रकाश नगर से। नीलम जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक संदेश और आया है मेरे पास। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूं, मेरा नाम प्रेम है। हेलो प्रेम, गुड मॉर्निंग। एक संदेश पहुंच चुका है मेरे पास यहाँ पर भूपी शर्मा का, लिखते हैं राधे राधे आनंद जी, सुप्रभात। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ भूपी जी, राधे राधे आपको भी। लिखते हैं, मन की शांति निशुल्क होते हुए भी सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। एब्सोल्युटली सही कहा आपने। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, शुक्रगुजार रहो और सुप्रभात भी बोलते रहो। क्या बात है। भूपी शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से जुड़े हमारे साथ। शबीना जी जुड़ चुकी हैं रहमत नगर से, लिखती हैं गुड मॉर्निंग आनंद सर। गुड मॉर्निंग आपको भी मैम। एक संदेश मेरे पास पहुंचा है मुरादाबाद रेडियो के आरजे आनंद को, बहुत बहुत सारा प्यार। गुड मॉर्निंग, आपके साथ बहुत ही मजा आ रहा है और मॉर्निंग और भी गुड हो जा रही है आपका प्रोग्राम सुन के। आपको प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग तेजस जी मेरे साथ जुड़े हैं। तेजस भी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, इतना ब्यूटीफुल मैसेज आपने किया। लिखते हैं, आपकी बातों में जादू है। क्या बात है। मैं जादूगर तो नहीं हूँ भाई साहब, ऐसा मत बोलो यार। गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है सर? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। हेलो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बहुत ही सुंदर लाइनें आपने पहुंचाई हैं, ज़रूर हम कोशिश करेंगे इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन भी होने वाला है आपके लिए इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। हाँ जी, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एक और खूबसूरत नगमा मैंने निकाल दिया है आपके रेडियो पर, आप इसको एंजॉय कीजिए। मैं अभी जस्ट लौट कर आता हूँ, उसके बाद एक खूबसूरत सवाल होगा जिसका जवाब मैनी हाफी लोग देने वाले हैं मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक खूबसूरत गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास। चलिए, ये गाना भी बहुत बिंदास है जो मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ आज की सुबह, बहुत बेहतरीन गाना है। और ऐसे बेहतरीन गाने जो हैं आपको सुनने को मिलते रहते हैं इसी प्रोग्राम में, इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। जी हाँ श्रोताओं,

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
3: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
6: बिल्कुल जी, नाचना जरूरी है, नाचते रहिए और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को भी जरा ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ को फिट रखिए, बहुत जरूरी है हेल्दी रहना। अगर आप श्रोताओं स्वस्थ है ना, तो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है ना, मतलब बेहतर से बेहतरीन है। मैं तो ये कहूँगा आप जो है अपना स्पेशली ख्याल रखें। 9:54 का समय हो गया है, हमारे स्टूडियो की घड़ी में आप आनंद के साथ हैं और आप सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो बिंदास मॉर्निंग। तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और एक छोटा सा सवाल आपके लिए है, एक जिसे कह सकते हैं गेस द सॉन्ग, एक बहुत ही प्यारा गाने का म्यूजिक है ये मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही पॉपुलर गाना है, काफ़ी झिनचाक नंबर है, बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की है, बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट और ये जो एक्टर हैं बड़े कमाल के हैं यार। ये जो गाना है कौन सा है, ये म्यूजिक आपको पकड़ना है, गाने का बीच का म्यूजिक जो है मैं प्ले कर रहा हूँ, इस गाने को सुन के मेरे को आपने बताना है कौन सा गाना है। सो 3, 2, 1, गो स्टार्ट।

मैसेज करना है आपने मेरे को 9837896896 पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, बहुत ही प्यारा गाना है। ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी फिल्म है वो पकड़ लेंगे इस डेफिनेटली गाने को, पहचान लेंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ही ज्यादा फिल्मी हो यार, आप पहचान जाओगे। आपको अपने नाम के साथ अपना सही जवाब पहुंचाना है, उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम, कहाँ से हैं आप, और उसके बाद स्पेस देखिए, अपना राइट आंसर लिखना है और मेरे को सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9837896896। आप चाहें तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं। आज वेंसडे की सुबह 20 मई की तारीख है, आपको मुझे बताना है ये जो गाने का म्यूजिक है वो कौन सा गाना है, मतलब गाने को आइडेंटिफाई करना है बेसिकली, ये कौन सा गाना है।

व्हाट्सएप करिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। जल्दी से आपने मैसेज करना है, मैं भी लौट कर आऊंगा। तो आपके लिए कुछ जरूरी जानकारी, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो लेकर आने वाला हूँ। सो फटाफट मुझे मैसेज करिएगा, मुझे आई एम श्योर बिलीव है कि आप जरूर मेरे को सही वाला जवाब पहुंचा दोगे। तो हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। फिलहाल इंतजार नहीं करवाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन से गाने का, एक अच्छा से गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। और इस गाने के बाद जल्दी से लौट कर आएंगे, तो फिर आपसे और ढेर सारी बातचीत करेंगे और आपकी हेल्थ के बारे में, जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स आपको देने वाला हूं। अगर आपने ये चीज फॉलो करी तो यकीन मानिए आप चक्दे फट्टे कर दोगे यार। चलो आबरा का डाबरा सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया सा गाना आपके लिए निकाल रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और भैया घड़ियां मिला लो, 9:57 हो रहे हैं, 10 बजने को हैं।

माय गॉड, मैंने जमकर डांस कर लिया बॉस।

मैडम को धन कहा गया मेरे को आज तक समझ में नहीं आया बॉस, चलिए मैं इसमें नहीं घुसना चाहूंगा। हेलो हाय वेलकम बैक है वंस अगेन, आपका स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, टाइम हो गया है 10:02 और ये है बिंदास मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं जिसे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर। जो लोग निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पूरी करने उनको ऑल द वे बेस्ट यार। बाकी जो लोग अपनी दुकान शुकान खोल रहे हैं उनको भी बहुत सारा आज के दिन की मैं कहता हूँ पाजी शुभकामनाएं यार। तो मस्त मस्त और पॉजिटिव के साथ अपने काम की जो शुरुआत करो ना वो करो, है ना, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ करो। आज का दिन बहुत बेहतरीन है, आई होप आपका दिन बहुत ही बढ़िया जाए। हमारी बहुत सारी आज के दिन से जुड़ी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। श्रोताओं 10:00 हैं और 10 जैसे ही 10 बजते हैं मुझे लगता है कि भागो भैया बाहर, दूसरी आरजे भी आ गई है स्टूडियो में। लेकिन उससे पहले आपको हेल्दी रखने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है यार। आप अगर फिट रहेंगे तो फिर जबरदस्त रहेंगे, तो आपका मन करेगा म्यूजिक का, है ना। जब आप म्यूजिक सुनेंगे तो आप डांस भी करेंगे, लेकिन उसके लिए शरीर से भी तो पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो पॉजिटिविटी कैसे आएगी, जब आप अच्छा खान पान रखोगे, अपना अच्छी डाइट को मेंटेन करोगे। जी हाँ, तो भैया क्या आपकी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में। अगर नहीं है तो प्लीज आपको प्रोटीन को जो है इंक्लूड करना है, आपको ऐड करना है। शरीर की ताकत और मांसपेशी और हड्डियों की ऊर्जा के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है प्रोटीन, और इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि आपको मिलता है सोयाबीन, दालें, पनीर, मूंगफली से लेकर हरी मटर और पालक जैसे इन ग्रीन सब्जियों में। तो अगर आप प्रोटीन का जो है ले रहे हैं अपनी डाइट में, आप प्रोटीन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो ज़रूर आप प्रोटीन को अपने डाइट में शामिल कीजिए। और प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोटीन जो है आपको ज़रूर लेना चाहिए डेली अपनी डाइट में, कोशिश करनी चाहिए आपको जो है, चाहे आप थोड़ी क्वांटिटी में लो बट आप ज़रूर लो, वन टाइम लो बट ज़रूर लो, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें प्रोटीन को। दोस्तों कहते हैं प्रोटीन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मांसपेशियों को बनने में मदद करता है, हड्डियों और त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, शरीर को ऊर्जा देने में भी काफ़ी मदद करता है प्रोटीन। तो रोज़ जो है आपको प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना है, आप हर भोजन में प्रोटीन ज़रूर लें। स्पेशली जो खिलाड़ी हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा होती है प्रोटीन की ज़रूरत, और बढ़ती उम्र में भी ज़रूरी पोषण, न्यूट्रिशन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन जो है आपको नुकसान भी कर सकता है, इसलिए लिमिटेड और अच्छी क्वांटिटी के साथ पनीर का इस्तेमाल करें। आप पनीर ज़रूर अपनी डाइट में ले सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सूत्र माना जाता है पनीर, तो आप इसको जरूर लें अपनी डाइट में। मैं तो कहता हूँ बाकी अपना संतुलित आहार जरूर रखें, बढ़िया रखें, हेल्दी खाएं, मस्त रहें, झकास रहें। दालू का ज़्यादा सेवन करें, बीन्स का आप सेवन कर सकते हैं, राजमे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप छोलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम अक्सर इन्हें अवॉइड करते हैं, यही चीज़ें हमारे शरीर को और हमारी हेल्थ को चकाचक बनाती हैं। चलिए अभी चकाचक बनाऊंगा मैं आपकी मॉर्निंग, किसी एक लकी कॉलर को कॉल लगाने वाला हूँ। आई डोंट नो कौन होगा आज की मॉर्निंग हमारे शो में हमारा आज का लकी सुपरस्टार। मैंने आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है पाजी, इस गाने को आपने पकड़ना था, ये कौन सा गाना है।

0: कौन सा गाना है यही आपने मेरे को मैसेज करके बताना है 9837896896, ये वो नंबर है जिस पे आप मुझे मैसेज करोगे।
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉर्पोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नहीं आता।
1: नहीं पाजी, अब रेडियो आता है। गलत बोल रहे हैं आप। ना, यो हनी सिंह। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मेरे जाने के समय हो गया, 10:10 हो रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी इस गाने को बीच में बंद करना पड़ेगा मुझे। वेल बैक टू पॉइंट, आज की मॉर्निंग मैंने आपसे कहा था आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो गाना चल रहा है वो कौन से गाने का म्यूजिक है। इस गाने को आपने आइडेंटिफाई करना था, बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है यार, बहुत ही ढिंचाक नंबर है, इस गाने को पहचानना था।

0: यही सही जवाब देने के लिए लकी कॉलर को शॉर्टलिस्ट किया है मैंने आज की सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं मुंगेर जमाल बिहार से भास्कर कुमार तेजस्वी बोल रहा हूँ।
0: भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भागते भागते तो नहीं आए मेरे स्टेशन पे?
1: जी, आपको सुनने के लिए तो भागता भागता भी आ सकता हूँ मैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। अरे थैंक यू सो मच सर। क्या करते हैं आप, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें जरा।
1: जी, मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, साथ ही साथ पार्ट टाइम में सुबह में भक्ति सागर का एक प्रोग्राम आता है किसी डिजिटल रेडियो पे।
0: अरे वाह,
1: तो वहाँ पे आरजे का काम, और शाम को शाम सिंदूरी करके एक आता है, 7 से 8:30 तक मैं करता हूँ प्रोग्राम।
0: अच्छा, मतलब आप भी रेडियो में आरजे हैं, ऐसा अगर मैं बोलूँ तो कोई ऐसी शोक्ति नहीं होगी इसमें, राइट?
1: जी जी जी, राइट।
0: क्या बात है, मतलब एक आरजे से दूसरे आरजे बतिया रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो पाजी, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है एफएम मुरादाबाद सुन के, आप कब से जुड़े हैं? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट हो गया है कॉल, आई डोंट नो, बट इन्होंने मेरे को सही जवाब दिया था। सी, आई विल ट्राई, मैं इनको वापस कनेक्ट कर लूँ, अगर हो जाए कनेक्टिविटी तो वेरी वेल, अदरवाइज तो सही जवाब क्या है इन्होंने मेरे को बता ही दिया था। देखते हैं, अगर कनेक्टिविटी बनती है तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमारे साथ भास्कर जी जुड़े थे आज की सुबह बिहार से, आई थिंक हमारे रेडियो श्रोता जुड़े थे। आई डोंट नो, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, नेटवर्क इशू कुछ तो हो रहा है हमारे, आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। हेलो भास्कर, कैन यू हेयर मी? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस, सो प्लीज भास्कर, आप मुरादाबाद में कब से जुड़े हो मुरादाबाद रेडियो पे, थोड़ा सा ये बताओ यार।
1: जी, मैं तो लगभग ठंड का समय था उसी टाइम से जुड़ा हूँ, जनवरी वगैरह से, बट उसके बाद बीच बीच में कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो नहीं सुन सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद होती है आपको सुनने की और सुनता ही रहता हूँ लगभग बीच बीच में।
0: अच्छा, आपको अच्छा लगता है?
1: जी, बहुत अच्छा लगता है। आपकी बातें तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लगती है कि मत पूछे।
0: अरे बाप रे यार, इससे बातें बोल के मेरे को नजर लगा दोगे, मैं 2 नींबू आज ही पी लूंगा इफ यू डोंट माइंड यार। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव। भास्कर, मुझे ना जरा जल्दी से बताओ यार, आज का सही जवाब क्या था?
1: आज का सही जवाब था, हवाओं ने ये कहा, हाँ, आई प्यार की ऋत बड़ी सुहानी, ये वाला।
0: तू डरना ना,
1: ओ मेरी रानी।
0: वैसे मैं आपको बता दूं, मैं रानी नहीं हूँ, राजा हूँ, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग यार, आपके लिए जोरदार तालियां भास्कर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप ज्वाइन करते रहिए, आई एम श्योर आपको बहुत आनंद आता रहेगा आनंद के साथ, ठीक है?
1: जी, आनंद के साथ आनंद भी आता है सर, बहुत अच्छा है, और रेडियो मुरादाबाद बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत मजा आता है मुझे।
0: क्या बात है, भास्कर जी को मैंने पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने फ्री में तारीफ करी है, उसके लिए थैंक यू मेरे भाई। भास्कर, आपके लिए जोरदार तालियां, कंग्रेचुलेशन, आज की सुबह लाखों लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते रेडियो के माध्यम से?
1: जी, ओवरऑल जितने भी सुन रहे हैं उनको पहले तो गुड मॉर्निंग, और मुरादाबाद को सुनते हैं, और हमारे आनंद जी को ढेर सारा प्यार देते रहे ऐसे ही।
0: क्या बात है भास्कर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इससे ज्यादा प्यारी बातें करोगे तो मैं रो जाऊंगा, स्टूडियो में आंसू भर जाएंगे और मैं बह जाऊंगा, तो इसीलिए फोन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, फिर जरूर आपसे बात करेंगे। ओके भास्कर जी,
1: थैंक यू,
0: बाय, लवली टॉकिंग टू यू, बाय बाय।

0: थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. जोरदार तालियां आपके लिए ओरिजिनल वाली. थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव. अब जाने का टाइम हो गया है. जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे? खुशी आ गई ना आपके फेवरेट गाने लेके. हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुहानी है, शिवपुरी से बात कर रही हूँ. हाय सुहानी, गुड मॉर्निंग. मेरे पास मैसेज आया था, नमस्कार, हेलो, हाय, कैसे हालचाल है? आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है. पहली बार जुड़े हैं हम लोग आपके कार्यक्रम से, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी. थैंक यू सो मच. उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में अवंतिका सिंह एंड अर्चित सिंह. ये रुद्रपुर से मैसेज आ रहा है, क्या बात है, देवभूमि उत्तराखंड से. थैंक यू वेरी मच. और एक वॉइस नोट भी इनका मेरे पास पहुंचा था आज की सुबह, सो इमीडिएटली जरा फटाक से मैं सुन लेता हूँ. जी
1: सर नमस्कार.
0: अरे वाह,
1: कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है.
0: थैंक यू. अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यार. थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी. हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? दिस इज मी प्रेरणा. हाय प्रेरणा, गुड मॉर्निंग. मेरे पास एक वॉइस नोट हो रहा है यार, टाइम बहुत कम है.
2: आनंद सर, जो आपने सवाल किया है वो ये वाला गाना है
0: जी.
2: हवाओं ने ये कहा,
0: हाँ,
2: ऋतिक रोशन का गाना है.
0: हाँ, हाँ. थैंक यू सो मच भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सही जवाब देने के लिए. थैंक यू सो मच. एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर. यस.
3: तू डरना ना ओ मेरी रानी.
0: ये मेरे पास शबीना जी का रहमत नगर से सही जवाब आया था. एंड अयूब अली रामपुर से जुड़ते हैं मेरे साथ आज की सुबह, लिखते हैं मॉर्निंग लाजवाब हो जाती है आपको सुन के, थैंक यू साहब. डॉक्टर सुरेश जी जुड़े हैं प्रेम नगर से सही जवाब के साथ. लक्ष्मी देवी जी जुड़ी हैं प्रकाश नगर से सही जवाब के साथ एंड लाइन पार से. और मेरे पास मैसेज पहुंचा था, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? ये रिजवान खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. ग्राम बीजना से आप जुड़ते हैं. गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? मैं निखत फातिमा. गुड मॉर्निंग निखत जी. हेलो सर, गुड मॉर्निंग, मैं दुर्गेश सैनी बात कर रहा हूँ. हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी. ओ ज़रा ख्याल रखिए अपनी तबीयत का भाई साहब. मंसूरी कॉलोनी से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शहीद शारिक अली जी भी जुड़े थे आज हमारे प्रोग्राम में. आनंद भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? सुनील कुमार जी मेरे साथ जुड़े थे बिहार से आज की सुबह, इनको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा. एंड डॉक्टर ये प्रदीप जी जुड़े थे, साथ में चमन लाल साहब जुड़े थे, रिहाना जुड़ी थी एंड शत्रुघ्न भी जुड़े थे. यार बहुत सारे मैसेज आए, थैंक यू गाइज. अभी के लिए माफी चाहता हूँ, कल लौट कर आएंगे. ठीक 9 बजे मेरी आपकी मुलाकात होगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे. आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ढेर सारा पानी पीते रहिए, बारिश से सार धूप अवॉइड कीजिए, बाकी अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखें. अच्छे गाने और अच्छी बातें और अच्छी इन्फॉर्मेशन को मिलेंगी आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz. बेबी के लिए बाय.

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430। सरदार आदमी तो नहीं पता लेकिन पूरा शहर रेडियो सुन रहा था, FM मुरादाबाद 89.6, इसी रेडियो पर सारा शहर झूम रहा था।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: और ट्यून इन टू FM मुरादाबाद 89.6 FM।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz,
1: आपके शहर का सामुदायिक रेडियो।
4: मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं, और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले यह बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे

0: के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ। राजेश कुमार, आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
1: क्या?
0: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
1: मैं क्या करूँ साहब?
0: आपकी जाँच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
1: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट, ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz,
2: आपके शहर का सामुदायिक रेडियो।
0: एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.9।

दोस्तों आज 20 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे। जी हाँ, जब भी हम मधुमक्खियों का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले याद आता है मीठा सा शहद। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये नन्ही सी मधुमक्खियाँ हमारी धरती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद नहीं बनाती, वो फूल का प्रांगण करती हैं, जिसे पेड़ पौधे फल सब्जियां और फसलें उगती हैं। यानी अगर मधुमक्खियां ना हो तो प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ सकता है। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी खाने पीने की कई चीजें मधुमक्खियों की मेहनत की वजह से ही हम तक पहुंचती हैं, इसीलिए इन्हें बचाना यानी अपने भविष्य को बचाना दोस्तों आज के दिन खुद से एक संकल्प लें, एक छोटा सा संकल्प लें। आप पेड़ पौधे लगाएं, फूलों के बगीचे लगाएं, फूलों के पेड़ लगाएं और प्रकृति की इन छोटी छोटी मेहनती। जी हाँ दोस्तों, जब ये आप छोटी छोटी चीजें करते हैं लेकिन इनका जो परिणाम होता है वो बहुत अच्छा होता है। जब आप एक छोटे से वृक्ष, एक छोटे से पेड़ को लगाते हैं, छोटे से पौधे को लगाते हैं और वो बड़ा होकर विशाल बन जाता है। जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं वो सिर्फ शहद नहीं बनाते बल्कि प्रकृति की मिठास और जीवन का संतुलन भी बचाते हैं। तो उन मेहनती हाथों को दिल से सलाम जो हर दिन प्रकृति के साथ मिलकर धरती को और खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपने कभी शुद्ध शहद का स्वाद चखा है? आप मुझे बताइए, जो ओरिजिनल हनी होता है, शहद होता है, उसका टेस्ट लिया है आपने? एक्चुअली ना जो नेचुरल हनी होता है उसकी बात ही अलग होती है ना। जो मार्केट में मिलता है वो भी ठीक होता है लेकिन थोड़ा बहुत उसमें मिलावट तो होती है। ओरिजिनल हनी आपने उसका स्वाद लिया है क्या? ज़रा मुझे बताइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, आज क्या स्पेशल है, क्या कुछ खास है, सब आपको यहाँ पर पता लगेगा। लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और करेंगे बहुत सारी बातें। लेकिन उससे पहले ना श्रोताओं, यहाँ पर आप सभी के बैक टू बैक संदेश भी आ रहे हैं, उनको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें मैं नहीं भूल सकती क्योंकि इनके बिना तो हमारा सफ़र अधूरा लगता है। और हमारे पास यहाँ पर जो संदेश आए हैं उनको हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज ये पहुँचाते हैं एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह जी गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आदरणीय प्रसारक जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं ताज मोहम्मद अंसारी जी, साथ में गुलाम सावरी जी भी हैं और महराज जहां भी हैं, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से अपना संदेश पहुंचाते हैं और कहते हैं कि आपने हमारा मैसेज शामिल किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर धनोरी तिलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी का, और ये कहते हैं आरजे जी को हमारा आदाब, आपको भी आदाब सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी का, और ये भी कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है पूजा जी का, और ये हमें सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करती हैं, कहती हैं मैम बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ जी, इस गर्मी में अपना ख्याल रखो। और मैं सुनवाती हूँ आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, आपको सनमपुरी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में, इस ट्रैक को आप इंजॉय कीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ बस इन प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो हम भी नहीं भूलने वाले हैं आपको, क्योंकि आपका और हमारा जो ये सफर है, जो ये साथ है ना, इसे हम उम्र भर याद रखेंगे। और बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता है आपका और हमारा। दोस्तों, ये कार्यक्रम है मॉर्निंग मसाला और मैं हूँ आपके साथ। आपकी अपनी खुशी, ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक आपने इंजॉय किया अभिजीत शाश्वत जी की खूबसूरत सी आवाज़ में। और यहाँ पर अभी वक्त हुआ है 10:52। और श्रोताओं, मैं आपसे ना एक छोटा सा मेरे मन में क्वेश्चन आया, तो मैंने कहा चलिए मैं अपने श्रोताओं से मालूम कर लेती हूँ। सब बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, राइट? आपने भी सुना होगा, सब काफ़ी लोग बोलते हैं और मैं भी बोल देती हूँ कि इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि मेहनत का फल देर से सही लेकिन सबसे खूबसूरत होता है? हाँ, अपने जवाब हमें पहुँचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। क्या आपको लगता है कि मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन सबसे खूबसूरत होता है? बताओ बताओ, जल्दी से बताइएगा, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं एवरीवन। और नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। यहाँ पर और खूबसूरत संदेश आए हैं बैक टू बैक, उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। इतने खूबसूरत तरीके से, खूबसूरती से आप अपने संदेशों को हम तक पहुँचाते हैं और हमारे दिल में भी ना उतना ही उत्साह रहता है आपके संदेशों को पढ़ने का, जितना आप शिद्दत के साथ हमें भेजते हैं, खुशी के साथ भेजते हैं कि खुशी मैम हमारा मैसेज शामिल करेंगी। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी सिलसिला शुरू करते हैं। और हमारे पास बैक टू बैक मैसेज आए हैं। यहाँ पर हमें मैसेज मिला है अजीत कसाना जी का और ये कहते हैं, मनपसंद प्लेटफॉर्म, मनपसंद आरजे खुशी, राधे राधे। आपको भी राधे राधे। और इनकी फैमिली भी साथ में रेडियो सुन रही हैं, माया देवी जी, ऋतिक जी, आदित्य कसाना, लदावरी जिला मुरादाबाद से। आपको भी जय जय श्री राधे, गुड मॉर्निंग। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा आदाब, कबूल कीजिएगा आप, हम आपका लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपके प्रोग्राम की प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही लाजवाब होती है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान जी, साथ में साइमा नवाज हैं, हसन नवाज बाबू, और इन्होंने और भी नाम यहाँ पर शामिल किए हैं और साथ में हमें शुक्रिया पहुँचाते हैं, मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है आरजे खुशी जी को, गुड मॉर्निंग, विकी सागर जी का मुरादाबाद से, और ये कहते हैं, खुशी जी बहुत गर्मी हो रही है। हाँ जी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराइए। और FM मुरादाबाद पर हम कूल गाने यहाँ पर प्ले कर रहे हैं जो इस गर्मी में ना आपको राहत देंगे, आपका जो माइंड है ना वो एकदम कूल रहेगा। ब्यूटीफुल जब गाने हम सुनते हैं ना, तो हमारा जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है और माइंड भी ऑटोमेटिकली कूल हो जाता है। तो इस हॉट वेदर में ना कूल गाने इंजॉय कीजिएगा आप, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। अभी लौट कर आती हूँ, और भी गपशप करेंगे, और भी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक मुझे पहुँचानी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार तो करना होगा साथियों। और एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, इंजॉय कीजिए। बस मैं लौट कर आती हूँ छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आपको ना आहिस्ता आहिस्ता मैसेज नहीं पहुंचाने, फटाफट से मैसेज टाइप करो और हमें पहुंचाइएगा। एंड श्रोताओं, यहां पर अभी देखिए समय हुआ है बहुत ही प्यारा सा 11:05 और इतनी गर्मी है बाहर, हाय क्या कहूँ मैं, आज कुछ नहीं कह पा रही हूँ। बस अभी तो हम फिलहाल स्टूडियो में हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। आप कहाँ पर हैं अभी बताइए हमें, घर पर हैं, शॉप पर हैं, कार में हैं या फिर किचन में हैं? खाना अभी, नाश्ता भी तो बन चुका है, लेकिन हाँ खाना बनाने की तैयारी चल रही है। सोच रहे हैं कि गर्मी में बस जल्दी जल्दी से खाना बन जाए, किचन में तो खड़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है काम।

दोस्तों देखिए, मैंने कहा था ना कि 20 मई की तारीख जो है ना वो अपने आप में बहुत स्पेशल है और हर दिन स्पेशल होता है, लेकिन आज की तारीख कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है और आज एक और बहुत ही खूबसूरत सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व माप विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माप विज्ञान क्या होता है, तो आसान शब्दों में कहें हम जो भी चीज़ें नापते हैं, चाहे वजन हो, लंबाई हो, समय हो या तापमान, उन सभी को सही और सटीक तरीके से मापने की विज्ञान को ही माप विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। सब्जी खरीदने से लेकर सोना तोलने तक, दूध की मात्रा से लेकर दवाइयों की सही खुराक तक, हर जगह सही माप जरूरी है। सोचिए दोस्तों, अगर माप सही हो तो व्यवहार, व्यापार, विज्ञान और हमारी जिंदगी में भी कितनी परेशानियां हो सकती हैं। अगर माप सही ना हो तो व्यवहार, विज्ञान और हमारी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां हो सकती हैं। इस दिन का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि सही माप ही विश्वास और गुणवत्ता की पहचान होती है।

दोस्तों, जहां माप सही होता है वहीं विश्वास मजबूत होता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं। हमने एक बहुत ही सिंपल सा आपसे क्वेश्चन भी पूछा था और हमारे जो लिसनर हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं और फटाफट से अपने संदेश हमें पहुंचा देते हैं। हमने आपसे मालूम किया था, क्या आपको लगता है कि मेहनत का फल देर से सही लेकिन सबसे खूबसूरत होता है? तो हमारे पास यहाँ पर बहुत खूबसूरत से आंसर आए हैं हमारे श्रोताओं के, तो जल्दी से उनको शामिल करते हैं हम।

और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? आपने जो सवाल किया है ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो मैं नहीं मानता इस बात को। सर ने ये बोला है हमारे घर पर, इन्होंने कहा है कि हमारे घर पर अमरूद का पेड़ है और उस पर काफ़ी अमरूद लगते थे। उन अमरूदों को ना तो हम तोड़ते थे और ना ही किसी को तोड़ने दिया करते थे। हम कहते थे कि सब्र का फल, सब्र करो, इनको पकने दो। लेकिन एक दिन बंदर आए और सारे अमरूद तोड़कर ले गए। ओए होए होए। और कहते हैं कि आज का इंसान भी बंदर से कम नहीं है। मेहनत आप करोगे और क्रेडिट वही, अच्छा क्रेडिट कोई और ले जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। सर कहते हैं कि ज्यादा सब्र करना अच्छा नहीं होता। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं रिजवान खान जी जिला मुरादाबाद से, और उन्होंने हमें, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने विचार हमसे साझा किए, शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, और ये मैसेज हमें मिला है। कहते हैं कि नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ सर। कहते हैं कि हम लोग भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम का ओपनिंग गीत जो आपने प्ले किया बहुत ही अच्छा था। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं उमा शंकर सिंह जी, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह, और ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से, आपको भी हर हर महादेव। और आपने जो ये फोटोज़ भेजे हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है सर। ये वाइट गुलहड़ का पेड़ हमारे घर में भी है और आपने जो फ़ोटो भेजी है मुझे अपने घर की याद आ गई है। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं ये, एंड सुबह सुबह सुकून देते हैं जब हम बगीचे में जाते हैं और फूलों को देखते हैं। वहाँ पर चिड़ियाँ भी चहचहाती हैं, सुबह का नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है। जो सुबह सुबह उठता है वही उसका आनंद ले पाता है, बाकी तो जो लेट उठते हैं बस वो भागा दौड़ी में फटाफट से उठते हैं, नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस चले जाते हैं, पर वो कहाँ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप रात को जल्दी सोइए ताकि आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ पाएँ, और जब आप जल्दी उठेंगे ना, सुबह का वो गोल्डन टाइम बहुत ही अमेजिंग होता है। सुबह की फ्रेश हवा, सुबह का वातावरण जो सुकून देता है ना, वो सच बताऊँ मैं पूरे दिन में नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप रात को जल्दी सोइए और सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठिए। देखिएगा जब आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठेंगे ना, आपको कितना अच्छा फील होगा और आपके सारे काम भी टाइम पर हो जाएंगे। पर आपको जल्दी जल्दी सही भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आराम से इजीली आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं, तो सुबह सुबह जल्दी उठा कीजिए, ठीक है? आज से मेरी बात को प्लीज मान लीजिएगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम गुड सर। ये मैसेज हमें मिला है आज़ाद नगर करूला मुरादाबाद से शहीद शारिक अली जी का, और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं शाद अंसारी जी। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है और हम पूरी फैमिली के साथ आपके शो को सुनते हैं, थैंक यू सो मच। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं सोनू कुमार जी सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। एक मैसेज और हमारे पास यहाँ पर आया है रामपुर से अयूब जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। दोस्तों आप भी इस ब्यूटीफुल शो में अपना संदेश, अपना मैसेज हमें पहुंचाएं, कुछ कहना चाहते हैं आप आज की सुबह, तो बिल्कुल भी मत रुकिए, ना ही आपको कुछ सोचना है, बस आपको फ़ोन उठाना है और हमारा मोबाइल नंबर डायल करना है 9837896896। हाँ जी, इस नंबर पे आपको हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है, चाहे आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और एक प्यारा सा गाना, बहुत ही ब्यूटीफुल, फ्रॉम द मूवी फना से आप इस गीत को
एंजॉय कीजिएगा, मैं लौट कर आती हूँ अभी। फिलहाल हमारे अभी हाथ में तो पानी का ग्लास है, आपके हाथ में क्या है? आप भी पानी पी रहे हैं या फिर जूसेस पी रहे हैं? हाँ सुबह सुबह क्या, अच्छा सुबह सुबह ना लाइक गुनगुना पानी पीना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, पता है आपको? आप पीते भी हैं ना? वेरी गुड। तभी हम सोचे कि ओहो हमारे जो लिसनर इतना फिट कैसे हैं, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। चलिए अच्छी बात है, जो फिट है वो हिट है। और ये प्यारा से गाना भी सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
6: माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ?
5: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
6: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
5: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
7: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। और श्रोताओं, गर्मी बहुत ज़्यादा है इन दिनों। गर्मी ने सच में अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से लेकर शाम तक तेज धूप एंड रात्रि में भी बहुत गर्मी होती है और दोपहर में गर्म हवाएँ चलती हैं, लू चलती हैं, जो लोगों को परेशान कर रही हैं। और अब शुरू होने जा रहा है तपा। जी हाँ, 25 मई से 2 जून तक का वो समय जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है। कहा जाता है कि 9 दिनों में धरती सबसे ज़्यादा तपती है। दोपहर में सड़कें मानो आग उगलती हैं और रात में भी गर्मी चैन नहीं लेने देती। मौसम विभाग भी इस दौरान हीट वेव की चेतावनी जारी करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, नौतपा सिर्फ गर्मी का नाम नहीं बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब सूर्य की किरणें धरती पर सीधे और बेहद तीव्र पड़ती हैं जिससे तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस दौरान गर्मी अपने सबसे खतरनाक रूप में दिखाई देती है। और ऐसे मौसम में अपना और अपने परिवार का खासकर ध्यान रखिए। एवरीवन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। धूप में निकलते समय सिर ढके मौसमी फल और तरल पदार्थ लेते हुए इनका सेवन कीजिए। और हाँ, अपने घर की छत या बालकनी में पक्षियों के लिए भी पानी रखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये गर्मी सिर्फ हमें नहीं बेजवानों को भी सताती है। तो इस गर्मी में सबका ध्यान रखिए एवरीवन। और यहाँ पर समय हुआ है अभी 11:27। आपके बहुत खूबसूरत संदेश भी बैक टू बैक हमें मिल रहे हैं, तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अजीत कसाना जी का। कहते हैं कि आरजे खुशी जी, हमने तो शहद खाया है, हम तो आपको भी शहद खिला देंगे। थैंक यू। ये कहते हैं कि हमारे खेतों पर पेड़ पर मधुमक्खी ने अपना घर बनाया हुआ है। और अगर मधुमक्खी हमें काट लेती है तो फीवर हो जाता है। हम इसीलिए तोड़ने वालों को बुलवाते हैं जो शहद मतलब निकालते हैं, और बदले में हम उनको आधा शहद देते हैं और आधा वो हमें रिटर्न में देते हैं। कहते हैं कि ऐसा मौका कभी अगर आया तो हम आपको शहद ज़रूर देने आएंगे। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि और हाँ, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, हम तो बहुत करते हैं इंतज़ार, सबसे पहले तो हम मेहनत करते हैं, तो हमें कभी योग करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्क करते करते हमारा योग हो जाता है और फिट एंड फाइन रहते हैं। आप कभी गांव आइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, मतलब हमें सभी तरह के मौसम सहने की आदत है। मैं इस टाइम भी खेतों पर आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। ये मैसेज हमें अजीत कसाना जी पहुँचाते हैं ग्राम पोस्ट लदावली से। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है और मुझे भी बहुत ही अच्छे अच्छे गीत यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। एंड ये कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट टाइम आपका रेडियो ज्वाइन किया है। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं राधे श्याम मोवा खीड़ा गंज काशीपुर उधम सिंह नगर से। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बड़ा एड्रेस है आपका, पर अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना संदेश यहाँ पर पहुँचाया है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है। हेलो खुशी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। शबीना जी ने हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाया है। शबरीन ने हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाया है। शबीना और शबरीन दोनों का नाम ना मुझे, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इन दोनों के नाम में। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से।
गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं सर, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड चलिए श्रोताओं, अभी कुछ गाने सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मुझे देनी है, तो आप कहीं मत जाइए। खुशी आपसे कहती है कि रेडियो की स्विंग को बिल्कुल भी मत घुमाइए और पानी पीते रहिए, ठीक है? अपनी सेहत का ध्यान भी रखिए, काम भी करते रहिए और ये प्यारे प्यारे गाने भी आप सुनते रहिए।

गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपके अपने खुशी। और दोस्तों, आज हम नमन कर रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर विचारक, ओजस्वी व्यक्ति एवं पत्रकार बिपिन चंद्रपाल जी को। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत नमन करते हैं। दोस्तों, बिपिन चंद्रपाल जी उन महान व्यक्तित्व में से थे जिन्होंने अपने विचारों और शब्दों से देशवासियों के दिलों में आज़ादी की लौ जगाई। वे केवल एक नेता नहीं थे बल्कि एक ऐसी आवाज़ थे जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरी देश को जागरूक किया। उन्होंने लाल बाग पाल की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का अहम हिस्सा माना जाता है। लाला लाजपत राय, बाग बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, इन तीनों नेताओं ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन को नई ताकत दी। साथियों, बिपिन चंद्रपाल जी एक प्रखर विचारक थे। उनका मानना था कि किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति उसके जागरूक और आत्मनिर्भर नागरिक होते हैं। उनकी वाणी में ऐसी औज था कि जो लोगों उनके भाषण सुनकर देशभक्ति से भर जाते थे। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से भी समाज को जागरूक किया और लोगों तक सच्चाई पहुंचाई। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

और श्रोताओं सुनते हैं एक देशभक्ति गीत, लौट कर आते हैं। तब तक के लिए आप भी कहीं मत जाइएगा, अपने संदेश हमें पहुंचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और बहुत ही खूबसूरत सा नारा है ना, जय जवान जय किसान, क्योंकि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे जो सरहद पर खड़े होते हैं, हमारे देश के वीर जवान, और जो हमारे किसान भाई हैं, चाहे बारिश हो, बरसात हो, या फिर सर्दी हो, गर्मी हो, वो हमेशा खेतों में काम करते हैं और अनाज उगाते हैं। वही सरहद पर खड़े होकर हमारे देश के वीर जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम सब की रक्षा करते हैं, तभी हम आराम से चैन की नींद सो पाते हैं। और सुनते हैं खूबसूरत सा, सभी वीर जवानों के लिए खूबसूरत सा ये देशभक्ति गीत सभी के लिए हम सुनना चाहते हैं और आप सभी को सुनवाना चाहते हैं।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जज रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
7: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
8: माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ?
7: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
8: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
7: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
9: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपने इंजॉय किया। और बहुत सारी सिस्टर ब्रदर की ख्वाहिश होती है कि हमारी भाभी जी भी ऐसे ही आनी चाहिए, क्यों दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा अभी टाइटल ट्रैक आपने सुना, ढूंढ में अपने ब्रदर की दुल्हन। सभी के अरमान होते हैं, बहुत सारे सब सपने सजाते हैं कि हमारे भैया की वाइफ तो ऐसी होनी चाहिए, हमारी भाभी जी तो ऐसी होनी चाहिए, राइट है? तो मेरी भी यही ख्वाहिश है और अभी हम भी सर्च कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं भैया जी के लिए भाभी। और तो मैंने कहा, मेरे जहन में अचानक से ये ट्रैक आया, मैंने कहा हाँ इस ट्रैक को प्ले करना चाहिए और बहुत सारे श्रोता भी इस ट्रैक को इंजॉय करेंगे। तो आई होप आपने इस गाने को इंजॉय किया होगा दोस्तों। एंड अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर समय हुआ है 11:52। हाँ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ये समय हो रहा है, आप भी अपनी घड़ियाँ मिला लीजिए। और हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है संजू का और ये कहती हैं, हाय खुशी दी, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये कहती हैं कि मेरे हिसाब से ज़्यादा दिन सब्र करना चाहिए, सब्र वहीं तक करना चाहिए जितने की उम्मीद हो, उसके बाद तो लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, जैसे सब बिखर गया और इंसान भी टूट जाता है। अगर इंसान मेहनत करता है तो सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेहनत ना करें, देखिए मेहनत तो करना करते हैं और करनी भी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वो परिणाम हमें नहीं मिल पाता है जिसकी हमें अपेक्षाएँ होती हैं, उम्मीदें होती हैं कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए, वैसा रिजल्ट नहीं आता है। तो कई बारी क्या होता है ना, हमें इंतज़ार करना पड़ता है और कभी कभी इंतज़ार जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसका एक अलग ही लाइक अनुभव होता है। और कई बारी तो जैसा हम सोचते हैं ना उससे ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा हमें मिल जाता है। और सब्र मुझे लगता है कि करना चाहिए, पर सबका अपना नज़रिया है, सबके अपने थॉट्स हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना थॉट्स शेयर किया हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया संजू। हमारे पास अगला मैसेज हमें मिला है, हाय दी केम छू मजा माँ, अफरोज़ फातिमा जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। साथ में इनकी फ्रेंड भी हैं लाइबा दरक्षा। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। इन्होंने नाम नहीं लिखा, बस गुड मॉर्निंग विश कर दिया है। लगता है कि कुछ न्यू श्रोता होते हैं जिनको मालूम नहीं होता है कि नाम भी लिखना है। देखो मालूम हो या ना हो लेकिन अपना नाम हमें तो कहीं भी जब हम मैसेज करते हैं लाइक अपना नाम तो सबसे पहले लेते हैं ना, ज़रूरी भी होता है। तो आप अपना नाम और अपनी जगह का नाम जहाँ से भी आप हमें मैसेज पहुँचा रहे हैं वो मेंशन ज़रूर किया करो, हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा कि श्रोताओं सही कहा ना खुशी ने। एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, बाबू अंसारी जी, महराज अंसारी जी। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सबकी दुआएँ हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। कहते हैं कि आपका शो हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू जी। और ये मैसेज सर पहुंचाते हैं पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से डॉक्टर अख्तर हुसैन और उनके परिवार के सभी लोग, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज होता है आपका कार्यक्रम पेश करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैसेज हमारा कभी कभी आता है, कोई बात नहीं सर, आप कभी कभी करते हैं, आप रोज़ कीजिएगा, ठीक है? हमसे प्रॉमिस करो कि आप हमें रेगुलर मैसेज करेंगे अब शो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जब आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं ना तो हमारी सुबह बहुत खूबसूरत हो जाती है और ये गर्मी वाला जो मौसम है ना इसमें हमें राहत मिल जाती है।
देखिए श्रोताओं, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए खुद का और अपने परिवार का खासकर ध्यान रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, हल्का और ताजा खाना खाइए। तेज धूप में बाहर निकलते समय छाता या टोपी जरूर रखिएगा और कोशिश करें कि दोपहर की तेज धूप से बचें। साथ ही अपने घर की छत या बालकनी में पक्षियों के लिए थोड़ा पानी रखना ना भूलें, और उस पानी, जिस बर्तन में आप पानी रखते हैं ना, उसको चेंज भी करते रहें, लाइक उसको वॉश करके एंड फ्रेश पानी आप उसमें रखिए, ताकि उस पानी में मच्छर ना पनपें। और जब आपको पता है कि कहीं भी हम बर्तन में पानी रखते हैं तो उस पानी में मच्छर पनप जाते हैं, और मच्छर जब पनपते हैं तो फिर बीमारियाँ भी होती हैं, मच्छर के काटने से डेंगू की बीमारी हो जाती है। तो श्रोताओं, इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, और अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटती रहिए। बस खुशी इतना ही कहना चाहेगी आपसे, और अब मैं आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मैं मिलूंगी मैं आपको, सी यू सून 3 से 5। जाने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है, दिल करता है मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं, पर क्या करूं, समय को भी ध्यान में रखना होता है ना। और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कार्यक्रम हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं, तो आप उसको भी सुनना ना भूलिएगा ठीक 12 बजे, ओके। और एक खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, इस गीत के साथ मैं आपको बाय बाय टेक केयर कहना चाहूँगी। आप अपना ध्यान रखिएगा, और हमारी जो सीनियर सिटीजन है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी खासकर ध्यान रखिएगा। हल्का लाइट भोजन खाइए, एंड दोस्तों देखिए अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी में ना आप स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली खाना खाने से बचिए, क्योंकि ऑलरेडी जो गर्मी है ना वो आपकी बॉडी सहन कर रही है, ऊपर से इतना हैवी खाना अगर हो जाएगा तो फिर बीमार हो जाएंगे आप। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हल्का ठंडा भोजन खाइए, अपने जीवन को में बनाइए, बाय। और एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, इसको एंजॉय कीजिएगा एवरीवन। बाय बाय, नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल

0: अरेस्ट। श्रोताओ, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, सीबीआई, ईडी या नारकोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है?
1: मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
0: क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया साहब।
1: आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
0: मैं क्या करूँ साहब?
1: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
0: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
2: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कहीं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी, उनसे हम जानेंगे कि ये अभियान क्यों जरूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर सन 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भाभी ये अभियान क्यों आरंभ किया जा रहा है?
1: देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान देगा। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण, स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदत अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
0: भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ये बताइए कि इन शिविर में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधा मिलेगी?
1: देखिए, इन शिविर में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा, जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी अनीमिया की जांच भी की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयां और आयरन की गोलियां दी जाएंगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी और ये बीमारी धीरे धीरे असर दिखाती है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारियां बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो जाए।
0: शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी क्या?
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चों की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी, साथ ही सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है। अगर समय पर टीका लगवा दिया जाएगा तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुंचे, हर महिला सुरक्षित रहे और बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज व देश और मजबूत बनेगा।
0: भाभी, ये तो एक बड़ा अभियान है, पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एक एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में भी बताते रहते हैं, तो क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार याद दिला दिया जाए और इसका महत्व समझाया जाए।
1: पोषण माह पर खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े मीठा और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तिल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तिल कम खाएं, सब्जी, दाल, हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार चीजें और फल ज्यादा खाएं, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारी पास भी नहीं आएगी।
0: भाभी, पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है, बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या है?
1: देखिए, छोटे बच्चे की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर उस समय बच्चों को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध, फल, सब्जियां, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाना मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में रहेगा, बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की आदत बढ़ेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दूध, अंडा, दाल, सब्जियाँ, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहाँ बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है है कि आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों के लिए ऐसी जगह बने जहां उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
0: भाभी, इस बार पोषण माह में यानी शिशु और छोटे बच्चों के आहार मेथड पर भी जोर दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है?
1: छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनकी सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चों की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से भी दूर रहेगा।
0: तो भाभी, सही आहार मेथड की शुरुआत कैसे होती है?
1: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्टॉम कहते हैं। ये बच्चे की पहली वैक्सीन है।
0: फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
1: 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ना पानी, ना शहद, ना दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
0: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
1: 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल, मैश करके खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा। साथ ही माँ का दूध भी जारी रहना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
0: यानी भाभी, IYCF का मतलब यही है कि बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले।
1: बिल्कुल, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा न सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुष की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
1: देखिए, बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता भी साथ दे तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चों को 2 गुना सहारा मिलता है।
0: पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
1: बहुत आसान है। बच्चों के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाएं, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दें और बच्चों को समय दें। रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें। इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
0: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है।
1: हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम

0: अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोगों को अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
1: कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की जरूरत है?
0: हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर है। इस तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों हमारे आसपास आसानी से मिल जाती है और बहुत फायदेमंद भी है।
1: इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
0: फायदा सीधा है, स्थानीय पौष्टिक खाद संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी, महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गांव की खेती और किसान को भी बढ़ावा मिलेगा।
1: भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकत्र किया और डिजिटलकरण पर भी जोर है, इसका क्या मतलब है?
0: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकत्र क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
1: और डिजिटलकरण क्या होता है?
0: आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी चाहिए। इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
1: भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा की है, ये योजना क्या है?
0: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं को गर्भ अवस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
1: भाभी, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए?
0: इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।
1: दोस्तों, आज के सेहत से लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियों और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पाएं। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम के बीच स्वस्थ आदतें बढ़ें और पूरा समाज फिट रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं,
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे
1: और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है,
0: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो सेहत से ही लाभ कई प्रोग्राम में दोस्तों आज हम बात कर रहे थे एक विशेष खास मुद्दे पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं सेहत से ही लाभ कई के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद, और सुनते रहें FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सेहत सही लाभ कई और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, किशोरियों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं, ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सेहतिया भैया जी हैं।
1: नमस्कार खुशी जी। जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है, इसलिए सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे पूर्वावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
1: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: भैया जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: देखो जी, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझकर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है, ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे कैसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए, अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती है, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन, ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधाएं कितनी जरूरी हैं।
1: बिल्कुल आरजे खुशी, चाहे गांव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई है, लड़कों से कहा जाता है कि अब घलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे, इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ऐसी करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है, फिर लड़के की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट जाती है।
0: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो डर की वजह से चोरी छुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है?
1: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह गर्भपात करवा लेती है, ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
0: ठीक कहा आपने। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।
1: किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वे बहुत ही नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कॉन्डम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वह कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, तो वह अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
0: सिहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बात की है, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
1: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है, और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है रो नहीं सकता, तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है, तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरते रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो वो कमजोर नहीं है, एक समझदारी वाला काम है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले, तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
0: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सके?
1: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते होंगे इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसी समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई न कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या गर्व से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
1: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगे तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो तो वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है, उस लड़की की सेहत पर भी खतरा पड़ सकता है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कॉन्डम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली क्या होती है, कैसे काम करती है, या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होता है।
0: लेकिन एक बात बताइए सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया वे गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं होता है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना होता है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ही पहल हुई है?
1: बिल्कुल जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
0: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
1: RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्याएं खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गाँव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों को सेहत के बारे में बता सके।
0: अच्छा सिहतिया जी, ऐसा क्या है?
1: हाँ, अब जैसे मेरे गाँव की है, वो कक्षा 2 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है। जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सकें। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाते थे, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोर के लिए ही नहीं बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर ANM काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह सभी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
0: सिहतिया जी, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंच जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
1: देखिए जी, एक और बढ़िया योजना है अर्श। इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सिहतिया जी।
1: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुराने शुरू कर देती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKS की योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन

0: रेखा दीदी ने गीतक से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
1: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
0: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये है कि पास के गाँव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी। 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे उसने, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। बोली अब ज्यादा पढ़ाई का फायदा नहीं है, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल के पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनी गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग दे रही है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद भी करती है।
1: अरे वाह सेहतिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिल जाए तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
0: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और न ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा सेहतिया जी। दोस्तों ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुलेगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई में। तब तक के लिए सुनते रहिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजना का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी सेहत के लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।
2: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारी गण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। आपके साथ मैं हूं आशीष और
8: मैं हूं भावना, और आज चर्चा होगी हमारे बीच में आभा घाट को लेकर। आज आपको बताएंगे आशीष आभा के बारे में। आशीष बताइए।
7: बिल्कुल भावना, आपने सभी

0: श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज मैं और मेरी सहयोगी भावना हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि भारत सरकार की तरफ से जो जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आभा की। आखिर ये आभा है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे और कौन कर सकता है। भावना एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
1: जी बोलिए।
0: अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप कभी किसी डॉक्टर के पास अपने बीमार होने के बाद में जाती हैं तो डॉक्टर का सबसे पहला सवाल आपसे क्या होता है?
1: पहला सवाल आशीष तो यही होता है कि ये बीमारी आपको कब से है और क्या इसके पहले कहीं ये बीमारी का इलाज कहीं करवाया है कि नहीं करवाया है। तो हमारे अगर हमने इलाज करवाया होता है तो हम पर्चा दिखा देते हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन, और अगर नहीं कराया होता है तो बता देते हैं कि नहीं कराया है।
0: कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास शायद पर्चा खो गया हो, फट गया हो या नहीं मिल रहा हो और वो अपने स्वास्थ्य के बारे में या अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पुरानी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।
1: हमारे साथ भी ऐसा हुआ है एक दो बार कि मान लीजिए कभी हम इलाज कराने गए और दो तीन साल पुराना पर्चा कहाँ, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो पता ही नहीं चलता है, तो डॉक्टर से बस ऐसे ही बता देते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब कभी करवाया था लेकिन हमारे पास उसका कोई
0: प्रमाण नहीं हो पाता है, प्रूफ नहीं हो पाता या ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते कि हाँ हमारा इलाज चला तो ऐसे ही चला था। दरअसल मैं ये बातें इसलिए भी पूछ रहा हूँ भावना क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय ही इस बात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रामीण अंचल के भाई जो हमारे या बहने हैं जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे उन्होंने भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परेशानियों को फेस किया होगा जब कहीं ना कहीं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनसे पूछते हैं लेकिन वो समुचित जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उसी के निराकरण के लिए हमारे पास है आभा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आभा क्या है।
1: बिल्कुल आशीष,
0: तो आभा मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताऊं कि दरअसल ये 2021 में सरकार की तरफ से लागू किया गया एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री और बाकी स्वास्थ्य सेवाओं के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं या अगर आप उसमें शामिल हैं या अपना इलाज करा रहे हैं तो सबको आप उसमें दर्ज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे हम किसी अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा हमारी जरूरत पर हमको काम आ सकता है जब भी उसकी जरूरत पड़े, ठीक ऐसे ही आभा है। जानती हैं कैसे?
1: कैसे?
0: दरअसल आभा का मतलब होता है ABHA, आभा। ये एक तरीके की हेल्थ आईडी है। आभा का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है
1: जी।
0: तो ये हेल्थ आईडी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लॉन्च की गई थी और ये एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन है।
1: तो अकाउंट क्या आशीष, ये कोई खाता है?
0: हाँ मैं वही बता रहा हूँ, जैसे ये एक यूनिक आईडी है, जैसे हमें आधार कार्ड हमारा होता है तो आधार हमारी एक यूनिक आईडी है।
1: अच्छा।
0: जिससे हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ठीक ऐसे ही आपकी एक हेल्थ आईडी बना दी जाती है, एक हेल्थ खाता बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी आपकी जुड़ी हुई जानकारियाँ जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी हुई है वो उस खाते में आप दर्ज कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जो ग्रामीण श्रोता हैं उनके लिए बहुत काम की जानकारी होगी?
1: आशीष ये बहुत काम की चीज है, लेकिन आप इसके विषय में और भी बताएं जिससे हमारे श्रोता इसको सुने और समझें।
0: बिल्कुल, हम इस पर जरूर बताएंगे कि आखिर ये क्या है, ये कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले थोड़ी एक आम जानकारी जो आभा से जुड़ी है वो मैं ये जरूर बता दूं कि ये एक यूनिक हेल्थ आईडी है जिसमें आपके आधार कार्ड या आपके ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके इसे जनरेट किया जाता है। 14 अंकों का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आभा का
1: जी।
0: और आभा कार्ड की जैसा आपने कहा और पूछा भी है तो कई सारी विशेषताएं हैं और इसके कई सारे लाभ भी हैं जो लोगों को बिना किसी परेशानी के भावना हेल्थ केयर सेवाओं को एक्सेस करने में मदद करता है।
1: मतलब
0: ये कि जैसे आपको कोई भी स्वास्थ्य सेवा चाहिए या आप किसी भी स्वास्थ्य सेवा का इस्तेमाल कर रही हैं तो सारी चीजों की जानकारी कहीं ना कहीं आभा आईडी में दर्ज हो सकती है। अच्छा। अब मैं थोड़ा आपको खुलकर बताता हूँ, खुलकर यानी विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आभा कार्ड जिसे मैंने पहले बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है लोगों की, जो एक यूनिक 14 अंकों का नंबर है जिसे भारत में हेल्थ केयर एक्सेस को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल आयुष्मान भारत स्कीम के हिस्से के रूप में ही आभा हेल्थ कार्ड आपको देश भर के हेल्थ केयर प्रदाताओं के साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और उसको शेयर करने की अनुमति देता है।
1: मतलब अब आप समझ पाए, हमारे पास पर्चा नहीं भी है तो भी अगर कहीं गुम हो गया हमारा पर्चा तो ये जो आभा कार्ड है उसका प्रयोग करके हम इसको अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: जानकारी हासिल कर सकते हैं।
0: तो आभा कार्ड के मोटे तौर पर जो लाभ हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ।
1: हाँ बताइए।
0: पहला, आसान हेल्थ केयर एक्सेस है आपको। दूसरा, सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके में उन कार्यक्रमों में भी कहीं नामांकन करना है तो वहां भी आपको ये हेल्प करता है। स्वास्थ्य बीमा रिकॉर्ड, यानी कि अगर आपने स्वास्थ्य बीमा कहीं से कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस कहीं से कराया है, तो आप अपने आभा कार्ड में अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी दर्ज करा सकते हैं ताकि आपकी एक ये भी जानकारी आपके पास रहेगी कंबाइंड तौर पर। और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड आपका लगातार बन रहा है जिसको आप किसी भी डॉक्टर से अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो उससे शेयर कर सकती हैं।
1: तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है आशीष कि जैसे कि आपने बताया कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने कहीं कराई है, स्वास्थ्य बीमा कराई है, उसको इसमें ऐड कर लेंगे तो इसका पैसा उसके अकाउंट में चला
0: जाएगा?
1: पैसे
0: से मतलब अभी नहीं है। देखिए, वो तो जाहिर है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उस समय आप अपनी सारी बैंकिंग डिटेल्स देते ही हैं पॉलिसी लेते समय, ठीक है। और पॉलिसी की जब मैच्योरिटी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसी भी हैं हेल्थ सेक्टर की जिसमें मैच्योरिटी के बाद तो कुछ नहीं मिलता, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, बल्कि वो एक तरह का ऐसा इंश्योरेंस है कि अगर आपको कहीं ना कहीं कोई बीमारी लगती है तो उस समय आपका इलाज उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हो जाता है, यानी कि आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, जो पैसा खर्चा आता है वो सारा बेयर होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो बहुत सारी ऐसी मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी हैं अलग अलग जो पॉलिसी सेक्टर में हैं कंपनियां, जिसमें मैच्योरिटी के बाद भी आपको अमाउंट मिल जाता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कुल मिलाकर आप अपनी हेल्थ पॉलिसी जो है, स्वास्थ्य बीमा जो है, उसके विवरण को आभा आईडी से अगर लिंक करते हैं तो अपने मेडिकल कवरेज को आप एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हैं।
1: एक ही जगह पर?
0: हाँ, एक ही जगह पर अपने मेडिकल कवरेज को आप ट्रैक कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। ये बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि भावना, आप मुझसे पूछ तो रही हैं लेकिन आपको भी इस बारे में बहुत सारी जानकारी है, तो मैं चाहूंगा कि अपने श्रोताओं को कुछ आप भी जानकारी
1: मेरे मन में मेरे प्रश्न का एक जवाब दे दीजिए आशीष आप पहले
0: जी।
1: कि अकाउंट आपने जैसे आभा आईडी के बारे में बताया, आभा कार्ड के बारे में बताया, आभा एक अकाउंट है और ये अकाउंट में क्या कुछ हमें पैसे जमा करने हैं या सरकार देगी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप जानकारी?
0: नहीं, इसमें कोई ऐसा पैसा वाला हिसाब किताब नहीं है भावना। दरअसल ये एक तरीके का मेडिकल या हेल्थ अकाउंट है, स्वास्थ्य खाता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और विस्तार से आपको समझाता हूँ कि आभा का अर्थ क्या है, पहले इसको समझ लें। दरअसल आभा या आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जैसा मैंने अभी बताया, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसके तहत बनाई गई एक यूनिक हेल्थ आईडी है। आभा कार्ड एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के रूप में काम करता है जो किसी भी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री को समेकित करता है।
1: अच्छा।
0: जिससे हेल्थ केयर सेवाओं का आसानी से एक्सेस मिलता है, यानी कि जितनी भी हेल्थ केयर की सेवाएं हैं उसमें आपको एक सही एक्सेस मिलता है और बहुत आसानी से मिलता है। और ये आभा हेल्थ कार्ड यूजर को हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ साथ अपने हेल्थ डेटा को भी आसानी से शेयर करने की अनुमति देता है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, और इससे कहीं ना कहीं एक बेहतर समन्वय और पर्सनलाइज्ड केयर सुनिश्चित होती है भावना। और हेल्थ केयर की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके आभा का उद्देश्य भारत में समग्र स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जिससे सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्व स्वास्थ्य देखभाल अधिक सुलभ और कुशल बन जाती है। अब एक सवाल और भी आता है, ये तो हो गया कि आभा क्या है, लेकिन सवाल ये है कि आभा क्यों बनवाएं? यानी कि सवाल ये है कि
1: आप कैसे बनवाएं?
0: हाँ, सवाल ये है कि आभा आईडी क्यों बनाएं? ठीक है,
1: कि हमारे जो श्रोता हैं अगर इसको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग भी कर पाए। हाँ। कि क्यों बनवाएं और कैसे बनवाएं, कहाँ अप्लाई करें?
0: बिल्कुल, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत में दरअसल हमने देखा है कि हम हर तरीके से हर प्लेटफॉर्म लगभग आज की डेट में डिजिटाइज हो चुका है। डिजिटल हम अगर स्तर पर देखें या ई गवर्नेंस के स्तर पर देखें तो हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। हम लोग हर चीज में कहीं ना कहीं डिजिटली बदलाव कर रहे हैं। तो भारत के तेजी से बढ़ते हुए जो डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम है उसका हिस्सा बनने के लिए अपनी आभा हेल्थ आईडी बनाना बहुत जरूरी है। समझ रही हैं आप?
1: हाँ, समझ
0: जैसे जितना भी डिजिटल इकोसिस्टम है देश की सरकार का या विभागों का या अलग अलग महकमों का जहां पे लोगों को फायदा होता है योजनाओं से, उससे जुड़ने या उसका हिस्सा बनने के लिए आपकी आभा हेल्थ आईडी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हॉस्पिटल, क्लिनिक और डॉक्टरों के साथ साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने और शेयर करने का सबसे आसान तरीका देता है, जिससे एक तो तेज डायग्नोसिस हो सकेगा और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी सुनिश्चित हो पाएगा। तो भावना, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो हमारा डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, अगर आपको उसका हिस्सा बनना है तो आपके पास आभा आईडी होना जरूरी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़े और कारण बताएं कि डिजिटल हेल्थ केयर के लिए आभा कार्ड लोग क्यों चुने।
1: अच्छा ठीक है, आपने पूछा कि आभा कार्ड क्यों चुने, तो आशीष हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो आभा आईडी है एक ही जगह पर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपके प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चे और जो टेस्ट रिपोर्ट है वो एक ही जगह पर स्टोर करती है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: यानी कि ये जो तीनों चीजों की जानकारी है वो हमारी आभा आईडी में एक ही जगह पर आ जाएगी,
1: एक ही जगह पर स्टोर कर लेती है।
0: ठीक है,
1: इस वजह से ही भी आभा आईडी चुने। और दूसरा कारण ये है, और दूसरा ये कि डॉक्टर तुरंत आपकी मेडिकल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आशीष, और पेपर वर्क और प्रतीक्षा समय को कम कर सकते हैं।
0: मतलब ये हुआ कि कहाँ, जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे पेपर होंगे तो हमको अलग अलग जगहों से कलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें हमारा समय ज्यादा जाएगा, तो कम से कम वो समय बचेगा
1: वो
0: और डॉक्टर एक ही जगह पर
1: जल्दी
0: से वो सारी हिस्ट्री समझ जाएंगे। ठीक है,
1: और दूसरा ये कि पॉलिसी के जितने भी लाभ हैं और कैशलेस ट्रीटमेंट तक आसान एक्सेस के लिए अपने स्वास्थ्य बीमा विवरण को लिंक करें।
0: अच्छा, मतलब जो कैशलेस इलाज मिलता है, अगर वो आप पाना चाह रहे हैं और आपने अगर इसको लिंक कर लिया है अपनी आभा आईडी से, तो यानी कि आपको इसका लाभ भी मिल सकता है।
1: मिलेगा।
0: ओके,
1: और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नामांकन करने और सरकारी हेल्थ केयर की स्कीम का लाभ उठाने के लिए अपने आभा हेल्थ कार्ड का उपयोग करें।
0: तो श्रोताओं देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो अभी भावना जी ने बताई कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नामांकन करने, यानी कि अगर कोई सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य कार्यक्रम हो रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो उसमें आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं अगर वहां पर इसका विकल्प रखा गया है तो, और सरकारी हेल्थ केयर स्कीम जितनी भी चल रही हैं उसका लाभ उठाने के लिए अपने आभा हेल्थ कार्ड का आप उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको आभा हेल्थ कार्ड बना लेना चाहिए। और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं भावना?
1: लाभ तो अभी आपने बताया आशीष, कुछ लाभ तो आपने बताया कि आभा सुविधाजनक एक्सेस हो सकता है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी आसान पहुंच हो सकती है, आयुष हेल्थ केयर स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती हैं, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षा हो सकती है और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड का आसानी से रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है आशीष।
0: सही कहा भावना आपने। तो कुल मिलाकर आभा कार्ड चुनकर आप कुशल, पेपरलेस और कनेक्टेड हेल्थ केयर सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे मेडिकल विजिट अधिक सुविधाजनक और प्रभावी हो जाती है। और जैसा कि लाभ के बारे में चर्चा चल रही है, तो स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी करने का सुविधाजनक एक्सेस है आभा, और स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान एक्सेस है आभा, यहाँ तक कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन जिसको HPR बोलते हैं उस तक भी आसान एक्सेस है आभा, और आयुष हेल्थ केयर सेवाएं सुलभ हो जाती हैं आभा हेल्थ आईडी से। इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षा मिलती है आपको, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड PHR का आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं आप लोग, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है आभा, 14 अंकों का आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देता है जो हेल्थ केयर सिस्टम के भीतर एक ही पहचान आपकी स्थापित करता है।
1: आभा हेल्थ आईडी कार्ड आपके मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की सुविधा प्रदान करता है।
0: इसके अलावा एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की भी सुविधा है, यानी कि आभा हेल्थ आईडी सिस्टम आपके अकाउंट को आवश्यकता के अनुसार एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने की सुविधा देता है और ये नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि आप अपनी पसंद और अपनी परिस्थितियों के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में अपनी भागीदारी को मैनेज कर सकते हैं।
1: और इसके साथ ही आभा हेल्थ आईडी कार्ड आपको लाभार्थियों को जोड़ने, आश्रितों या परिवारों के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य रिकॉर्ड के मैनेजमेंट की सुविधा भी प्रदान करता है। यह सुविधा आपके प्रियजनों की स्वास्थ्य जानकारी की एकीकृत देखभाल को सपोर्ट करती है और उनकी निगरानी को आसान बनाती है।
0: अरे वाह, इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री का एक्सेस भी है आभा। दरअसल कार्ड के साथ आपको स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक डेटाबेस हेल्थ सुविधा रजिस्ट्रेशन का एक्सेस मिल जाता है। देखिए बहुत सारे लाभ हैं। वैकल्पिक दवा का एक्सेस मिल जाता है, जैसे आयुष सेवाओं के साथ में आभा हेल्थ आईडी कार्ड का इंटीग्रेशन अगर हो तो वैकल्पिक दवाओं के विकल्पों तक भी आपकी पहुंच हो जाती है। इतना ही नहीं, सहमति आधारित डेटा शेयर कर, यानी कि अगर आप चाहें तो उस आईडी के जरिए आप अपना डेटा जिसको चाहते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी है कि नॉमिनी को जोड़ने की अनुमति देता है आभा। भावना, क्या इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगी?
1: हाँ आशीष, हम बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। आभा हेल्थ आईडी कार्ड आपको नॉमिनी बनाने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा एक्सेस किए जा सके, जहां आप अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यह प्रावधान देखभाल की निरंतरता को सपोर्ट करता है और आपके स्वास्थ्य हितों की भी सुरक्षा करता है।
0: क्या बात है, यानी कि आभा सभी के लिए बहुत जरूरी है। वैसे मुझे लगता है कि इसमें जो बीमा क्लेम वाली दिक्कत आती है लोगों के सामने, अगर आप आभा के साथ जुड़े हैं तो बीमा क्लेम प्रोसेसिंग जो है वो तेज हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि आपको बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ तक कि एक बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि आभा कार्ड क्या बच्चों के भी बनाए जा सकते हैं?
1: हाँ आशीष, चाइल्ड आभा कार्ड के नाम से बच्चों के भी आभा हेल्थ आईडी सिस्टम बच्चों तक पहुंचता है, जिससे चाइल्ड आभा कार्ड बन सकते हैं। यह शुरुआती एकीकरण सुनिश्चित करता है कि बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड को कम उम्र से व्यवस्थित रूप से डॉक्यूमेंट किया जा सके, जिससे लगातार और सूचित बाल रोग देखभाल में मदद मिलती है। आशीष, अब आशीष एक प्रश्न आ जाता है मेरे मन में, यही से।
0: क्या पूछिए?
1: वो ये कि आभा हेल्थ कार्ड अकाउंट किसे बनाना चाहिए?
0: हाँ, ये बहुत अहम प्रश्न है भावना, आपने जो पूछा है। दरअसल एक्सेसिबल हेल्थ केयर जितने भी लोग चाहते हैं, सभी लोगों के लिए आभा कार्ड बनाना बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। जैसे क्रॉनिकल जो डिजीज हैं, ऐसी बीमारियों से ग्रसित लोग, या जिन्हें बार बार मेडिकल आवश्यकताएं पड़ती हैं, ऐसे लोग, या फिर वो लोग जो अपने हेल्थ केयर अनुभव को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए वो आज इलाज करा रहे हैं, फिर वो सही हैं, कई महीनों कई सालों तक वो सही हैं, फिर कुछ बीमारी आई, फिर उन्होंने उस चीज में सारे रिकॉर्ड दर्ज कर लिए, फिर वो सही हो गए कुछ महीनों कुछ सालों के बाद में, फिर कोई बीमारी आई, फिर उन्होंने अपना इलाज कराया और रिकॉर्ड दर्ज हो गया, तो यानी कि उनके पास कई साल का डेटा भी होगा। तो ऐसे लोग भी अपना आभा कार्ड बनवा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जहां तक बात इसके विस्तार रूप से समझने की है, तो देखिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रारंभिक नामांकन लाभ को आप अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आभा कार्ड बनाकर आप हेल्थ केयर सेवाओं का सही समय पर एक्सेस पा सकते हैं, ताकि समस्याओं को आगे बढ़ाने से पहले ही उनकी आवश्यक देखभाल आपको मिल जाए। और ये सक्रिय रूप से आपके स्वास्थ्य प्रबंधन को भी बढ़ाता है और दीर्घकालिक परिणामों में सुधार भी करता है। और भावना, इसके अलावा आभा कार्ड जो है ना, वो हेल्थ केयर में डिजिटल टेक्नोलॉजी को एकीकृत करता है, मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। जैसे यूजर अपने मेडिकल रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श कर सकता है या ले सकता है, और अपॉइंटमेंट मैनेज कर सकता है, और ये बड़ा आसान हो जाता है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना, और जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना या फिर अपॉइंटमेंट मैनेज करना, ये सब कुछ आसान हो जाता है। यहाँ तक कि भविष्य के हेल्थ केयर लाभों के लिए भी आप तैयार हो जाएं अगर आपके पास आभा कार्ड है, क्योंकि क्योंकि कार्ड होने से व्यक्ति भविष्य में हेल्थ केयर सुविधाओं के लिए भी तैयार हो जाते हैं और ये एक उभरता

0: हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो टेक्नोलॉजी में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। इतना ही नहीं, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं आपको। आभा कार्ड बहुत सारे हेल्थ केयर सुविधाओं में मरीज के डेटा को लिंक करके एक तरीके से बड़े ही आकर्षक हॉस्पिटल अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि एकीकरण हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री को एक्सेस करने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर जानकारी प्राप्त करने वाले निर्णय और बेहतर रोगी देखभाल की सुविधा मिलती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई हमारे श्रोताओं को। अब लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे और आ जाता है।
0: जी पूछे
1: पूछे कि ये आभा कार्ड का उपयोग कैसे करें?
0: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है भावना। दरअसल आभा हेल्थ कार्ड, जैसा मैंने पहले बताया कि कई तरीके के लाभ देता है जो मेडिकल सेवाओं को चुनने से संबंधित तमाम प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हिस्ट्री जो मैंने बताया HPR, इसका एक्सेस करें। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर HFR का उपयोग करें। वैकल्पिक दवा विकल्प आप देख सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अब आपने जो एक सवाल पूछा कि इसका उपयोग कैसे करें, तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आभा कार्ड पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड यानी कि PHR को आप ऑनलाइन मैनेज कैसे करें, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इसकी ID बनती कैसे है,
1: और ये भी आप चरणबद्ध तरीके से बताइएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पहले तो ये समझ लें कि आभा ID पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एड्रेस बनाने के लिए कुछ चरण है जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। पहला, आप आभा ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि एंड्रॉइड और iOS पे हमको आभा ऐप जो है वो प्रोवाइडेड है। सरकारी ID का प्रयोग करके रजिस्टर करें और पोर्टल की तरफ से पूछे गए जितने भी विवरण हैं वो उसमें सब भर दें आप, ठीक है। अपने आधार कार्ड से जो फोन नंबर लिंक है उस नंबर को यहाँ पे दर्ज कर दें, ठीक। अपने मोबाइल नंबर पर शेयर किए गए OTP के साथ नंबर को सत्यापित कर दें, ठीक है। OTP सत्यापित जैसे ही होगा ये प्लेटफॉर्म आपका PHR एड्रेस जनरेट कर देगा, ठीक है। अब आपका PHR एड्रेस जनरेट हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल एक ये आ जाता है कि आभा कार्ड के लिए आखिर अप्लाई कैसे करें, है ना। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ एक पोर्टल पर आए हैं,
1: अभी उसका ऐप डाउनलोड करके चीजें हमने
0: जी
1: उसको अपने मोबाइल पे ले लिया है, लेकिन अब उसको क्या करें कि ऑनलाइन आभा कार्ड अप्लाई कैसे करें?
0: बिल्कुल। तो ये भी समझने वाली जरूरत, ये भी समझने वाली बात है। तो आभा एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन है जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जो अप्लाई करेंगे वो कैसे कैसे करें या इसमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है भावना?
1: आशीष, एक प्रश्न आ रहा है छोटा सा।
0: पूछिए।
1: कि आभा जो अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले अपना पर्सनल हेल्थ एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा।
0: हाँ, जो मैंने आपको बताया पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो है आपका, वो आपको जैसा मैंने बताया कि आप ऐप डाउनलोड करेंगे,
1: PHR एक एड्रेस है पहले, वो जब जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम आभा ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तभी तो उसमें आपसे OTP मांगी जा रही है। जब आप OTP डालकर अपना फोन नंबर सत्यापित करते हैं तो आपका PHR जो है, PHR एड्रेस वो जनरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। अब जो आपने पूछा है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें इस कार्ड के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, इसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? तो आभा कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना आधार कार्ड रेडी रखें या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रेडी रखें। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके आप आभा हेल्थ कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहला ये कि आधार कार्ड का उपयोग करके, है ना, और दूसरा ये कि ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके। तो अगर आप मान लीजिए आधार कार्ड का उपयोग कर रहे हैं आभा नंबर पाने के लिए, ठीक है, तो एक लिंक है आभा ऐप का जो मैं पढ़ भी देता हूं, और अगर हमारे श्रोता भाई बहन जो हैं अगर वो जन सेवा केंद्र पर जाते हैं तो वहां पर जो व्यक्ति मौजूद होते हैं वो आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। यदि आप खुद इंटरनेट के जानकार हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लैपटॉप पर या अपने फोन पर ब्राउजर में जाके अगर वो लिंक डालेंगे तो वो लिंक खुल जाएगा। लिंक मैं जबानी तौर पे भी बता देता हूँ,
1: जबानी तौर पे आशीष बहुत ही आराम से पढ़िएगा।
0: हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा
1: करके आप
0: जी, ताकि लोग उसको सुन लें और अच्छे से नोट कर लें। लिंक कुछ ऐसा है, तो भावना मैं जबानी तौर पर भी एक बार अपने श्रोताओं को ये बता देता हूँ कि वो लिंक क्या है, ताकि अगर वो लोग कहीं से लिंक नहीं मिल रहा है,
1: बहुत आराम से आशीष बताइएगा।
0: तो लिंक, अगर आप आधार कार्ड के जरिए अपना आभा नंबर पाना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है वो है http:// दो बार लगाना है आपको, और उसके बाद आपको टाइप करना है ABHA आभा, डॉट लगाना है abdm.gov.in, ये हमारी आईडी है। फिर स्लैश लगाइए, ABHA लिखिए, फिर एक स्लैश लगाइए, V3 लिखिए, फिर एक स्लैश लगाइए और रजिस्टर लिखिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका दूसरा चरण जो आएगा वो ये कि आप आधार का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाएं, ये ऑप्शन जहां पे है उस पर क्लिक कर दें। फिर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर वहां पर दर्ज करना है, उसमें घोषणा बॉक्स होगा जिसको आप चुनें, और अगला उसमें लिखा होगा, अगला यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें नेक्स्ट या अगला लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ओटीपी वहीं पर डालना है जहां पर उसको लिखना है, सामने आपके स्क्रीन पर वो ऑप्शन आएगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए, कंफर्मेशन के लिए मोबाइल नंबर दोबारा दर्ज करें। ऐसा करने के बाद आपका संचार का जो विवरण है वो दर्ज करें, और जब ये सारी चीजें आप दर्ज कर देंगे तो आपका आभा पता बनाया जाएगा।
1: ये तो बहुत आसान प्रक्रिया लग रही है आशीष।
0: हाँ, सुनने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है या लेंदी लग सकती है, लेकिन एक बार वो करेगा उसके लिए प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरलीकरण।
1: जो लोग इंटरनेट आजकल तो सभी लोग यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं और रजिस्टर खुद ही मोबाइल पे करते हैं, बहुत सारी चीजें, तो हमें उम्मीद है कि श्रोता ये लोग खुद ही कर लेंगे।
0: हाँ, या जनसेवा केंद्र है,
1: जनसेवा केंद्र पे कर सकते हैं,
0: ठीक है। और ये दूसरा जो विकल्प ड्राइविंग लाइसेंस वाला है वो भी मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए आपका जो लिंक है वो है http://// लगाइए abha.abdm.gov.in, जो हमारी आईडी है सरकार की, फिर /abha/v3/register, ये लिखने के बाद क्लिक करें तो आपके सामने एक पन्ना खुलेगा जहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करना है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाए पर क्लिक करें। वहां पे एक ऑप्शन होगा, ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके अपना आभा नंबर बनाए, इस पर क्लिक करिए, वहां पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और घोषणा चुने, आगे बढ़े, यानी कि आगे बढ़े वाली जो घोषणा है उसको क्लिक कर दें और आगे बढ़े। जैसे ही आप ये करेंगे अपने रजिस्टर मोबाइल पर आप देखेंगे कि एक ओटीपी आया होगा जिसको दर्ज करें सामने, और फिर वहां पर एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें नाम, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म तिथि, लिंग, पता, पिन कोड, जिला और राज्य जैसे विवरण आएंगे जिसको आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका है उसकी फोटो उस पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये सब कुछ करेंगे आपका आभा नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर लें। आपका आभा नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसा हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि आभा कार्ड के साथ हेल्थ केयर का जो भविष्य है वो वाकई में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो सुव्यवस्थित हो जाती है, और टेलीमेडिसिन इंटीग्रेशन भी होता है। जैसे आभा कार्ड वर्चुअल कंसल्टेशन को भी सपोर्ट करता है जिससे रोगियों को दूर से हेल्थ केयर सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद मिलती है भावना, खासकर ग्रामीण या कम सेवा वाले क्षेत्र के लोग जो है उन्हें लाभ हो सकता है।
1: यानी कि फोन से भी आप अपने दवाओं की जानकारी पा सकते हैं।
0: हाँ, मतलब उसमें अगर आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो आप ये भी जानकारी वहां से हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अनिवार्य सूचना क्या है, आभा के साथ CGHS लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। CGHS जानती है क्या होता है? केंद्र सरकार की जो हेल्थ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, इसको लिंक करना जरूरी है, और इसके भी कई सारे फायदे हैं।
1: वो क्या है आशीष?
0: वो ये है कि सुव्यवस्थित सेवाएं हो जाती हैं आपकी, जो केंद्र की सेवाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, यानी कि सेंट्रलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड आपका हो जाता है, ठीक है, बेहतर हेल्थ केयर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ ये अनिवार्य लिंक जो है वो सरकारी नियमों का पालन भी सुनिश्चित करता है, जिससे केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ती है।
1: आशीष, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, लेकिन एक प्रश्न और आ रहा है मन में, और वो ये है कि ये आभा एड्रेस क्या है।
0: हाँ बिल्कुल, सारे प्रश्नों का जब तक उत्तर ना मिले तब तक चर्चा का भी क्या फायदा भावना। तो मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगा, आभा जैसा कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, आभा एड्रेस जो है एक विशेष पहचानकर्ता के रूप में काम करता है।
1: अच्छा।
0: यानी कि आपका जो आभा नंबर है वो एक विशेष पहचान है,
1: आधार कार्ड नंबर की तरह।
0: बिल्कुल, आधार कार्ड नंबर की तरह, ठीक है।
1: हाँ।
0: तो आभा एड्रेस एक विशेष पहचानकर्ता के तौर पर काम करता है, जो अनिवार्य रूप से स्वघोषित यूजर नेम है आपका, ठीक है, जो आप अपना बनाते हैं, और ये आपको अपने हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में शेयर करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है।
1: आशीष, आपने सारी बातें तो बताई, लेकिन हमने बहुत पहले ही प्रश्न पूछा था शुरुआत में ही, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, बार बार ये आभा अकाउंट ये आ रहा है, ये अकाउंट, ये खाते का क्या मतलब है? क्या इसमें पैसे भी जमा करने पड़ेंगे, या फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उससे लिंक करने का ये क्या अर्थ है, जरा समझाइए थोड़ा।
0: नहीं बिल्कुल भावना, ये आपके दिमाग में आई हुई एक बात है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कई श्रोताओं के मन में भी ये बात आए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आभा कार्ड प्राप्त करने की जो लागत आपको लग रहा है ना कुछ होगी, ये बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। आभा कार्ड मुफ्त है। आपको अगर अपनी आभा आईडी बनानी है तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधिकारिक आभा वेबसाइट पर जाइए, वहां से अपना आभा हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने आईडी बनाई है तो। लेकिन अगर आपको आभा के तहत कवर ना की गई किसी भी अतिरिक्त हेल्थ केयर सेवाओं को एक्सेस करने की आवश्यकता है तो आपको उनके लिए अलग से भुगतान करना पड़ सकता है।
1: अच्छा आशीष, अब ये बताइए कि कार्ड रजिस्टर करने में कितना लागत लगता है?
0: देखिए, मैंने बताया पहले भावना कि ये सब कुछ मुफ्त है, आप मुफ्त में आभा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी आभा आईडी बना सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आधिकारिक आभा वेबसाइट से अपना आभा हेल्थ कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है।
1: मतलब अगर हम इंटरनेट यूज करते हो तो खुद ही जाकर, या हमारे घर में अगर कंप्यूटर है, प्रिंटर है, तो खुद भी डाउनलोड, ये सारे काम हम खुद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ चूंकि बात आभा की हो रही है, तो सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो आयुष्मान कार्ड के तौर पर हमारे देश में चलाई जा रही है, उसके बारे में भी मैं एक लाइन में जानकारी देना चाहूंगा कि जो योग्य व्यक्ति हैं वो देश भर में पैनल में शामिल जितने भी हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उस पर हर वर्ष 5 लाख तक के कैशलेस हेल्थ केयर का लाभ पाने के लिए अपने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: आशीष, ये आयुष्मान कार्ड और ये आभा कार्ड, ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तो क्या दोनों बनवाने हैं कि एक ही से हमको सुविधा मिल जाएगी, ये जरा हमको थोड़ा सा समझाइए।
0: ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दरअसल आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड के बीच अंतर जो है वो ये है कि आभा कार्ड मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जबकि आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त में हेल्थ केयर लाभ प्रदान करता है। अब एक बात और जो मैं अपने तरफ से बता देता हूँ कि आभा कार्ड के उपयोग में मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस करने, हेल्थ केयर सेवाओं का लाभ उठाने और सुव्यवस्थित उपचारों के लिए बीमा विवरण लिंक करने के लिए हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और फार्मेसी शामिल की गई हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि आभा कार्ड फ्री ट्रीटमेंट प्रदान करता है या नहीं।
1: जी बिल्कुल,
0: ये भी आपके मन में आ रहा होगा।
1: बिल्कुल मन में आ रहा था, हम अगला प्रश्न ही आपसे करने वाले थे, पूछने वाले थे।
0: हाँ, तो मैं आपको ये भी बता दूं, अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि नहीं, इसका जवाब है नहीं। फ्री में कोई ट्रीटमेंट आभा कार्ड ऑफर नहीं करता, क्योंकि आभा आपकी मेडिकल हिस्ट्री स्टोर करने की एक व्यवस्था है।
1: तो ये जो अकाउंट शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं, वो अकाउंट सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री के लिए है स्टोर
0: ये करने अकाउंट
1: के
0: वैसा
1: लिए?
0: ही है जैसे आप अपने इंटरनेट पर कहते हैं ना कि हमारा जीमेल अकाउंट है, हमारा याहू अकाउंट है, है ना, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, हमारा फेसबुक का अकाउंट है, या हमारा ट्विटर या एक्स का अकाउंट है, तो जैसे वो खाता है वैसे ही एक एप्लीकेशन जिसमें बना हुआ एक ऐसा खाता जो आपकी जानकारियां स्टोर करता है,
1: जो हमारे पर्चे जो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो हमारी सारी विवरण इसमें स्टोर करके रख देगा।
0: तो इसीलिए कहते हैं कि आभा कार्ड फ्री ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करता है, बल्कि ये हेल्थ रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, लेकिन ये आयुष्मान कार्ड जैसे मेडिकल खर्चों को कवर नहीं करती है। ठीक है
1: जी आशीष,
0: दो तीन सवाल और जो अक्सर लोग पूछते हैं, मैं उसका भी एक बहुत कम शब्दों में जवाब दे दूं। जैसे एक सवाल ये भी आता है कि क्या आभा कार्ड स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है, तो इसका उत्तर भी है नहीं। दरअसल आभा कार्ड स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करता, इसे मेडिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने, जैसे मैंने पहले बताया, और शेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन बेहतर एक्सेस के लिए आप इसे अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के साथ लिंक जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और एक सवाल आता है भावना, पता है आपको
1: आशीष,
0: अक्सर लोग पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आभा कार्ड कैशलेस है, तो इसका उत्तर कुछ ऐसा है कि आभा कार्ड खुद में तो कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान नहीं करता, लेकिन ये बीमा विवरण स्टोर करने में मदद जरूर करता है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य बीमा प्लान से लिंक होने पर कैशलेस क्लेम के लिए जरूर किया जा सकता है। ठीक है,
1: कैशलेस क्लेम,
0: जी कैशलेस क्लेम के लिए आप
1: लिंक
0: उसका
1: करेंगे अपना हाँ, बीमा को, तब वो
0: तो जैसे आपने मान लीजिए कैशलेस इलाज कराया तो उसका क्लेम करने के लिए जरूर ये आपके काम आएगा। ठीक है, एक सवाल और भी आता है, आभा कार्ड के लाभों की लिमिट क्या है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि आभा कार्ड के लाभों की फाइनेंशियल लिमिट तो कोई है नहीं, लेकिन डिजिटल स्वास्थ्य पहचान के रूप में चूंकि ये कार्य करता है, इसलिए जो मेडिकल रिकॉर्ड तक सुरक्षित एक्सेस आपको देता है, लेकिन इलाज की लागत को कहीं से कवर नहीं करता। तो ये हमें थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, जहां पर ऐसा लग रहा है कि हम आभा आईडी बना लेंगे तो हमारा सब कुछ मुफ्त में हो गया,
1: या बिल्कुल आमतौर पे ये सब सुनने में ऐसा लग रहा है आभा कार्ड हो सकता है कुछ लाभ मिले, तो श्रोताओं से कहना चाहिए,
0: लाभ तो बहुत बड़ा है इसका,
1: लाभ सिर्फ रिकॉर्ड को रखने तक ही, ये बहुत जरूरी है ये,
0: तो ये लाभ
1: पुराने से पुरानी बीमारी जितनी भी होगी वो सारे रिकॉर्ड में मेंटेन रखेंगे।
0: कोई बच्चा बीमार हो गया
1: जी,
0: ठीक है, आपने उसका आभा कार्ड बनाया है, आपने उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री रखी हुई है, अब वो ठीक हो गया, मान लीजिए 15 से 20 साल की उम्र के बाद में अचानक से उसको कोई ऐसी बीमारी हुई जिसकी मेडिकल हिस्ट्री कहीं ना कहीं उसके 20 साल पहले वाली बीमारी से जुड़ती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, वो डॉक्टर को तुरंत समझ में आ जाएगी, तो ये कितना बड़ा टूल है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि ऐसी जानकारी आप कहीं और इकट्ठा करके रख नहीं सकते, तो इसलिए आपको एक डेडिकेटेड सरकार की तरफ से सर्वर दे दिया गया है, जहां आप अपना खाता खोलें, अपनी जानकारी सारी उसमें रख दें। इसके साथ साथ एक सवाल और भी पूछा जाता है कि आभा क्या एक निजी है या सरकारी पहल है, तो ये पूरी तरीके से सरकारी पहल है, ये हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसकी तरफ से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो कि ABDM है, इसके तहत 2021 में इसको शुरू किया गया था,
1: 2021 तक ये सुविधाएं सभी को मिल दी जा रही हैं
0: और काफी उपयोगी है, ये तो हम देख ही रहे हैं इसके जो फीचर्स हैं,
1: जैसे कि अभी चर्चा के दौरान बात निकल के सामने आई, ये बहुत ही इजी और बहुत ही लाभप्रद है आशीष,
0: बिल्कुल। अच्छा ये भी बात है कि आभा कार्ड बनाने के बाद क्या करें, तो आभा कार्ड बनाने के बाद आपको अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक करना चाहिए, ठीक है, बीमा विवरण अगर आपके पास कोई है तो उसको अपडेट कर लीजिए, बेहतर मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट को अगर समन्वित करना है तो उसके लिए हेल्थ केयर प्रदाताओं के साथ में अपनी आईडी भी आप शेयर कर दें, ताकि वो आपको सही ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो भावना, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आज जो हमने आभा को लेकर विस्तार से आपस में चर्चा की है या जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाई है, वो उनके बहुत काम आने वाली, क्या कहती हैं आप
1: आशीष? बहुत काम आने वाली है, और हम तो श्रोताओं से कहेंगे कि इसको बहुत सावधानी पूर्वक शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा सुने,
0: बिल्कुल। और देखिए रेडियो चैनल पर भी बहुत सारे हमारे जो गांव हैं वहां के महिला, वहां के पुरुष, वहां की बेटियां, वहां के बच्चे विजिट करने भी आए थे, जब हमने उनसे सवाल किया तो कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आभा कार्ड क्या होता है या आभा आईडी क्या होती है या इसके क्या काम है, इसका कैसे हम प्रयोग करें, कैसे पाएं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो हमारी श्रोताओं की एक श्रृंखला है, अब उन सबको ये बात पता चल जाएगी कि आभा है क्या, और ये कहीं ना कहीं उनके बहुत काम आने वाली है।
1: बहुत काम आने वाली है आशीष, क्योंकि जो आज चर्चा का मुख्य बिंदु ही रहा है आभा, और इसके बारे में जो भी आपने बातें बताई है, जो जानकारी बातें बताई है
0: जी,
1: वो बहुत ही लाभ होने वाली है।

0: श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं से ये भी कहेंगे कि आने वाले समय में हम आपको आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान कार्ड या फिर जितनी भी और हेल्थ की योजनाएं चल रही हैं या बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी विस्तार से अपने विशेषज्ञों के जरिए या अपने कार्यक्रम के जरिए बताते रहेंगे।
0: तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
1: और मुझे यानी अपने साथी आशीष और मेरी सहयोगी भावना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ
1: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद। आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम है कालाजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहती हूँ। टीकन देवी जी, आप तो गांव-गांव में जाती हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोई मामला देखा है?
1: अरे आरजे खुशी, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था। लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ। उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई
2: शाय है।
1: महीने तक इलाज नहीं हुआ। जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ,
2: जान तो बच गई,
1: लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, कालाजार की बीमारी। आज भी वो घर से कम निकलती हैं। लोग देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजे बहन, अगर समय पर इलाज हो जाता तो ये सब नहीं होता।
0: ये तो बहुत दर्दनाक है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कालाजार क्या है, कैसा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। टीकन देवी जी, सबसे पहले ये बताइए ये कालाजार होता क्या है?
1: देखिए आरजे खुशी, कालाजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसे हम आम भाषा में भले ही कालाजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीसमेनियासिस है। यह बीमारी एक बहुत ही छोटे से कीड़े के काटने से फैलती है, जिसे रेत मक्खी या सैड फ्लाइड कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात यह है कि यह ज्यादातर रात के समय काटती है, जब लोग सो रहे होते हैं। जब यह रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, पीलिया यानी तिल्ली, और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में यह बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन देवी जी, इसके लक्षण कैसे पहचाने, लोगों को कैसे पता चले कि ये कालाजार हो सकता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे खुशी। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वह पहले जैसा काम नहीं कर पाता। धीरे धीरे पेट भी फूलने लग जाता है, क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है और व्यक्ति बहुत कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
0: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अंदर से बहुत खतरनाक बीमारी होती है।
1: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में यह जानलेवा साबित हो जाती है। इसीलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: यह बीमारी इन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
1: भारत में यह बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
0: इतने सारे लोग जोखिम में हैं? ये तो सच में चिंता की बात है।
1: हाँ आरजे खुशी, और खास बात यह है कि यह बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहां साफ सफाई की कमी होती है और जहां पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहां यह रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा और बढ़ जाता है।
2: अगर किसी को लगे कि उसे ये लक्षण है तो उसे क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत सी आसान और तेज जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में यह बता देता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं, और सबसे जरूरी बात कि इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में की तरह मुफ्त किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसों की वजह से इलाज से वंचित ना रहे।
2: मुफ्त इलाज, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है।
1: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध है, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्द असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
2: टीकन देवी जी, आपने अभी बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत समय लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
1: नहीं नहीं आरजे खुशी, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही है। पहले के समय में जरूर जांच में समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी है कि गांव के पास ही सब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्द काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसमे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा खून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
2: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो बहुत ही आसान हो गया है।
1: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में इलाज करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध है।
2: लेकिन टीकन देवी जी, क्या ये टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद होता है?
1: देखिए ये

0: हूँ, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रहे हो, तो बिना सोचे जे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाए और टेस्ट कराए। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
1: और क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वे लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वे आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी है।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों एक ही गांव के पास उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाएं।
1: सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या कर रही है?
0: सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है, एक बड़ा कार्यक्रम चला रहा है जिनका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम और यह NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्षण यह है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि बहुत ही उपलब्धि है।
1: ये तो सच में गर्व की बात है।
0: हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाए, अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है, करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिसमें रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
1: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए?
0: बहुत आसान उपाय है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि मक्खियां इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचे। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसी बीमारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: टीकन देवी जी, एक बात बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलत फहमियाँ रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर उसके बारे में सुनी सुनाई बातों से जताते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे खुशी, और यही सबसे बड़ी समस्या भी है। हमारे गाँव में आज भी बहुत लोग काला आजार को भूत प्रेत साया या किसी की बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूक या ओझ गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: हाँ, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
0: बिल्कुल, और एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि यह बीमारी छूने से फैलती है, इसीलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग मरीज को तो अलग कमरे में रखने लगते हैं या उसे बात तक नहीं करते, लेकिन सच्चाई यही है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसीलिए मरीज से डरे या उसे अलग कमरे की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
1: और क्या क्या गलत धारणाएं होती हैं लोगों में?
0: कई लोग यह भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो या तो बीमारी ठीक हो गई। जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद

0: आदमी और गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है या और जटिल हो सकती है। और एक बात, और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, जबकि सच्चाई यह है कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियाँ पनप रही है तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
1: तो इसका समाधान क्या है, लोग इन गलत फहमियों से कैसे बाहर आए?
0: समाधान बहुत साफ है आरजे खुशी। सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाइए, किसी भी तरह का झाड़ फूंक या देरी से बचे। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स पूरा करे, चाहे बीच में कितनी भी आराम क्यों ना मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई रखें, दीवारों की दरारें भरें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, मरीज का साथ दे, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दे।
1: बहुत ही जरूरी बातें आपने बताई, लेकिन टीकन देवी जी, आपने शुरुआत में एक दुखदायी कहानी सुनाई थी, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी है?
0: हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के गांव में मेरी एक सहेली है रीना, कुछ साल पहले उसके इलाके में काला लगेगा। हमारे पास के गांव में मेरी एक सहेली है रीना, कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे, जिससे गांव पूरा डरा हुआ था। लेकिन रीना ने डरने के बाद समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक कराया, दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू किया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया। एक दिन उसे भी हल्का बुखार आया। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो हंसते हुए मुझसे बोली, यार टीकन, इस बार मैं डरने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं बल्कि समय पर कदम उठाना है।
1: सच में ये तो असली बदलाव है जब एक व्यक्ति जागरूक होता है और पूरे गांव को जागरूक बना देता है।
0: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी ताकत है, जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर हम समय पर पहचान ले और इलाज करा ले तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है।
1: और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम, समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचाता है।
0: और साथ ही सही जानकारी अपनाइए, गलत फहमियों से दूर रहिए।

0: जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार श्रोताओं।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
7: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
8: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
7: अरे वाह।
8: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
7: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
9: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का पहला अमेजिंग रेडियो स्टेशन, जो गाने नहीं बजाता है, आपके लिए काम की बातें भी लेकर आता है। और आज जो ये पूरे फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट, पूरा सुनिएगा, बिकॉज आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है बड़े कमाल के शख्स मौजूद है। तो सर का जो है, आइए जरा आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ श्री प्रदीप कुमार सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ मुरादाबाद से मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
10: अच्छे हैं
9: जी। सर आप अच्छे हैं, आप बहुत फैंटास्टिक हैं। आपको कैसे लग रहा है स्टूडियो में आके, पहले ये बताइए।
10: बहुत अच्छा लग रहा है और हमें सबसे बड़ी खुशी है
9: जी
10: कि हमारी बातें आम जन तक बहुत ही आसानी से
9: रेडियो के माध्यम से
10: पहुँचा सकते हैं, जो की शायद आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है।
9: क्या बात है सर। मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा वो हीट वेव के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो हीट वेव आपदा बेसिकली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनको बताइए।
10: देखिए ऐसा है कि हीट वेव आपदा जो है
9: जी,
10: ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा की श्रेणी में आता है। हमारे पास बेसिकली कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, केंद्र सरकार के तहत होती हैं, उनको हम प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होती हैं। और जो स्थानीय परिस्थितियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा होती है उसमें जो राहत है वो राज्य सरकार के STRF फंड से रिलीज किया जाता है। तो ये हीट वेव भी जो है स्थानीय आपदा के तहत आता है और इसमें जिला प्रशासन समन्वित रूप से कार्रवाई करता है और उसके हिसाब से हम कार्ययोजना बना के उस पर काम करते हैं।
9: वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर मैं अगर बात करूँ, इसी में एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आपदा के समय जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जरा ये बताइए।
10: इसके लिए ये है कि एक DM एक्ट 2005 है, उसके तहत DDMA का गठन किया गया है जिला में, जिसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी हैं वो सदस्य होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी सदस्य होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जी सदस्य होते हैं, इसके साथ एक वरिष्ठ एक्शन जो होंगे वो सदस्य होते हैं। और इस तरह से जब कोई भी आपदा आती है तो उस पे पूरे जिला प्रशासन को इंटीग्रेटेड रूप से काम करना होता है।
9: अच्छा ओके सर। सर जैसे हीट वेव एक बहुत ही गंभीर विषय है, जैसे अभी आपने बताया भी, ऐसे में बहुत सारे अग्निकांड भी हम सुनते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो ये जो अग्निकांड होते हैं जैसे कहीं पे आग लग जाना, एकदम से ये आपदा ही होती है सर, तो ऐसे में इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
10: क्या आपदा के बेसिकली हम अगर बात करें एक समन्वित रूप से
9: जी,
10: तो हम लोग तीन स्टेप

0: इस पे काम करते हैं, एक होता है कि आपदा के पहले, एक होता है आपदा के दौरान और एक होता है आपदा के बाद। ये तीन तरह की कार्रवाइयां होती हैं। तो जब आपदा के पहले होता है उसको हम लोग प्रिपेयर फेज बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसे अभी आपने कहा हीट वेव का सीजन अभी अप्रैल शुरू हो रहा है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम लोगों ने इसकी तैयारी फरवरी से ही शुरू कर दी। तो फरवरी में सर के निर्देश पे, सर की अध्यक्षता में जिला स्तर पे एक बैठक की गई जिसमें सभी जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय सारे अधिकारी वहाँ पे सर के निर्देशन में मीटिंग होती है। उनको कार्रवाई के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है कि कौन किस जिम्मेदारी को किस तरह से तैयारी करके निभाएगा। अब जैसे आपने अग्निकांड की बात की, तो ये बेसिकली जैसे जो हमारी फायर सर्विस होती है उनको सेंसिटाइज किया जाता है। वो उनका जो एक्शन है वो ये होता है कि अगर कहीं अग्निकांड की घटना हो रही है तो पहले तो जिला प्रशासन ये प्रयास करता है कि प्रचार प्रसार से हम लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड की घटनाएं हो ही ना जिससे कि लॉस हो। तो एक तो हमारी पहले इसलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे आज भी हम हैं यहाँ पे, कि अग्निकांड से लोग कैसे बचें। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे जागरूकता के विषय होते हैं कि भाई हम छोटी छोटी सावधानी, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे मोस्टली आप सुनते होंगे कि जो अग्निकांड की घटनाएं होती है वो शॉर्ट सर्किट से होती है। शॉर्ट सर्किट से जैसे कि कहीं ट्रांसफार्मर में दिक्कत है उसकी वजह से आग लग गई, कहीं हमारे वायर जो है घरेलू वायर ढीले हैं वहां से आग लग गई, तो और कुछ आजकल देखे जा रहे हैं सिलेंडर की लापरवाही, पुराने सिलेंडर हैं उनकी डेट नहीं देखी गई, वो ब्लास्ट हुआ उससे घटनाएं हो जा रही। तो इसके लिए एक ड्राइव होता है कि लोग जागरूक रहें और फायर सर्विस रेगुलर बेस पे जागरूकता अभियान इसके लिए चलाते रहते हैं कि लोग जागरूक रहें, अग्निकांड से बचाव हो। अगर अग्निकांड की घटना हो रही है तो तत्काल आप उनके जो टोल फ्री नंबर है उस पे आप सूचना दे सकते हैं। और उससे ये रहता है कि हम लोगों का ये निर्देश रहता है कि जितनी जल्दी हमारी फायर की गाड़ियां वहां घटना स्थल पे पहुंचेंगी उतनी जल्दी हम आग को काबू पा लेंगे। इसके साथ में हम लोग ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी, जैसे अग्निमित्र जो है उसको भी ये माना जाता है कि समुदाय हमारा प्रथम रिस्पॉन्डर होता है, तो अग्निमित्र हैं, आपदा मित्र हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, तो ये जो नजदीकी जहां भी ऐसी घटना हो रही तो उन लोगों को भी ये सेंसिटाइज किया जाता है कि आप मौके पे पहुंच करके और आग को बुझाने का काम करें। तो ये एक पूरा सिस्टम मिलके काम करता है पब्लिक के साथ।
1: सर अभी आपने जैसे इस पूरी जानकारी में टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, तो वो नंबर अगर किसी को डायल करना है तो वो कौन से नंबर होते हैं?
0: जैसे हमारा आपदा का ये 1077 है जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में वहाँ का नंबर है। कोई भी आदमी 24 आवर कभी भी अगर कॉल करेगा तो वहाँ पे कॉल तुरंत पिक होगी और संबंधित विभाग को उसको तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा।
1: बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर और काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, आपदाओं की बात कर रहे हैं, अभी हमने अग्निकांड का जिक्र किया, वहीं से अगर मैं बात करूं किसानों के लिए तो किसानों की फसल जो है वो अपनी फसल को कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कहने के उनके लिए भी बहुत लॉस वाली बात हो जाती है अगर हम अग्निकांड की बात कर रहे हैं तो। यहाँ
0: देखिए इस विषय में एक छोटा सा बहुत सारा जो देखा गया है, एक सबसे ज्यादा विषय ये आ रहा है कि अक्सर करके जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस ज्यादातर देखा जाता है कि किसान जब फसल बो रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर के आसपास भी वो फसल लगाए हुए होते हैं। तो इसमें एक सावधानी का ये लेवल बहुत जरूरी होता है कि कम से कम हम 5 से 10 मीटर के दायरे में कोई फसल वहाँ पे ना रखें, क्योंकि है क्या, आप मान लीजिए कि आपने 10 बीघा गेहूं लगा रखा है और आपने 5 मीटर के दायरे को छोड़ रखा है तो आपने 10 बीघा गेहूं को जोखिम से बचा रखा है, पहली चीज। तो ये तो हमारे किसानों के लिए सुझाव रहेगा कि वो कम से कम जहां भी इस तरह का ट्रांसफार्मर है तो वहां के 4-5 मीटर के दायरे में कम से कम फसल को ना रखें, उस एरिया को खाली छोड़ दें। और बिजली विभाग के लिए निर्देश जाता है जिला प्रशासन से कि आप जो ट्रांसफार्मर है और उसकी पोजीशनिंग जो है उसका मेंटेनेंस सही रखें, तार ढीले ना रहें, उसके फ्यूज सही रखें। पब्लिक के लिए रहता है खेतों में हो या घर में हो, अक्सर करके हम देखते हैं कि अपने सांस औकत पे और अपनी जरूरतों पे हम ज्यादा व्यय कर लेते हैं, लेकिन जहां इस तरह की बात आती है तो वहां पे जैसे जो घर की वायरिंग है उसको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तार डाले जाएं, उसको प्रॉपर चेक कराते रहें, ढीले तार ना रखे जाएं, कटिया बचाने लगाने से बचें, जगह जगह खुले तार हम लोग लगा लेते हैं और जैसे तैसे काम चलाते हैं, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर हम वही चीज अवॉइड कर देते हैं
0: जी।
1: सो दोस्तों आपको ये चीजें बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत काम की चीजें। सर अगर मैं बात करूँ वही जो लोग पशुपालन करते हैं, तो ऐसे में पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं वो लोग?
0: देखिये पशुओं की बात अगर की जाए तो ये माना जाता है कि पशु जो है वो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं उनके एसेट्स भी होते हैं और वो उससे जुड़े भी होते हैं।
1: करेक्ट।
0: तो जैसे ही हमारा मानव जीवन इस हीट वेव की गर्मी से भयंकर लू से प्रभावित होता है, वैसे पशु भी इससे अछूते नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें बदलते परिवेश में ये ध्यान रखना होगा कि पशुओं को जहां तहां छुट्टा ऐसे ना छोड़े, बल्कि वो आज के समय में आपकी एसेट्स हैं, आप उनको वैसे ही ध्यान रखें जैसे इंसानों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि उनको बंद जगह में जैसे टीन सेट वगैरह है या टाट के बोरे वगैरह से कवर कर ले एरिया को, पानी वगैरह का छींटा मारे, एक दो बार उनको नहलाते रहें, और खास करके जो सुबह का 10 से 4 बजे का समय उस दौरान पशुओं को बिल्कुल भी बाहर न रखें। और अगर आपको लगता है कि पशु ने खाना छोड़ दिया है, चारा राल वगैरह गिर रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा छूने से पता लग सकता है, तो आप नजदीकी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा केंद्र नजदीकी हैं, वहां पे आप संपर्क करके उनको वहां पे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आम पब्लिक आपको सुन रही है, आम जनता, अगर वो कोई आपकी टीम से कनेक्ट होना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या कोई अगर इस तरह की आपदाएं उनके आसपास उन्हें देखने को मिलती है, तो वो कहां संपर्क कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अभी आपने एक तो नंबर भी बताया, मुझे याद है अभी हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, इसके अलावा वो और कहां संपर्क कर सकते हैं?
0: देखिए आपदा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जो तहसील में नोडल होते हैं
1: जी जी,
0: ये संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं वो वहां संबंधित तहसील के नोडल होते हैं आपदा के मामले में, चाहे हीट वेव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे फसल क्षति हो, जो भी हो, तो उसके वो नोडल होते हैं, साथ में तहसीलदार महोदय भी होते हैं। तो ये लोग कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप वहां पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके हिसाब से वहां पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पेरेंट्स को रखनी चाहिए ध्यान में?
0: देखिये सबसे पहले तो एक बात मैं यही कहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा कि खाने पीने के मामले में ध्यान रखना होगा हमें। हम अक्सर करके जो हमारा फास्ट फूड का ये सिस्टम आजकल जो चल रहा है संस्कृति, इससे तो हमें निजात पाना चाहिए। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी खाना दीजिए वो ताजा दीजिए और लिक्विड डाइट की मात्रा बढ़ा दी जाए बच्चों में। साथ में हम ये देखते हैं कि अक्सर करके देख लेते हैं कि वो जैसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीजें उसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। और ये देखते रहें कि अगर टेम्परेचर उनका ज्यादा है, बच्चों का बुखार ज्यादा है, तो आप जिस तरह से उनको स्कूल भेजते हैं, साथ में आप हेल्थ केयर सेंटर भी तत्काल दिखा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर की सलाह से जो है इलाज करें। हाँ ये है कि अगर वोमिटिंग जैसी शिकायत है और अगर उसको लूज मोशन हो रहा है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं। और साथ में ये है कि अगर आप उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले रहा है, तो रूरल एरियाज में अक्सर देखा गया है कि आदमी उसको बहुत कैजुअल ले लेता है, नॉर्मल ले लेता है, और ये जो ये आपकी जो झाड़ फूंक है या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में, कोई बोलता है कि दांत निकल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और सारे बहुत सारे कारण होते हैं, लोग मान के उसको अवॉइड करते हैं। तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो चूंकि एक्टिव भी रहते हैं, तो ऐसे में एक समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हेल्थ अंदर से इशू उनका होता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तत्काल उनको कम से कम, अगर हम बात करें कि उनको वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो कम से कम चीनी नमक और पानी जो कि हर जगह उपलब्ध है, साफ पानी गुनगुना कर लें, फिर ठंडा कर लें उसको, और उसमें थोड़ा चीनी नमक डाल के जरूर पिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, और जहां नजदीकी हॉस्पिटल है वहां दिखा लें।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आपदा के समय में जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ?
0: देखिये मैंने जागरूकता के स्तर पर तो आपको बता ही दिया, अब इसके साथ कार्रवाई के स्तर पर अगर हम बात करें, हीट वेव की जैसे ही स्थिति होती है उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पानी, तो पानी के आपूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी तहसीलों में और खास करके नगर निगम एरिया में प्याऊ सेंटर होते हैं, जिनको आप जैसे परमानेंट कुछ लगाए गए हैं जिसको वाटर कूलर ठंडा पानी की आपूर्ति हो सके। अभी वर्तमान में अगर बात करें हमारे तो मुरादाबाद में 53 जो है वो परमानेंट वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस भी हम लोग करा लेते हैं, कुछ कुछ खराब हो जाते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया भी चल रही मेंटेनेंस कराने की। साथ में अस्थायी प्याऊ सेल्टर भी हम लोग लगाते हैं जिससे कि पानी की आपूर्ति और इसके साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो है टैंकर्स जो पानी के होते हैं उससे भी सप्लाई की जाती है, जगह जगह पानी की आपूर्ति की जाती है और जलकल विभाग जल निगम ये भी आपूर्ति सुनिश्चित कराता रहता है। इसके लिए निर्देश है कि पानी की आपूर्ति कहीं भी बाधित ना हो। साथ में ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो अस्थायी सेल्टर की बात की जाती है, जैसे आपके मजदूर वर्ग हैं, ये ठेला वाले हैं, साथ में जो आपके ये ई रिक्शा वाले हैं, तो कहीं कहीं जगह में आप देखते होंगे कि अगर हरे पेड़ नहीं है, छावदार वृक्ष नहीं है, बहुत खुला बहुत बड़ा चौराहा हीट आईलैंड जिसको बोलते हैं खुली जगह है, जाम लग गया है, तो वहां पे क्या है कि आसपास कोई ऐसा हम अस्थायी सेल्टर भी बनाते हैं टेंट तंबू से, जहां कूलर वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, फर्स्ट एड किट होती है, डॉक्टर्स की टीम होती है, इसका भी योजना में शामिल किया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह की, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या किसी को वैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम वहां पे वो आराम कर ले और उसको मेडिकेशन दिया जा सके। तो ये भी कार्रवाई हमारे स्तर से होती है और तहसीलों को भी निर्देश दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में खास करके आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह बहुत सारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो उसको रिचार्ज करने के लिए पानी वैकल्पिक साधनों से उसमें पानी भर दिया जाता है कि पशुओं को भी पानी पीने मतलब पानी की उपलब्धता रहे, तो ये भी कार्रवाइयां वहां पे पैरेलल चलती रहती है। हाँ, एक चीज और हमारा कहना है कि आपदा में आप सावधान रहें और जागरूक रहें। साथ में ये है कि अगर आपदा से नुकसान होता है, जैसे हम बात करें जनहानि की, तो जनहानि में सरकार राह देने का कि उसका जो परिवार है वो हम उस किसी के जीवन को वापस तो नहीं ला सकते हैं अगर किसी की जनहानि हो गई, आपदा से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार का प्रावधान है कि 4 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता उसको देते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि लोग एक नियम होता है पोस्टमार्टम कराने का, तभी हमको कॉज ऑफ डेथ पता लगता कि किस कारण से डेथ हुई है, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है। अब उसमें लोग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उस समय और अक्सर करके पोस्टमार्टम नहीं कराते, तो ऐसे में उनको राहत देने की कोशिश करते हुए हम चाहते हैं कि तुरंत राहत दे दें, लेकिन जब इस प्रक्रिया से वो लिख के देते थे कि नहीं नहीं मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा, मुझे सहायता नहीं चाहिए, तो ऐसे में जिला प्रशासन बहुत कोशिश करता, काउंसलिंग करता, लेकिन फिर ऐसे में हम नहीं दे पाते तो हमें कष्ट होता है। साथ में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई घायल हुआ है, कोई कहीं भर्ती हुआ है, तो उसका भी प्रावधान है, अगर 7 दिन से अधिक कोई किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो हम उसको 16,000 रुपए तक का राशि देते हैं उसके इलाज में जो व्यय होता है, और अगर 7 दिन से कम रहा है तो उसको 5400 रुपए की सहायता दी जाती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो भर्ती हो प्रॉपर प्रक्रिया में, तहसील में सूचना दे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों की जागरूकता लोगों तक होनी चाहिए
1: बिल्कुल,
0: और उसके लिए प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी, आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी हमारे सुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जाते जाते मैं बस कुछ और सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा, पहले तो यही जो महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अचानक से अग्निकांड में जो है कई सारी गाड़ियों को भी हम देखते हैं, अचानक से गाड़ियों में आग लग जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हम देखते हैं, तो इसके में आपका क्या कहना है?
0: देखिए, इसमें दो चीजें मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि सावधानी ही बचाव है
1: बिल्कुल,
0: और हम आपको इस विषय में थोड़ा सा बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने किचन में भी जाके देखें कि क्या वहाँ फायर डिस्टिंग्विशर है, तो शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो छोटे फायर डिस्टिंग्विशर जो किचन में रखे जा सकते हैं, या 2 बकेट पानी या बालू की बाल्टी, ये सब रखी जा सकती है, तो जो और अक्सर करके देखिए कि बहुत सारे वैसे ज्वलनशील सामान जो किचन में रहते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमके जागरूक होने की जरूरत है कि कम से कम अपने किचन को जैसे हम मॉडिफाई करके रखते हैं, तो साथ में सेफ्टी मेजर्स भी रखें, फायर डिस्टिंग्विशर के छोटे आते हैं उसमें जो सेफ्टी की आप तुरंत उनसे आग को काबू कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में ये है कि मॉक ड्रिल कराई जाती है उसमें प्रैक्टिस करें, और पानी की बाल्टी वगैरह रखें गर्मी के दिनों में खास करके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी माताओं बहनों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा करके आप खाने का जो बनाने का टाइम टाइम है वो चेंज कर ले। सुबह 8 बजे से पहले खाना बना ले और शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद शाम में देर रात को खाना बनाए, दोपहर में खाना ना बनाए। इसके साथ एक चीज और ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि हम लापरवाही करते हैं, जो आग वगैरह है कहीं भी चलते हुए छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम उसका भी ध्यान रखें, जो भी आग है उसको बुझा दे ठीक से, जिससे कि कोई भी वैसी घटना ना हो।
1: जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने तमाम जानकारी दी।
0: और मैं दूसरी बात, जहाँ तक गाड़ियों का है तो गाड़ी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एक तो दो तीन चीजें इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गाड़ियों में भी जैसे वायरिंग वगैरह होती है, गाड़ी का इंजन होता है, प्रॉपर सर्विस कराइए, वायरिंग मेंटेन रखिए। और एक छोटे से उसमें भी ये SOP है कि आप छोटा डिस्टिंग्विशर आता है उसको आप गाड़ियों में, फायर डिस्टिंग्विशर रहने से उसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, उसकी मॉडल भी कराई जाती है, तो वो कम से कम ये रहेगा कि आग लगती है जब तक आप इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं कैसे आग को बुझाएं, तब तक वो बड़ा स्वरूप कर लेती है। एक आमजन को हम और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आम पब्लिक को भी, कि आप अक्सर करके देखते होंगे बहुत लोग इस तरह से नासमझी करते हैं, हालांकि ये मना भी है, कि आप कोई भी ज्वलनशील जैसे चाहे ये पेट्रोल वगैरह है, ये कभी भी गर्मी के दिनों में इसको डिब्बे में लेने की कोशिश ना करें, ना या डिब्बे में ले करके ना जाएं, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि कब ये जानलेवा बन जाए। गाड़ी में कभी भी डिब्बे में आप पेट्रोल लेके उस तरह का ज्वलनशील सामान लेके ना चलें, कृपा करके बचाएं। और गर्मी के दिनों में बच्चों को गाड़ियों में बंद करके ना छोड़ें, ये मेरी अपील है, बच्चों को लेके सेंसिटाइज रहें। घर में कहीं अगर आग है, कहीं खाना बन रहा है, तो आसपास छोटे बच्चों को ना छोड़ें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जबकि बच्चों में गाड़ी में बच्चे को बंद कर दिया गया, गर्मी का दिन है, वो सफोकेशन से उसको जो है दिक्कत हो गई। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे उपाय हैं कि हम बचाव कर सकते हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी। साथ में एक बहुत बड़ी अपील मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा, जो कि सरकारी अभी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, कि दो चीजें देखने को मिली हैं कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो चूंकि वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, तो वहां पे गर्मी का इफेक्ट कम देखते हैं, लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है, चूंकि बिल्डिंगें बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं, तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो उस प्रॉपर हो नहीं पाता है, साथ में हमारे ग्रीन कवर भी कम है, तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम सब इसको जिम्मेदारी को समझें तो हमारा घर भी अच्छा होगा, कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला अपने परिवार के गार्जियन से आपस में एक दूसरे से, जैसे बहुत सारे होते हैं हम जन्मदिन मनाते हैं और हम जो है आपके शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट की बात करते हैं, हम चाहेंगे कि बच्चे ये गिफ्ट मांगे अपने पेरेंट्स से कि हमको 10 गमले घर पे पेड़ के लगाने हैं, महिलाएं अपने हस्बैंड से मांगे कि 10 पेड़ घर में लगाने हैं जो आप छत पे सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेशन तो होगा ही, और साथ में क्या है कि जो आपका एनवायरमेंट है वो भी थोड़ा फेयर होगा, अच्छा होगा और मेंटेन होगा। अब आप समझिए, अगर 1 लाख घर मुरादाबाद शहर में मैं मान लूं हाउस होल्ड, तो अगर 10 पौधा हर घर लगाए अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो 10 लाख पौधे को वो देख भी सकते हैं, उसका प्रॉपर केयर कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेशन का आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और देखी गई है कि जो छत होती है, छत आप भी जानते हैं कि जितना काला होता है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है,
1: करेक्ट।
0: तो और व्हाइट शर्ट पहनने के लिए, लूज कपड़े पहनने के लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग लूज कपड़े पहने, व्हाइट शर्ट पहने, तो क्या है कि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस चली जाती एनवायरमेंट में। तो अगर छतों को, छत के ऊपर सिरे को व्हाइट करने के लिए रूफटॉप हम लोग बोलते हैं, कि आप पूरे घर को बहुत पेंट कराते हो, और होता क्या है कि अगर छत को आप व्हाइट करा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप अपने घर का टेम्परेचर 2 से 4 अंश सेल्सियस तक कम कर सकते। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 4,000 स्क्वायर फीट, 3,000 स्क्वायर फीट आपकी छत है और उसके टेम्परेचर को हम 2 से 4 अंश सेल्सियस कम कर देंगे, तो उसका एक परिणाम ये भी होगा कि आपको AC कम चलानी पड़ेगी, ये भी हो सकता है, और घर का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। तो ये मेरी अपील है कि रूफटॉप के तहत लोग अपनी छत के ऊपरी वाले सिरे को भी व्हाइट पेंट से ये पेंट कराएं। हालांकि सरकारी भवनों को पेंट कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के द्वारा निर्देश चले गए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। और 10.5 लाख स्क्वायर फीट छत हम लोगों ने चिन्हित की सरकारी भवनों की, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के हैं, ब्लॉक्स के हैं, फायर सर्विस के, थानों के हैं और जो सरकारी भवन है उनके हैं, जिसपे हमने अभी लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट छतें हमारी व्हाइट रूफ टॉप हो गई हैं, जिससे कि हम इस जो हमारी गर्मी है इसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर सकें, एनवायरमेंट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें।
1: सर बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला, इतना महत्वपूर्ण समय हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। और सबसे अच्छी बात, आपने जो गमलों का एडवाइस दिया ना, ये बड़ा अल्टीमेट था, बड़ा यूनिक था, और साथ में आपने बताया कि छत को हम कैसे व्हाइट पेंट करा के गर्मी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब एसी कम चलेगी तो बिल भी कम आएंगे, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो जाते जाते तमाम लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश?
0: संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के साथ पूरी जिला प्रशासन टीम आपके सेहत स्वास्थ्य को लेके बहुत ही संवेदनशील है, और सरकार स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, उनसे अनुरोध करिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से, सर की तरफ से आप सबसे पुनः यह अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्मी के दिनों में दोपहर में घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें, और बहुत सारे जो उपायों पे बात की गई इसका ध्यान रखें, आपकी सेहत ही हमारी संपत्ति है। धन्यवाद।
1: थैंक यू सर। आप सुन रहे थे एफएम मुरादाबाद 89.6 विद आरजे आनंद। फिर मिलते हैं किसी और नए कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल घुमाइएगा नहीं। स्टेडियम
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
7: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
8: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
7: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
9: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
10: मैं ममता मालविया, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूँ कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।

0: कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
2: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
4: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और वैसे तो इस प्रोग्राम में सच बता रहा हूँ मेरी एंट्री होना बिल्कुल पूरी तरह बैन है, निषेध है मेरा आना, लेकिन मैं जबरदस्ती घुस गया हूँ। आज प्रोग्राम का नाम है महिला मंच, इसमें खुशी और रीना आपको मिलती है। लेकिन आज मुझे बहुत सारी महिलाओं ने कहा बेटा आप चलो हमारे साथ, आज तुम्हें नई नई जानकारियां देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जितने भी पुरुष लोग सुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है महिला मंच है तो यहाँ पुरुषों का काम नहीं है। भाई पुरुष और महिला से ही एक समाज बनता है, तो जितनी इंपॉर्टेंट पुरुष है उतनी इंपॉर्टेंट महिला भी है और जितनी महिलाएं हैं उतनी पुरुष हैं। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी होस्ट है रीना। हाय रीना, वेलकम। कैसा लग रहा है महिला मंच पे पुरुष मंच को खड़ा करके?
6: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बोला भी था तुम्हें कि भाई आ जाओ, हाँ महिला मंच में तुम भी शामिल हो जाओ। फाइनली तुम आज हो गए।
5: गाइस मैं महिला मंच में शामिल हुआ, महिला मंडली में शामिल नहीं हुआ, इफ यू डोंट माइंड। और आज मजे की बात है कि महिला मंच में एक बहुत ही खूबसूरत महिला को हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की महिला ना किसी से कम नहीं है। क्यों रीना? आज की लड़कियां हो गई, महिलाएं हो गई, जो घर में पहले हमें लगता था सिर्फ हमारी मम्मियां घर तक ही सीमित है, अब वो घर से रील बना बना के भी फेमस हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। स्टोरी लगा लगा के फेमस
6: हर के काम से लेकर ऑफिस तक हर
5: सब चीज मैनेज कर रही है हमारी मम्मियां। तो अब हमारी मम्मी से फोम मेकर नहीं बची है और इसी बात पे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मम्मी को इनवाइट किया है, मैं तो यही कहना चाहूंगा उनको। आज महिला मंच में हमारे साथ कुमकुम भी है। हेलो, हाउ आर यू?
7: मैं
5: बहुत ही
7: कि मैं भी आती हूँ खुशी दी और रीना दी के साथ।
5: हाँ, महिला हाँ, मंच। मुझे मैं महिला मंच में बहुत कम आता हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। तो आपने पूछा आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो मैं बहुत भूखा हूँ खाने का। गाइस अभी जाके खाना खाऊंगा और जो हमारी गेस्ट है उनको वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं? वेलकम टू एफएम मुरादाबाद एंड दिस इज महिला मंच ब्रांड न्यू शो, आपका स्वागत है।
8: मैं शैले सिंह मुरादाबाद से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आके। और
5: अरे वाह क्या बात है, और बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लगता है शैली जी एक महिला होने के नाते ही अपने आप में एक बहुत गर्व का मोमेंट होता है कि जब आप कुछ अच्छा करके आ रहे हो, कुछ बड़ा करके आ रहे हो, तो ये आपके लिए और भी बढ़िया होता है। क्यों रीना? जैसे कि आज जो शैली जी हमारे साथ मौजूद है वो सिर्फ शैली नहीं है, उनके काम भी बिल्कुल सराहनीय है, बहुत अच्छे अच्छे काम करके आई है वो, तभी आज स्टूडियो में आपके बीच में हमने उनको आमंत्रित किया है। थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारी महिलाओं को जो लोग सुन रहे हैं।
8: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल छजलैट। मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, योगा मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे योगा, जिम, ये सारी चीजें।
5: तो ये कहना कि योगा में रुचि भी है आपकी, योगा टीचर भी आप बन रही
8: हैं। रुचि मदान, मैं उनके स्टूडेंट हूँ।
5: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रिसेंटली आई थी रुचि जी वैसे हमारे स्टूडियो में, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपने बताया प्रिंसिपल भी है।
8: हाँ, प्रिंसिपल RSM पब्लिक स्कूल छजलैट।
5: ओके, छजलैट में आप वर्किंग है। मैम इतने सारा काम कैसे कर लेती हो आप?
8: मैं बस कहते ना, महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं से। आप नौ दुर्गों में जो पूजा करते हैं किसके लिए करते हैं? शक्ति के लिए करते हैं। और शक्ति क्या है? हम ही धन भी हम है, विद्या भी हम है।
5: सही बात,
8: सब कुछ हम।
5: मुझे लगता है अगर देखा जाए ना तो हमारे आसपास की चीजें है ना वो सब भगवान देवियों से जुड़ी है। धन की देवी लक्ष्मी है, ज्ञान की देवी सरस्वती जी है, शक्ति की देवी माँ दुर्गा है, काली देवी सर्वनाश करने वाली है,
6: अन्न की देवी अन्नपूर्णा है।
5: हाँ, तो मतलब हर माँ गंगा जो जिसमें हम नहाते धोते हैं वो गंगा मैया है, वो भी गंगा माँ है। तो सारी नारियों से ही हमारा जो है सजा हुआ है पूरा संसार,
8: और जिसके माध्यम से हम आते हैं वो भी नारी
6: ही।
5: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि आज जो है नारियों के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली है, और इस प्रोग्राम में हमने मैम को इनवाइट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, और मुझे लगता है महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। और इसके अलावा वो गाड़ियों में रील भी बनाती है बैठ के, वो बात तो बहुत अलग है क्योंकि वो भी उनको बहुत पसंद है, मुझे लगता है कहना चाहिए। वो इतनी एक्टिव है कि लोग गाड़ी चलाए बट वो रील भी बना लेती है, वैसे ये बहुत रिस्की भी होता है। आप कैसे करती हो ये?
8: नहीं, अपने अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टैलेंटेड है, कि वो गाड़ी चलाने के साथ साथ आप बीच बीच में आपको एक्सप्रेशन भी देते जाएं।
5: वो तो आप जबरदस्ती उनको बीच में ऐड कर लेते हो कि आओ ना।
8: ये तो शक्ति है कि आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि नहीं, कि आपकी तरफ नहीं, मेरे को पहले एक्सप्रेशन दो, बाद में चलाओ।
5: क्या बात है,

नहीं, अच्छा हम बात कर लेते हैं अब महिलाओं के बारे में। जैसे शैली जी आप बहुत सारा काम करती हैं और ऐसे आपकी जैसी बहुत सारी तमाम महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो बस सोचती हैं, कर नहीं पाती।

0: कि हमारी प्रायोरिटी क्या है. वो सेल्फ डिपेंड भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं और वर्किंग भी हैं, घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं. उन्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या करना है. लेकिन जो पहले की हमारी मम्मी लोग होते थे उनके लिए उनका दायरा इतना सीमित होता था कि वो घर और बस बच्चे और उनका पति और ससुराल मायका, उनका दायरा बस यहीं तक था. वो अपनी जो फीलिंग्स होती थी ना वो भी घर में शेयर नहीं कर पाती थी. उनके लिए भी उनको कोई नहीं मिलता था कि वो अपनी फीलिंग्स भी किसी को कभी शेयर कर पाए.
1: करेक्ट, बिल्कुल. तो मतलब ये आपने बिल्कुल सही कहा, आज की नारी जो है किसी से कम नहीं है. क्यों रीना, ये बिल्कुल बात सही कह रही है मैम. लेकिन मुझे लगता है कि आज भी ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो इन बातों को बहुत फॉलो करती हैं और उनके फैमिली में एक रिचुअल्स बना आया है कि भाई वो शादी के बाद कुछ नहीं करेंगे या नहीं करने देंगे. मतलब ऐसा भी
2: अभी भी बहुत ऐसी फैमिली
0: है. अभी भी मैं ये नहीं कह रही, फैमिलीज ऐसी है लेकिन उनको ऊपर ये प्रेशर है कि ये हमारे संस्कार है, इन्हें ही आपको आगे
1: मेंटेन करना है.
0: करेक्ट. लेकिन संस्कारों को भी मेंटेन करने के साथ साथ भी आप अपने आप को ग्रो अप कर सकते हो.
1: करेक्ट.
0: कॉन्फिडेंट बन सकते हो, ये नहीं बताते हैं.
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाली जी, आप जो कर रही है ना, ये एक तो मोटिवेशन है ही और महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन भी दे रहा है ये चीज. लेकिन कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी तो स्ट्रांग बना रहा है ना.
0: फाइनेंशियल स्ट्रांग बना रहा है.
1: आने वाला टाइम देखिए आप कितना महंगा हो रहा है. आजकल कितनी सारी शॉर्टेज पड़ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर. आपको बच्चों को भी अच्छे स्कूल देने हैं, अच्छी उनकी चीजों का भी ध्यान रखना है. तो इसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना महिलाओं को भी.
0: बिल्कुल. और सबसे ज्यादा तो मैं पुरुषों का सहयोग चाहूंगी कि वो घर में रह करके उनसे जो भी बन पड़ता है. मैं ये नहीं कहती हूँ कि एवरी टाइम आप घर में रह के उनका घर के कामों में सपोर्ट करें. उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं उनको हेल्थ को लेकर के, कि आप कुछ अपने लिए पहले, तो सबसे पहले हेल्थ है हमारी. आप अगर महिला अगर घर की स्वस्थ है तो वो सबका ध्यान रख पाएगी. अगर एक दिन आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या सिस्टर बीमार पड़ जाती है ना, अस्त व्यस्त हो जाता है.
1: बिल्कुल सही कहा,
0: वो कहानी बिगड़ जाती है घर की. लेकिन सबसे पहला हमारा है कि उनको स्वस्थ रहने पे उनके टाइम से नाश्ता करें, टाइम से खाना खाएं, उनसे भी पूछें आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा. ये केवल पत्नियों का ही नहीं बन रहा है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन भी कैसा रहा, तुमने आज क्या सोचा, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये चीज है.
1: तो मतलब दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है.
0: हाँ जी,
1: करेक्ट. बहुत अच्छा बोला आपने. और कुमकुम तुम क्या कहना चाहते हो?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी जैसे कि मैम ने भी बताया, संस्कार और रीति रिवाज के साथ जो हस्बैंड कहते हैं ना कि ये हमारे घर के संस्कार हैं, ये हमारी रीति रिवाज है, रिचुअल्स हैं, आगे नहीं करना हमारी फीमेल्स को, उस नाम पे ना उसको रोक दिया जाता है.
1: करेक्ट.
2: लेकिन हमें ना उन चीजों को वहां तक सीमित नहीं रख के उस सबके साथ साथ अपनी फीमेल को, मतलब अपने पार्टनर को आगे बढ़ाना चाहिए. कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए. उनके साथ उनको मेंटली हेल्थ भी ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ इनका मेंटल हेल्थ भी अगर ठीक है ना तो वो हैप्पी रहेंगी, और जब वो हैप्पी रहेंगी तो उनका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाएगा.
0: कि आप बिल्कुल जॉब पे छोड़ दें, ये चल रहा है कि आप ही को खाना बनाना है, आप ही को ये करना है.
2: ये तो ना हमारे कुकिंग वर्ड में ही डिफाइन कर रहा है कुकिंग. यहाँ किंग की बात हो रही है, क्वीन की बात नहीं हो रही.
1: करेक्ट.
0: बिल्कुल सही बात है.
3: वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने.
1: तो जितने भी जैन से वो किंग बन जाए, कुकिंग करने के साथ साथ कुकिंग करें.
0: मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुकिंग करें, लेकिन अगर आपकी वाइफ बीमार है, आपकी मदर बीमार है, तो आपको इतना आना चाहिए कि उस 3-4 दिनों में उनका ध्यान रख पाए, उन्हें जैसे वो पहले थी वैसे ही उन्हें फिर से खड़ा कर पाए, उनका सपोर्ट कर पाए. मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सुबह खाना बनाए बिल्कुल ऐसे कि आप बिल्कुल जॉब पे छोड़ दें, या देखिए जेंट्स के बस की बात नहीं है. जितना एक लेडी संभाल लेती है ना घर बाहर दोनों, सोसाइटी वगैरह सब, वो उसके लिए मैं नहीं कह रही संभाल नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
1: क्या बात है गाइस, आज महिला मंच में मैं बिल्कुल सीख के जाने वाला हूँ. बहुत सारी तैयारियां मेरे साथ हो रही है, अप्पे चप्पे खप्पे सब सीखूंगा आज मैं. आप टेंशन ना लो. रीना तू कुछ कह रही थी, टेल मी.
3: मैं ये कह रही थी, तुम्हारी बातों पे बोल रही थी. तुमने बोला कि मैंने आज ही राजमा चावल बनाने के लिए सीखा है, तो जब जैसे मैम ने बता ही दिया कि घर में महिलाएं बीमार होती है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप घर में एक दूसरे का साथ दोगे तभी परिवार आगे बढ़ता है और ग्रो भी तभी करता है. और क्योंकि अब देखा जाए तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक अगर कोई पुरुष कमा रहा है ना तो मुझे लगता है कि वो उसमें नहीं हो पाएगा कि बच्चे भी है, फैमिली को भी लेकर चल रहा है. इसीलिए दोनों को ग्रो करना चाहिए. सपोर्ट करिए आप महिलाओं को.
0: हो भी पाएगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाएं दबाएंगे.
3: लो वही ना, तो दबाना उस चीज को आगे करिए.
0: और ये चीज आप सोचो, पहले के टाइम में चल भी जाता था कि महिलाएं हैं, बहुत सारी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी. मगर अब ज्वाइंट फैमिलीज है कहाँ, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे.

0: छोटा परिवार सुखी परिवार,
1: लेकिन खर्चा या जो
2: इतना छोटा हो गया है कि अगर आपके साथ कुछ बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है ना, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको घर के काम ही नहीं आते। पहले केवल बेटी का ही फर्ज बनता था कि पापा आए हैं आपको पानी देना है। आजकल क्या है कि बेटों को भी भाई पापा आए आप पानी दीजिए,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उनको आदत में डालिए।
0: करेक्ट, छोटे छोटे काम में उनका जो है एनरोलमेंट कराइए,
2: क्योंकि बेचारे उन बॉयज को बाहर जाके बहुत परेशानी होती है, उनकी तकलीफ नहीं। आप सोचो, जो जिस बच्चे ने एवरी टाइम घर में बेड पे खाना खाया है, बेड पे चाय पी है, वो हॉस्टल जा रहा है रहने के लिए, उसको अपने खुद या जॉब पे बाहर है, खुद बना के कुछ खाना है, तो वो कितना परेशानी होती है उसको, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं होती। लड़कियों को आपने कभी देखा है कि परेशानी हो रही है?
3: नहीं, क्योंकि घर पे भी काम करवाया जाता
2: है, 5 मिनट मैगी नहीं, उनके लिए 5 मिनट में खाना भी बन जाता है।
0: नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, अब लड़के भी बहुत ज्यादा अंकल आंटी के साथ साथ सब एक्टिव हो रहे हैं,
2: सब एक्टिव हो रहे हैं। आजकल के बॉयज बहुत नहीं, आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, वो कोऑपरेटिव आ रही है, लेकिन उनको वो कोऑपरेट करते हैं ना, तो उनको फिर लोग ये कहते हैं अरे यार तुम कर रहे हो ऐसा, तुम्हारा नहीं करने का है, तो वो जो नहीं वाला शब्द है, नहीं अच्छी, उनको ये बोलो कि नहीं अच्छी बात है आप सपोर्ट करते हो।

0: ये बात तो आपने सही बोली, और मुझे भी लगता है कि गाइस अब सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी, मतलब कहने का ये है कि दोनों लोग साथ में चल रहे हैं और दोनों ही लोग बराबरी में काम करते हैं। कोई प्रोफेशन नहीं बचा है, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ लड़के लड़कियां काम ना कर रहे हो, हर जगह कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये भी था आपको बुलाने का शैली, जिस प्रोग्राम में महिलाओं को एक मोटिवेशन आप जो आपसे मिलेगी ना उसकी बात अलग होगी। तो हमने कर ली, अभी जो हमने बात करी है, खैर ये महिलाओं की और पुरुषों की बात कर ली खाने पीने की, कि मर्दों को भी आना चाहिए और ज़रूरी भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उन महिलाओं की जो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आता भाई कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो उन्हें आप क्या कह सकती हैं? आजकल तो घर से भी बहुत सारे काम कर सकती हैं
1: उन्हें महिलाएं। तो सबसे पहले तो उन्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें बस ये सोचना है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: करेक्ट।
1: उन्हें सिंगिंग अच्छी लगती है, उन्हें डांसिंग अच्छी, उनका शौक क्या है, उस शौक को प्रोफेशन बनाए।
0: अच्छा, आपकी बात को बीच में रोक के बोलूंगा। रिसेंटली ना एक लेडी से हमारी मुलाकात हुई, हमारे स्टूडियो में ही आई थी वो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनको बहुत अच्छा गाना आता है, उन्हें गाने का बहुत शौक है और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी पैकेज उनकी, गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे लेवल पे टीचर हैं, उनका बेटा मुंबई में बहुत ही बड़े स्टूडियो में प्रोड्यूसर है, मुंबई बॉलीवुड में काम करता है, मुरादाबाद की ही है वो। तो उन्होंने बताया कि उनके उनको गाने का बड़ा शौक है, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके उनका बेटा और उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तुम यहीं घर में ही रहो, तुम्हारी आवाज़ यहीं तक अच्छी है, तुम्हें ऐसा मिथ है कि तुम अच्छा गाती हो, तुम घर पे खाना वाना बनाओ, तुम्हारे लिए यही सफिशिएंट है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इवन वो कहती है कि मेरा बेटा भी, मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ ना, तो बेटा भी बोलता है नहीं मम्मी मैं मुंबई में रहता हूँ, तुम्हारी आवाज़ घर की दीवारों में ठीक है, बाहर बेइज्जती हो जाएगी। तो उनको घर में डिमोटिवेट कर रहे हैं वो लोग। तो मेरा मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ है, शायद उनको ऐसा लगता है, लेकिन जितना हमने आंटी मैम को देखा, उनको सुना, तो मुझे लगा नहीं, शी इज़ वेरी ब्रिलियंट, वो अच्छा कर सकती हैं। बट अगर उनको एक मौका दिया जाए, उनको एक सपोर्ट किया जाए उनके पेरेंट्स से, उनके हस्बैंड से या उनके बेटे से, तो शायद वो और अच्छा कर ले। तो बात वही आ गई है कि लेडीज करना तो चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर है कि तुम अच्छा, उनको डिमोटिवेट कर दिया जा रहा है।
1: तो उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक बार अपना सॉन्ग इंस्टा पे डालिए, जो भी आपको एक बहुत अच्छा आता है, व्यूअर्स आपके कितने आते हैं, कौन आपको लाइक करता है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या है आपकी।
0: लेकिन कभी
2: अपने प्लेटफॉर्म को खुद जनरेट करें,
0: जनरेट तो करना है, लेकिन अब जब अलाउड ही नहीं है घर में, जब लोग उनको कह रहे हैं कि आप अच्छा गाती नहीं हो, तो फिर
1: ठीक है अलाउड नहीं है, तो जो घर के मेंबर्स है ना, चार दीवारी में ही गाना है, तो उन जो हमारे चार लोग हैं, हमारे घर के रिलेटिव, हमारे भाई हो गए, हमारी बहनें हो गई, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हो गए, व्हाट्सएप पे डालिए सिंगिंग करके, हाइड कर दीजिए सबको, फिर वो उनके व्यूज क्या होते हैं आपके गाने के प्रति पता चल जाएगा।
0: ये अच्छा,
1: क्योंकि आज को आज क्या,
0: सही
3: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये आपने बहुत अच्छा बोला। और मुझे लगता है कि ये जो लेडीज प्रोग्राम है ना, इसके इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग यही है कि हम लोग लोगों की सोच को बदलें, और सिर्फ महिलाओं की क्यों, जेंट्स की सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है।
1: नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, आप घर में कीर्तन रखिए, आप अगर अच्छा गाते हैं बजाते हैं, आपको चार लोग इनवाइट करेंगे, यार वो उनकी वाइफ बहुत अच्छा गाती है, और देखिए लोग उन्हीं को बुलाना चाहते हैं जिनमें कुछ बात है। चार लोग जो पीछे बैठने वाले होते हैं उन्हें लोग कम इनवाइट करते हैं, आपको बजाना आ रहा है, आपको गाना आ रहा है, आपको डांस आ रहा है, तो आपको जब आपका घर में ऐसे छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो आप सोचेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्यादा बुलाएंगे,
2: उन्हीं लोगों का नाम सबसे पहले होगा।
0: सही कहा आपने। तो श्रोताओं, फिलहाल मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जो है मेरा तो जाने का समय हो रहा है, लेकिन अभी इन लोगों की बात आप सुनते रहिए, शायद आपको कुछ अच्छा सीखने को जानने को मिले। थोड़ा सा मैं बस जाने से पहले शैली मैम से और पूछना चाहूँगा, वो आज हमारे बीच में आई हैं, तो इतना अच्छा काम करती हैं और इतनी फिट भी हैं वो, और इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने मेनटेन की हुई है, तो इसका राज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि घर की महिला अगर स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है ना, परिवार की भी पूरा समाज स्वस्थ है। अगर हमारी घर की नारियाँ ही कमज़ोर पड़ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी, थकेंगी, दिक्कतें होंगी, तो वो नहीं चला पाएंगी, और पुरुष तो इतना नहीं कर पाते भाई, सिंपल सी बात है। तो महिलाओं को आप क्या टिप्स देंगी, क्या एडवाइस देंगी, दिन की शुरुआत कैसे करें, कैसे वो खुद की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करें?
1: मैं महिलाओं के लिए बस यही बोलना चाहेंगी कि अगर आप 45 मिनट, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 2 घंटे निकालिए, 45 मिनट अगर आप पूरे दिन में नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी लाइफ ना बिल्कुल यूजलेस है। क्यों? क्योंकि 45 मिनट्स में वो आपकी हेल्थ इश्यूज से लेके आपकी मेंटल हेल्थ तक वो सही करेगी, और जब हमारी मेंटल हेल्थ सही होती है तो हमारी फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो उस 45 मिनट में आप प्राणायाम है वो करिए, आजकल ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, जिम नहीं जा पा रहे हो, योगा नहीं जा पा रहे हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे, वो आप उनको सर्च करके 15 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इतनी सारी एक्सरसाइज है वो 45 मिनट। और सबसे पहला जो दिन की शुरुआत करो, एक फ्रूट से करो, चाहे आप ये नहीं है कि रोज आप एप्पल ही खाओ, बनाना खा लो, किसी दिन गुआवा खा लो, मैंगो खा लो, सीजनली फ्रूट्स पे अपने जो भी चीजें अपने उनको हेल्थ इश्यूज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैल्शियम, विटामिन डी थ्री वुमेन्स का, विटामिन बी ट्वेल्व बहुत कम होता है, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि वो खाने को ना बिल्कुल साइड कर देती है। तो अपने खाने का सबसे पहले ध्यान रखें, टाइम से नाश्ता, टाइम से डिनर, टाइम से लंच, ये चीजें उनको जरूर करना चाहिए। मतलब प्रायोरिटी पे उन्हें 45 मिनट्स अपने हेल्थ को देने हैं, और दूसरी बात अगर वो टाइम से खाना वाना खाएंगे तो वो वैसे ही स्वस्थ रहेंगी। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव चीजें सुने, नेगेटिविटी अपने पास से हटाने की कोशिश करें।
0: बहुत ही अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और गाइस अब हम लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत। रीना तुम्हारा क्या टेक रहेगा, तुम क्या कहना चाहोगी जाते जाते?
3: मैं यही कहना चाहूंगी महिलाओं से कि अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ है तो पूरा परिवार, पूरा समाज स्वस्थ है। और जब महिलाएं आगे बढ़ती है, महिलाएं पढ़ती है, क्योंकि आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि अपने लड़के को ये नहीं चाहता हो कि तुम ना पढ़ो, क्योंकि जब महिलाएं पढ़ती है ना तो वो एक पीढ़ी को नहीं बल्कि तीन तीन पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। तो वो पढ़ शिक्षित है, स्वस्थ है, तो समाज भी शिक्षित है और स्वस्थ है।
0: क्या बात है कुमकुम, तुम क्या कहोगी जाते जाते?
2: मैं भी बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी महिलाएं, आपकी वाइफ, आपकी बेटियां आपका साथ दें, तो आप भी उनका उतना ही साथ दें। अगर वो थकी हारी आती हैं तो आप उनको एक गिलास पानी दें, उनसे कहें कि हाँ 2 मिनट रेस्ट करो, जो काम करना है आप आराम से करो।
0: बहुत ही
1: बढ़िया,
0: बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस फिर मिलेंगी आपको रीना और खुशी, मैं लेता हूँ इस महिला मंडली से इजाजत, फिर आपको जल्दी मिलूंगा, आप ख्याल रखिए अपना। और जाते जाते थोड़ा सा फन करते हैं, एक छोटी सी शायरी है मेरे साथ आपको बोलनी है, आर यू रेडी गाइस? ठीक है चलो तो शुरू करें। तो गाइस महिला मंडली में एक थोड़ी सी फनी शायरी, माफी चाहता हूँ आप सभी को, बोला है दिल जवा है तो बेबसी कैसी, बोलो गाइस।
3: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
0: आप भी कोई बोला है फिर से बोलना है, दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
3: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
0: सफेद बालों की ऐसी की तैसी,
2: सफेद बालों की,
1: सफेद बालों,
3: फिलहाल सफेद बाल भी इनके ही है इसीलिए बोला है।
1: सबसे ज्यादा काउंट करे आएंगे तो आरजे,
0: मैं नमक के पानी से नहा लिया था किसी एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था एक ग्लास एक चुटकी नमक डाल के नहाना है आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो बालों के कार्य पूरे सिद्ध हो गए।
1: कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और टिप्स आप उनसे ले लें, हाँ। आपके बाल ही चले जाएं।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा,
1: रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
0: ये तो इन्होंने मेरी नानी की कहावत जोड़ दी। फिलहाल तो मैं लेता हूँ जाने की अनुमति, और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
3: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय
3: बाय।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
1: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूँ कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
0: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर UKG तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।

0: नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आप सभी का फेवरेट शो लेकर, हेलो फरमाइश, जहाँ बातें होंगी दिल से, सॉन्ग भी होंगे आपकी चॉइस के और मस्ती भी होगी फुल ऑन नॉन स्टॉप। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और वैसे दोस्तों, गर्मी का लेवल तो आजकल ऐसा हो गया है कि कूलर भी बोल रहा है भैया मैं हवा दूं या इस्तीफा, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि सुबह से लेकर रात, पूरी रात हो जाती है, ऑन ही रहता है कूलर हो या पंखा हो, तो उसको भी थोड़ा रेस्ट दीजिए। एंड इवनिंग में थोड़ा सा बाहर घूमने जाइए जब वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है एवरीवन। और यहाँ पर समय हुआ है अभी 3:15, तो करते हैं अपने कॉलर से बातचीत, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी जी जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, बढ़िया है।
0: जी बताइएगा क्या कर रहे हैं सर?
1: जी
0: आपकी आवाज जो साफ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं सर, प्लीज थोड़ा सा साफ बोलिएगा। एंड नेटवर्क इशू है शायद आपकी तरफ, आवाज आपकी ब्रेक होकर आ रही है।
1: आवाज कट रही है, सही बात।
0: जी
1: जी, फिल्म का नाम है आप आए बाहर है, सिंपल है, बिन तेरे की मोहब्बत का सारा मिल गया, ये वाला बोलने गाने के, ये वाला।
0: ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवा देते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। हाँ जी बिल्कुल, नाम ले सकते हैं आप। ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ और आपके परिवार के साथ सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत आपको। कॉल करने के लिए धन्यवाद एवरीवन। मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस गर्मी से बच के रहिए और ये खूबसूरत सा गाना एंजॉय कीजिएगा।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय किया। फ्रॉम द मूवी आप आए बाहर आए, बाहर आए एंड 1971 में फिल्म आई थी। और दोस्तों, इस खूबसूरत सी गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने, साथ में मोहम्मद रफ़ी साहब जी की बहुत प्यारी सी आवाज़। एंड म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाय, कैसे हाल है आपकी?
1: जी बढ़िया, आप बताइए।
0: हाँ जी मैम, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। अपना शुभ नाम बताइएगा। एकता जी बात कर रही हैं, मंडी चौक मुरादाबाद से।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी, बताइए मैम, कैसे हाल चाल हैं आपके?
1: बढ़िया है, लाइट
0: आ गई है। ये लाइट भी ना गर्मी में बहुत जाती है,
1: बहुत जाती है मैम।
0: जब इसकी आवश्यकता होती है तब ये रहती नहीं है, और जब जरूरत नहीं होती तब ये आ जाती है। तो अभी आप पंखे से हवा कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से लाइट आ जाए। जैसे लाइट आती है तो ऐसा लगता है जान में जान आ गई हो। हाँ
1: जी,
0: तो बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगी आज मैम? ओए होए, क्या बात है, गर्मी ऊपर से इतना प्यारा ट्रैक, और जो आप खुद को रोक नहीं पाएंगी डांस करने के लिए, फिर और गर्मी लगेगी आपको। अच्छी बात है मैम। और बताइएगा क्या हो रहा है? ओके, अभी आराम कर रहे हैं और ये प्यारा से गाना आप सुनना चाहती हैं तो हम सुनवाते हैं। हाँ, वो आपकी ना आवाज में भी लग रहा है कि आप रेस्ट कर रही हैं। जी, तो ये प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। ओके बाय, टेक केयर। तो चलिए ये प्यारा सा ट्रैक हम सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा, एकता जी की रिक्वेस्ट पर। लव मेरा हिट हिट एंड स्ट्राइक को हम सुनते हैं और लौट कर आते हैं। तब तक एवरीवन, आप भी मुझे कॉल लगाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए। और हाँ, इस गर्मी में अपना ध्यान भी रखिए, बेवजह बाहर मत जाइएगा। अगर आवश्यकता नहीं है तो घर पर ही आराम कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप इवनिंग में ही 5-6 बजे या 5:30 बजे घर से बाहर निकलें, तब गर्मी से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। लाइक धूप ज़्यादा जो अभी है ना इस वक्त, वो कम हो जाएगी और आप आराम से जा सकते हैं जहाँ आपको जाना है। फिलहाल इस गर्मी में इन प्यारे गीतों का आनंद लीजिए। मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: बिल्कुल जी, सभी की जुबान से अभी फिलहाल यही निकल रहा है क्योंकि इतनी गर्मी है और जो पंखे में रहते हैं, जो लाइक कूलर चलाते हैं और जिनके घर इन्वर्टर नहीं है, लाइट चली जाती है तो बस बाद में यही निकलता है कि साडा बुरा हाल। भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि साथियों इस गर्मी में ना अपना अच्छे से ख्याल रखें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें एंड पानी पीते रहें और जो मौसमी फ्रूट्स हैं उनका भी सेवन आप करते रहें। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनका नाम है। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, लगता है सर की आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो फरमाइश,
1: नमस्कार मैम
0: जी, आपको और कैसे हैं आप सब।
1: बहुत अच्छे हैं मैम, मैं मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ, जिला मुरादवाल, ग्राम दीदी।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप सब।
1: मैम इतनी गर्मी में भी हाल चाल पूछ रही हो, खराब हो रहे हैं हाल चाल तो मैम।
0: मालूम करना तो हमारा फर्ज है, सभी को गर्मी लग रही है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, क्या ही कर सकते हैं। हाल चाल इसलिए मालूम करते हैं ताकि दिल को थोड़ा सा सुकून तो मिल जाए इस गर्मी में।
1: ये तो है मैम, इसीलिए तो आपके हेलो फरमाइश से जुड़े हुए हैं मैम।
0: जी जी जी बिल्कुल, और बताइएगा सर खैरियत से हैं आपके यहाँ पर।
1: आपकी खातिर आपके मोहब्बत में जो है छत्ता आना पड़ता है मैम, पंखों में तो हवा गर्म चल रही है नीचे।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब।
1: बाहर की भी हवा गर्म और पंखों की भी हवा गर्म, क्या करें बताओ।
0: अब क्या ही कर सकते हैं, जितना अपने बस में होता है उतना करते हैं क्योंकि गर्मी है। अब अपने हाथ में तो सुरक्षा ही है, सावधानी ही है।
1: हाँ बस सुरक्षा ही है, बस पानी पीते रहे, ध्यान रखें और ठंडी चीजों का सेवन करें।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने सर, बताइएगा आपकी क्या फरमाइश है।
1: फरमाइश बताऊंगा मैं, एक संदेश ये है कि जैसे मेहनत मजदूरी करके आते या ऑफिस से बाहर से आते बाइक लेकर घर में।
0: हाँ जी,
1: तो बाइक घर में आते जब 2-4 किलोमीटर चल कर आती है तो उसका साइलेंसर गर्म हो जाता है बहुत तेज।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो कभी कभी ये होता है छोटे बच्चे जो है 3-4 साल के वो भटकर पड़ते हैं, पापा आगे पापा आगे। हाँ। कभी वो गाड़ी पे चिपट जाते हैं, साइलेंसर पे चढ़ गाड़ी पे चढ़ जाते हैं प्यार में, तो बहुत अभी अभी एक बच्चा जला है 2 घंटे पहले अभी साइलेंसर से मैम।
0: ओह माय गॉड।
1: हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि ध्यान रखे ऐसे बच्चों का, साइलेंसर के पास ले जाए गाड़ी के पास, तो इससे जो है बड़ा मतलब मामला खराब हो जाता है मैम।
0: बच्चों को बचा कर रखें और ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन बहुत जरूरी है सर। जी
1: छोटी सावधानियां जैसे टॉफी खाते हैं बच्चे तो टॉफी गले में अटक जाती है, तो अभी दुर्घटना हुई थी 8-10 दिन पहले, एक बच्चा खत्म हो गया था, टॉफी गले में फंस गई थी।
0: ओके, देखिए ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं मालूम है कि कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन जब बड़ों की निगरानी में बच्चा रहता है तो वो चीज मतलब सतर्क रह सकता है, बच्चा सावधान रह सकता है जब बड़े उनके ऊपर ध्यान देंगे।
1: जी तो मैम गीत है एक, जब जब फूल खिले से, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, और ये गीत जरा पूरा ही बजा देना मैम।
0: हाँ जी हाँ जी, आपका ट्रैक प्ले करेंगे हम, बताएगा।
1: एक का गुल और एक से बुलबुल दोनों चमन में रहते थे।
0: अच्छा, और ये खूबसूरत से गीत आप किन के साथ सुनना चाहते हैं सर।
1: देखो पहले तो मैम आप ही है, आप सुनने वाली है और आकाशवाणी में सभी है।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: डॉक्टर अख्तर हुसैन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, राजा हुसैन है, हाजी गफ्फार खान साहब है, इशरत है, मुकेश है, मेहराज भाई है, इरशाद भाई है, सभी लोग हैं।
0: ठीक है, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत, कॉल करने के लिए धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद
0: जी। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी कॉल लगाना ना भूलिएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, आप निश्चिंत हो जाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, 9839698। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी, और इस खूबसूरत गीत का आनंद लीजिएगा।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: हाय दयाल जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
7: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
8: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
9: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
8: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
10: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
11: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ,
10: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
11: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
10: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
12: क्या बात है सर, क्या बात?

0: बात है सर।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजे खुशी करती है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, अभी समय हुआ है 3:47। बहुत ही खूबसूरत गाने आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आप ही के पसंद के। तो श्रोताओं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को ना बिल्कुल भी मिस मत करो। अगर आपने कॉल नहीं लगाया है तो आप ट्राई कर सकते हैं, शायद नेक्स्ट कॉलर आप ही हमारे शो की बन जाए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी सर, बताइएगा कैसे हैं आप, बताइए सर। बनारस का मौसम कैसा है? पचास डिग्री ओके, फिर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हमारे यहाँ से भी ज्यादा गर्मी तो वहाँ पर है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और आपसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा। और बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं सर? जी चलिए, ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम सर। तो एवरीवन, चलिए, ये तो हमारे लिसनर बनारस से हमारे साथ कनेक्ट हुए थे। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐप के माध्यम से, हमें आप सुन सकते हैं, चाहे आप मुरादाबाद में हो या मुरादाबाद से बाहर सिटी में हो। दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुनने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दीवाना से, जो 1992 में ये फिल्म आई थी। और इस खूबसूरत से गीत को गाया है अलका याग्निक जी ने, साथ में विनोद राठौर जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक। आप एंजॉय कीजिएगा, मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से गीत एंजॉय किया और ये गाना है आप सभी के पसंद का। जी हाँ दोस्तों, लाइक क्या होता है ना, देखिए ये शो आप ही का फेवरेट है और आप सबका फेवरेट ये कार्यक्रम है हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप अपनी मनपसंद के गीत सुन सकते हैं। और ये मौका आरजे खुशी आपको देती है एवरी डे, मंडे टू सैटरडे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पर हाँ, जिनका एक बार कॉल लग चुका है मंडे में, तो वो मंडे ही, नेक्स्ट मंडे ही कॉल करें ताकि नए लिसनर्स को भी ये मौका मिल जाए और वो भी इस कार्यक्रम में, इस शो में कॉल लगा पाएं इजीली। क्योंकि शो में जो लिसनर्स हमारी कॉल करते हैं उनकी जो दीवानियत है, जो प्यार है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन और श्रोताओं को भी मौका मिलना चाहिए ना साथियों। जैसे आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ रेडियो पर आए, हम भी अपनी पसंद का गीत सुने, वैसे ही नए लिसनर्स की भी ख्वाहिशें होती हैं। तो उनकी खुशी को भी आप ध्यान में रखिएगा। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: यस, क्या नाम है आपका?
1: गुंजन।
0: गुंजन कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप?
0: जी बताइए गुंजन, कैसे हो आप?
1: ठीक। दीदी आप कैसे?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आप बताओ कौन सा गाना सुनोगे आज? ओहो, ये गाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है मुझे ऐसा लगता है। हाँ, आपको पसंद है नई गाना? चलो सुनवाते हैं आपको। कॉल करने के लिए थैंक यू, ख्याल रखो अपना अच्छे से। तो चलिए एवरीवन, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं और लौट कर आते हैं। तब तक आप भी कॉल लगाना ना भूलिएगा। मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गीतों का आनंद लेते रहिए।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
8: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
9: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह, घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारी गण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
8: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।
10: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
11: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और साथियों शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं और हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कहां से जुड़े हैं, क्या उनकी फरमाइश है, वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते मैडम
0: जी, आपको भी नमस्कार। अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ मैं।
0: उमा शंकर जी बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप सर?
1: ठीक है मैडम, ठंडी ठंडी हवाओं का जायका ले रहे हैं।
0: अरे वाह, ठंडी ठंडी हवाओं का जायका ले रहे हैं, कहाँ पर हैं आप इस वक्त?
1: हम रुद्रपुर में
0: है। अच्छा,
1: गाँव में रहते हैं।
0: रुद्रपुर में गाँव में रहते हैं, तो अभी कहाँ पर है, पेड़ की छाँव में है क्या आप?
1: हाँ सर, हमारा घर 2000 पेड़ों के बीच में बैठा हुआ है।
0: अच्छा, कहाँ पर है बताइएगा जरा हमें।
1: हेलो,
0: हाँ हाँ मैं सुन पा रही हूँ आपको, बताइएगा।
1: हाँ, रुद्रपुर में बागवाला में मेरा घर है
0: जी,
1: काटीपुर रोड पे।
0: ओके, बताइएगा सर, आज आपको फर्स्ट टाइम कॉल लगा है, कैसे लग रहा है आपको?
1: ना कि हम तो हर जगह सुनते हैं, हर जगह फोन लग जाता है, तो कहीं भी पहली बार फोन लग तो अच्छा लगता है।
0: अरे वाह, क्या बात है, लगता है रेडियो की दीवान की आपके अंदर बहुत ज्यादा है।
1: हम बचपन से ही रेडियो के शौकीन है, आज ही मेरे पास रेडियो है।
0: चलिए अच्छी बात है सर, रेडियो की जो मोहब्बत है वो ना वो अलग ही है।
1: हाँ, रेडियो से क्या कि आप काम कर रही हैं, तभी कोई काम का डिस्टर्बेंस नहीं होना है।
0: हाँ जी, इजीली हम काम भी कर सकते हैं और हम हर चीज का आनंद भी ले सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी, जानकारियां भी, सब हमें बैठे बैठे मिल जाती है।
1: हमारा हमारे दोस्त भास्कर जी है ना, वो सुनते हैं आप लोगों का कार्यक्रम।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: तो आज हाँ, तो हमारे बहुत वो भी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं रेडियो से।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो उन्होंने इतने दिनों के बाद आज मुझे बताया है।
0: ओके,
1: जब जाने के परेशानी खड़े होने मतलब उन्होंने बताया कि इस ऐप को डाउनलोड करो और सुनो।
0: हाँ जी, तो बताएगा सर, आज आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत सुना है आपने, किन के लिए सुनना चाहते हैं इतना प्यारा सा गाना? इतना खूबसूरत गीत किन के लिए सुनना चाहते हैं आप, कौन है वो स्पेशल?
1: हमारे हमारे रेडियो मुरादाबाद श्रोता है, सभी लोगों के लिए फर्स्ट एंड फर्स्ट।
0: ओके, तो चलिए,
1: हाँ राउंड में ही सभी लोगों के दिलों में छा जाऊं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है सर, छा गए हैं आप सभी के दिलों पर, आपकी बात करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है। और ये खूबसूरत से गीत का आनंद लीजिएगा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: और डेडिकेशन में रहेगा जितने हमारे श्रोता है मुरादाबाद के सुनने वाले सभी लोगों।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: स्पेशली भास्कर जी को, शाहजहां जी को।
0: ओके ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ और तमाम सुनने वाले प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ इस खूबसूरत गीत का आप भी आनंद लीजिएगा। और एवरीवन, आप भी मुझे कॉल लगाओ, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे, फिर करेंगे आपसे और भी बातचीत।

0: हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। वक्त हुआ है अभी 4:17 और बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने एंजॉय किया। किशोर कुमार जी साथ में लता मंगेशकर जी की बहुत प्यारी सी आवाज़, म्यूजिक कंपोजर थे RD बर्मन जी और लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार खुशी मैम
0: जी, आपको भी नमस्कार। अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: सतीश शर्मा बोल रहा हूँ मैम, चंडीगढ़ से।
0: सतीश शर्मा जी चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं, बताइए सर कैसे हैं आप।
1: बस मैम हम ठीक हैं, और आप कैसे हैं।
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा क्या कर रहे हैं इस वक्त आप।
1: बस मैम मैं कॉल लगा रहा था काफी देर से, मेरी अब जाके लगी।
0: ओके,
1: प्रयास कर रहा था।
0: काफी दिनों के बाद आज आपने कॉल लगाया है, मतलब ट्राई तो आप रेगुलर कर रहे थे लेकिन आज जाकर कॉल लगाया है।
1: ट्राई कर रहा था मैम, लगता नहीं था।
0: ओके, बहुत बिजी आता है ना नंबर।
1: हाँ जी नंबर बहुत बिजी आता है, मैं बहुत मुश्किल है लगाना।
0: पर लग जाता है जब शिद्दत के साथ लगाते हैं तो।
1: हाँ जी जब लगाते हैं फिर बहुत खुशी होती है
0: जी। तो सतीश जी बताएगा चंडीगढ़ का मौसम कैसा है।
1: चंडीगढ़ तो मैम बहुत गर्मी और टाइम 43 पे है टेम्परेचर।
0: 43? ओके, हमारे इधर मुरादाबाद में 40 डिग्री है। हाँ जी आपके यहाँ से कम है, आपकी चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा गर्मी है।
1: जैसे हम बाहर जा रहे हैं ना मैम, हाथ से जमने वाले हो रहे हैं।
0: हाँ सही कह रहे हैं आप,
1: हमें बड़ा परहेज रखना चाहिए
0: जी,
1: धूप में निकलने से बचे।
0: बिल्कुल सर,
1: जाते नहीं तो सिर वगैरह ढक कर जाए।
0: हाँ, ताकि गर्मी ना लगे और गर्मी से आप बचे रहें। एंड सबसे अच्छा तो यही है सर कि गर्मी में अवॉइड ही करें बाहर जाना, तो ज्यादा बेस्ट है।
1: अवॉइड तो मैम ठीक है, मगर ज्यादा जरूरी है जैसे जाना ही जाना है तो।
0: अगर अर्जेंटली जाना है
1: थोड़ी सावधानियां लेके चलो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली राइट सर, अगर अर्जेंटली जाना होता है बाहर तो कुछ सावधानियां बरतें और जा सकते हैं, क्योंकि काम है तो जाना भी पड़ेगा।
1: हाँ जी मैम, छाता लेके जाए अगर हो सके तो।
0: जी बिल्कुल, छाता लगा कर जाए। हाँ पानी की बोतल तो भूल नहीं सकते हैं, चाहे मोबाइल भूल जाए लेकिन पानी की बोतल ना भूलें, वो सबसे जरूरी है।
1: पानी तो मैम 5-10 मिनट के बाद पीते रहना चाहिए।
0: हाँ जी बिल्कुल सर, आप बताइएगा आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे।
1: आज मैम फिल्म रहेगी धनवान, उसमें गाना है एक ही घोंसला 2 दिनों का।
0: अच्छा, और ये गीत अच्छा सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप चंडीगढ़ में कितने साल से रह रहे हैं।
1: मैम मेरा जन्म चंडीगढ़ का।
0: अच्छा ओके, आपका जन्म भी चंडीगढ़ में ही हुआ है, तो आपको चंडीगढ़ में सबसे खूबसूरत प्लेस कौन सा लगता है जहाँ पर आप अक्सर जाया करते हैं।
1: चंडीगढ़ में वैसे तो सारा ही खूबसूरत है, पर जो मेन है यहाँ पे सुखना लेक है
0: जी,
1: झील बोलते हैं उसे, और एक रोज गार्डन है, और माता मनसा देवी का टेम्पल है।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी राइट।
1: हाँ जी, और काफी सारा घूमने वाला एरिया है।
0: ओके,
1: यहाँ पे जैसे हम जाते हैं तो हमें सारी पहाड़ियाँ देखने लग जाती हैं, शिमला की, कसौली की।
0: ओके, वहाँ से चंडीगढ़ से वहाँ का नजारा दिख जाता है, कसौली का। हाँ शिमला का,
1: यहाँ से पहाड़ियाँ दिख जाती हैं।
0: ओके, तो बताइएगा ये खूबसूरत सा गीत आप किनके लिए सुनना चाहते हैं सर।
1: सबसे पहले तो आप ही रहेंगे शामिल।
0: हाँ जी,
1: और रीना मैम।
0: हाँ
1: मैम, रीना मैम भी नहीं आ रहे काफी दिन से।
0: एक्चुअली रीना मैम इवनिंग में आती हैं, अभी वो थोड़ा सा बिजी हैं इसीलिए नहीं आए हैं। हाँ जी
1: नहीं, पर जैसे आप लाइव सेशन करते थे ना वो
0: हाँ,
1: नहीं आ रहा।
0: हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली अभी थोड़ा सा बिजी हैं, बट हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप सभी के साथ लाइव में भी कनेक्ट हूँ।
1: हाँ जी, और मैम मेरे दोस्त रहेंगे प्रवेश जी शामिल, और एक सोनू गौतम जी है, उनको भी मैंने बताया था आपके चैनल के बारे में।
0: हाँ जी, उन्होंने उनका कॉल लगा था सर का, एक बार मेरी बातचीत हुई है सर से।
1: हाँ जी, मैंने कहा वो कह रहे मैं वहाँ रहता हूँ रामपुर में, तो मैंने कहा वहाँ पे मिलाओ ना, आपके पास है वो तो बहुत।
0: हाँ जी ओके। हाँ सर का मैसेज भी हमारे कार्यक्रम में आया था सुबह मॉर्निंग में।
1: हाँ जी
0: जी,
1: और एक मेरे दोस्त है नेत्रपाल जी।
0: ओके,
1: शामिल रहेंगे मैम जो है तो समय सुन रहे हैं ना समय।
0: हाँ जी हाँ जी ठीक है सर, सभी के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत से गीत, कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार आपको भी सर। तो चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत सुनते हैं सर की पसंद का और हम लौट कर आएंगे। तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर 98-378-96-96, शायद आपका भी कॉल लग जाए और आप ही हमारे शो के नेक्स्ट कॉलर बन जाएं। क्योंकि देखिए, कॉल लगाना ना यहाँ पर लकी बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप कोशिश करती रहिए और मुस्कुराती रहिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और इस खूबसूरत से गीत का आनंद उठाइएगा।

0: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
5: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
4: अरे वाह।
5: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
4: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और साथियों, यहाँ पर वक्त हुआ है 4:30 एंड खूबसूरत गीतों का आप आनंद ले रहे हैं बैक टू बैक, एक से बढ़कर एक गाने आप ले हम कर रहे हैं आप सभी के पसंद के और आप सब एंजॉय भी कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, हमारी ज़िंदगी भी ना एक लाइक रेडियो की तरह ही है, पता है आपको कैसे? पता नहीं होता है कि रेडियो में क्या होता है कि कभी भी कोई भी गाना आ सकता है, चाहे वो सैड हो, हैप्पीनेस वाला हो, एनर्जेटिक हो, वैसे ही लाइफ ही होती है। ज़िंदगी में क्या होता है, एक पल खुशी है तो नेक्स्ट पल क्या होगा किसी को नहीं मालूम होता है। कभी खुशी का पल आता है, कभी गम का आता है, कभी इतना एक्साइटमेंट होता है लाइफ में समझ नहीं पाते हैं क्या करें, कभी इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं कि हमने सोचा भी नहीं होता है कि इतनी सारी खुशियाँ हमें मिलती हैं। तो दोस्तों, जो भी पल आपके पास होते हैं, जो भी टाइम आपके पास अभी है, इस पल को इंजॉय करो, यूटिलाइज करो समय को। एंड खुशी आपसे कहती है कि हर पल सीखते भी रहो, क्योंकि जिंदगी का नाम ही सीखना है। और बहुत सारी बातें मैंने अभी कंटिन्यू कर ली है, अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश। हाय, गुड इवनिंग। आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताइएगा कैसे हैं और क्या शुभ नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम भास्कर कुमार तेजस्वी और मैं मुंगेर जमालपुर बिहार का रहने वाला।
0: अरे वाह, क्या बात है, इतनी दूर दूर से आज हमारी कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आई एम सो हैप्पी।
1: जब प्लेटफॉर्म ग्रो करता है ना तो ऐसे ही आते हैं दूर दूर से लोग।
0: हाँ जी बिल्कुल, और ये प्यार है आप सबका रेडियो के प्रति। जब हमारा रेडियो से प्यार होता है ना सर, तो फिर हम ऑल इंडिया में हो या इंडिया के बाहर से हो, कनेक्शन कनेक्टिविटी बना ही लेते हैं, क्यों?
1: जी जी जरूर, कनेक्टिविटी बन ही जाती है। रेडियो एक ऐसा चीज ही है कि हम एक दूसरे को देखते नहीं है, बस उनकी बातों से इतना इम्प्रेस होते हैं ना कि खींचा चले आते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अच्छा लगता है जहाँ पे।
0: हाँ जी बिल्कुल सही कहा है आपने। और बताइएगा आपके शहर का मौसम कैसा है सर?
1: जी अभी तो कल परसों तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन आज कुछ हवाएं चल रही, मौसम मतलब कभी बादल हटखेली कर रही है सूरज के साथ लगातार।
0: ओके, तो मतलब आपके यहाँ का कुल मिलाकर वेदर अच्छा है आज का?
1: जी जी वेदर बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से, और थोड़ी सी गर्माहट तो होगी क्योंकि गर्मी का मौसम है, बट वो वाली गर्मी नहीं लगी जो कल परसों बहुत ज्यादा पसीने पसीने था पूरे दिन।
0: गर्मी ने होश उड़ा दिए।
1: जी बहुत।
0: हाँ लेकिन अभी का मौसम अच्छा है आपके यहाँ का, हमारे इधर तो 40 डिग्री सेल्सियस है वेदर इधर का, बहुत गर्मी है।
1: नहीं यहाँ तो 31 है अभी।
0: ओके आपके यहाँ का ठीक है, हम भी चाहते हैं कि इधर का वेदर भी थोड़ा सा कूल हो जाए। और आपने कॉल किया है आज, आज मॉर्निंग में भी आपका कॉल लगा और इवनिंग में भी लगा है, कैसा लग रहा है आपको? दो दो बार आपका कॉल लग चुका है।
1: मुझे लग रहा है I'm so lucky today.
0: हाँ लकी तो आप हैं, नो डाउट सर। कहते हैं ना कि अगर सुबह का दिन हमारा सुबह की शुरुआत अच्छी होती है ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ। सुबह मेरी बहुत अच्छी थी, आनंद सर से बात हुई और मैं विनर बना, और विनर होना तो इतने लोगों के बीच में एकदम मतलब एक साधारण व्यक्तित्व को करता है ना।
0: अच्छा हुआ और हमें भी अच्छा लग रहा है भास्कर जी आपसे बातचीत करके। आप बताइएगा क्या करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में?
1: बस अभी तो मेरा दिन का पेंटिंग का काम है, बस पेंटिंग के अलावा मैं और भी कुछ करता हूँ, कोई डिजिटल रेडियो स्टेशन पे मैं वर्क करता हूँ। 6 बजे से मेरा एक प्रोग्राम आता है भक्ति सागर का, जिसमें मैं भक्ति गाने लोगों की यानी श्रोताओं की फरमाइश पे चलाता हूँ और सभी को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी की शाम को शाम सिंदूरी नाम से एक मेरा प्रोग्राम आता है 7 बजे से 8:30 बजे तक।
0: अरे वाह,
1: उसमें भी मैं जी ऐसे ही कॉलिंग वाला, कॉल मी रिक्वेस्ट वाला और अपनी फरमाइशों से मैसेज द्वारा ये 3 करता हूँ और अगेन फिर 3 दिन वही करता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है सर, आप सबकी सुबह भक्तिमय बनाते हैं और प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मॉर्निंग एंड इवनिंग ये टाइम जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा पीक टाइम होता है, और मॉर्निंग में सब उठते हैं फ्रेशनेस के साथ, इवनिंग में सब चाहते हैं कि थोड़ा सा सुकून मिल जाए, आराम मिल जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है कि सुबह का भक्तिमय जब हो जाता है तो अच्छा लगता ही है। उसके साथ साथ शाम को जब ऑफिस से या किसी भी वर्क पे हम लोग थके हारे आते हैं तो मैं खुद थका हुआ रहता हूँ तो लिसनरों के पास जाकर एक ऐसी एनर्जेटिक फील करता हूँ कि मत पूछिए, और वो लोग भी मेरे साथ आके एनर्जेटिक हो जाते हैं. और शाम अच्छी हो जाती है तो रात को नींद भी अच्छी आती है.
0: हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है सर. तो बताइए भास्कर जी, बातचीत तो हमारी बहुत ज्यादा हो गई है, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: एक कृष्णा मूवी का गाना है, विवेक ओबराय की मूवी है.
0: हाँ जी,
1: बहुत सुकून का गाना है और बहुत ही खूबसूरत लाइफ का गाना है. कि मैं दो लाइन गुनगुना सकता हूँ?
0: श्योर, बिल्कुल गुनगुना सकते हैं आप, गुनगुनाइएगा.
1: हम

0: रहेंगे सदा हमें जमीन आसमान।
1: बहुत ही खूबसूरत आपने गुनगुनाया है सर, आपकी आवाज बहुत प्यारी है।
0: शुक्रिया। और आपकी भी खुशी थी। मैं एक सवाल आपसे पूछी थी कि आप कहाँ से हो, ये बताइए।
1: मैं तो यहीं से हूँ, यूपी से ही।
0: लोकल?
1: हाँ जी,
0: लोकल
1: लोकल से ही है।
0: मुरादाबाद से ही?
1: या
0: थैंक यू बस। और
1: मोस्ट
0: आपकी
1: वेलकम।
0: प्रोग्राम प्रोग्राम को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम को सुनना।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और ये खूबसूरत सा ट्रैक आप एंजॉय कीजिएगा।
0: आज सबको मधुमक्खी दिवस और योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मधुमक्खी दिवस है इसलिए आपको शहदों जैसा मीठी गोली के लिए आपको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।
1: ओके, सेम टू यू सर, थैंक यू सो मच,
0: थैंक
1: टेक केयर।
0: सो
1: तो चलिए एवरीवन, ये खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं सर की पसंद का और हम लौट कर आते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप परेशान मत होइए। खुशी चाहती है कि आप ना हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे पर ना इतने प्यारे से मुखड़े पर उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, नंबर मैं बता रही हूँ 98-378-9696 8 9 6 8 9 6। और खूबसूरत से गाने इंजॉय कीजिएगा, मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गाने के इस पार।
2: हम हैं

0: बसंतीन के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
8: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल सिविल लाइंस मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और साथियों, कुछ एड ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं आप सभी का फेवरेट शो लेकर, हेलो फरमाइश। और आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक अभी एंजॉय किया था फ्रॉम द मूवी कृष्णा, जो 2005 में आई थी, बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म। और इस गीत को गाया था उदित नारायण जी, साथ में मधुश्री जी की खूबसूरत सी आवाज़ में, एंड म्यूजिक डायरेक्टर थे AR रहमान और लिरिक्स थे जावेद अख्तर जी के। तो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,

0: हेलो। मैं
1: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
0: आसिफ बात कर रहा हूँ। सर
1: आसिफ जी बात कर रहे हैं, बताइए कैसे हैं सर आप?
0: हम बढ़िया हैं। सुनाओ मैम।
1: जी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं आप?
0: गाना सुना दो। अदनान समी की आवाज में जो है वो भरत झोली में रिया मोहम्मद।
1: फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान, राइट? ओके, तो हाँ
0: आपके
1: जी
0: स्टूडियो में कैसे हैं सब लोग?
1: हाँ, ऑल गुड सर, बहुत ही अच्छे हैं सर, सब लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। जी, ये
0: ठीक
1: सुनवाते हैं आपको गीत आपकी पसंद का। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये खूबसूरत सी कवाली फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान से अदनान सामी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में। खूबसूरत सी कवाली लौट कर आते हैं हम, तब तक आप कहीं मत जाइए, और हाँ, रेडियो की स्क्रीन को बिल्कुल भी मत घुमाइए। खुशी आपसे कहती है कि हमें जल्दी से कॉल लगाइए। नंबर मैं आपको बता रही हूँ, 98-378-96-896। और अदनान सामी जी की खूबसूरत सी आवाज़ में खूबसूरत सा गीत सुनते जाइए ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर।

बिल्कुल दोस्तों, जब इतने प्यार से हम ऊपर वाले से इबादत करते हैं, एक्चुअली जब हम दुआएं करते हैं और कुछ मांगते हैं तो ऊपर वाले हमेशा झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं और जितना हम मांगते हैं उनसे ज़्यादा वो हमें दे देते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया करते रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो कुछ दिया है वो पता नहीं बाकियों को मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि हमारे पास जो है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले का अपनों का थैंक यू कहना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत सा अभी आपने ये खूबसूरत सी गज़ल सुनी एंड फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाई जान सी कवाली। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो हेलो। लगता है कि फ़ोन लगाकर कहीं रख कर छोड़ गए हैं। हमारे लिसनर कुछ ऐसा भी कर देते हैं, कभी कभी काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो श्रोताओं, इन एक छोटे सी बच्चे की रिक्वेस्ट हमारे पास अभी आई थी, कॉल किया था, कहता है कि मैम मुझे एक ट्रैक सुनना है, एक गाना सुनना है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ। बहुत ही प्यारा सा गीत है और इस गीत को हम सुनवाते हैं श्रोताओं, और मैं आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति इस खूबसूरत से गीत के साथ। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि कल मैं मिलूँगी आपको सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान अच्छे से रखिएगा और FM मुरादाबाद 89.6 के साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कार्यक्रम भी आप सभी के लिए हैं और आपके लिए बहुत जानकारियाँ हम लेकर आते हैं। श्रोताओं, हम चाहते हैं कि मनोरंजन के साथ साथ ना एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको जानकारियाँ भी मिले जो आपके लिए लाभकारी हों। और बस अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए, गर्मी से बचकर रहिए और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखिएगा। श्रोताओं, कम खाइए लेकिन हल्का खाइए और अच्छा स्वादिष्ट भोजन ताज़ा खाइए, ताज़ा भोजन खाइए, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कई बार एक्स्ट्रा खाना बना देते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर बाद में हम खाते रहते हैं, जो कि नहीं सही है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ा सकता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, बाकी मुस्कुराते रहें। अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए। नमस्कार श्रोताओं।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
1: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
0: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं कर रहा हूं आपसे बात, और जैसा कि आपको पता है कि जब मैं आता हूं तो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बात तो लेकर आता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में। जब आपको सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्या सच में वो सस्ता ऑफर है या फिर आपके लिए एक महंगी गलती? तो दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले है राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रूपए में दे रही है,
1: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रूपए का है।
0: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, ना तो डिलीवरी आई है, ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है, लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप सबसे, करूंगा और भी बात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
2: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
3: माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
2: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
3: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
2: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
4: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
1: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
0: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है। तो यही कहने वाली थी।
1: हाँ, यही कहने वाली थी।
0: इसकी और

0: ये विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
1: बिल्कुल सही।
0: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं, इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
1: और स्टूडियो में ना तब भी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
0: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। So, आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा। नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी
0: हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: बिल्कुल लगाइए, जरूर लगाइए,
0: जरूर लगाइए। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुमने देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल।
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी, लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी, तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है, वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती थी वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे, पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है, आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे, मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहे, कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपने प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कॉन्ट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ,
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते, ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर

0: आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी। अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे, क्योंकि कई बार हम बतूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना। और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना। ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इंडियनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो वो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट
1: पानी
0: होता है,
1: वेस्ट होता
0: तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सकें। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से. यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे. आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं. प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो. रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी. साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है. अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी. कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है. पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला. लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली. लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा. इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम और पर्यावरण को साफ रखें. क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है. तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें. स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देखरेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है. बाकी पोल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही है.
0: ये तो आपने सही कहा. तो दोस्तों आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा. हमारा जाने का समय हो गया है और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी. तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए. तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए.
0: करेक्ट, सही कहा आपने. और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए. जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए.
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास. अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है.
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें. आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं. कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा. इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें. अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ. फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो. याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी. ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6.
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे.
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके साथ मैं हूं आशीष और
2: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:21 हो चुके हैं। आई नो कि रीना लेट हो चुकी, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी गाइज। वो यही कहते हैं ना कि सफ़र में जब आप निकलते हो, बाहर जब जाते हो, तो आपको खुद नहीं पता चलता कि ट्रैफिक जाम में आप कितनी देर फंस सकते हो। इसीलिए जब भी हम निकलते हैं घर से या ऑफिस से आप निकलते हो, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि आपको ट्रैफिक जाम यानी कि भर के मिलेगी ही मिलेगी। और साथ ही साथ पीएससी हरथला की तरफ से आप आते हैं तो वहां पर तो भाई साहब मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, मतलब इतनी ज्यादा आपको भीड़ मिलेगी। रेलवे स्टेशन की तरफ से आ जाइए, यहाँ पर भी आपको जमकर भीड़ मिलने वाली है। सो रीना भी ऐसी जाम में फंस गई थी और मैंने जैसे तैसे करके मैं कहा भैया चलो जल्दी ऑफिस में, हमारे प्यारे प्यारे जो श्रोता है वो इंतजार कर रहे होंगे कि आखिरकार रीना जी कब आएगी। और मुझे भी जैसे 5 बजे ना बेचैनी से होने लगती कि ओहो हमारे जो श्रोता है प्यारे प्यारे उनसे तो बातें भी तो करनी है, मुझे बहुत सारी बातें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी होती है। सो आरजू रीना आ गई है जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक प्यारे से गाने के साथ अगला जो एक प्यारा सा गाना आप सभी के बीच, और उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, बस आरजू रीना के साथ कनेक्ट रहना है। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। क्योंकि देखिए जिंदगी में ना कुछ भी हो जाए, गुनगुनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए लड़कियाँ तो वैसे भी शांत रह नहीं सकती है, कुछ भी हो जाए वो हमेशा बोलती ही रहती हैं। फिलहाल आप सभी से यही कहेंगे कि शाम का वक्त है, अगर आप ट्रैफिक जाम में अगर फंसे हुए हैं तो प्लीज़ हमें आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर मैसेज करके ज़रूर बताइए, ताकि उस साइड से जो भी आने वाले हैं वो इस ट्रैफिक जाम से थोड़ा सा उनको राहत मिल सके और अपने घर समय पर वो पहुँच जाए। सो चलिए फिलहाल इस गाने के साथ इंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच और करेंगे ढेर सारी बातें। आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:32 हो चुके हैं और आई नो कि आप अभी सफर में हैं और जल्दबाजी कर रहे हैं। देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि शाम का वक्त है और शाम के वक्त में आपने होले होले गाड़ी चलाना है और अपने घर आराम से पहुँचना है। देखिए, अगर आपको प्यास लगी है तो पानी की बोतल ले सकते हो क्योंकि गर्मी है और गर्मी में आप जितना पानी पिए उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, डिहाइड्रेट रहेंगे आप। साथ ही साथ आप सामने देख सकते हैं, अरे देखिए तो सही, नारियल पानी पी सकते हैं आप। नारियल वाले भैया खड़े हैं आपका इंतजार कर रहे, भैया कब आएंगे हमारे ग्राहक और हमसे नारियल पानी लेके पिएंगे, क्योंकि गर्मी में आप नारियल पानी जितना पिएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। और ये साथ ही साथ लंग्स यानी कि लीवर को भी ये क्लीन रखता है, साफ रखता है। और साथ ही साथ साफ की बात करूं तो आज भैया ग्राउंड में भी धमाल मचने वाला है। आखिरकार क्या, अरे बिल्कुल बताती हूँ जी, रुक जाइए रुक जाइए। आई नो कि आप मैच के दीवाने हैं तो हम हैं ना बताने के लिए आपको, बेफिक्र रहिए आप। मैं आपको बताती हूं कि आज का मैच यानी कि बड़ा ही फंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि आज का जो मैच है कोलकाता वर्सेस मुंबई के बीच मुकाबला होने वाला है। तो देखना ये है कि कौन सी टीम बाजी मारती है और कौन सी टीम का जो पलरा है वो थोड़ा सा लो जाने वाला है। सो आज के मैच देखने के बाद ही पता चलेगा भैया, क्योंकि कल तो राजस्थान रॉयल ने भाई धमाल मचा दिया है, कतई धमाल मचा दिया है। तो अभी मैच के दीवाने हैं, मैच देखने के तो दीवाने हैं, तो बिल्कुल जी आप मैच जरूर देखिए। और यूं ही आर्जरीना के साथ कनेक्ट रही अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। क्योंकि देखिए, आर्जरीना के साथ हैं आप और गुनगुनाए ना ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गुनगुनाना बहुत जरूरी है मेरी जान। और अगला गाना, आए हाय क्या बात है जी। सो अगले गाने को एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं इस स्टेशन पर और करेंगे ढेर सारी

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे मेरी जान। और समय की बात करूं तो 6:41 हो चुके हैं। अगर आज की वेदर की बात करूं तो भाई इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि बाहर इस टाइम भी ना ऐसा लग रहा है कि फेस पर लू के चपेटे लग रहे, इतने तेज वाले, मतलब पता नहीं चल रहा कि भगवान जी किस पार्लर में जाते हैं, सज धज कर आते हैं सूर्य देव, कि भाई इनको देखना दुर्लभ हो गया है। यानी कि ये कहते हैं कि भाई मुझे कोई नहीं देख सकता है, मैं इतना, मेरे अंदर तेज प्रकाश इतना ज्यादा है कि इनको देखना दुर्लभ हो गया। अगर आज के टेम्परेचर की बात करूं तो 39 डिग्री सेल्सियस है और ये कहा जा रहा है भैया, यानी कि 22, आज है 20 मई और 22 मई से थोड़ा सा वेदर में चेंज हो सकता है। और ये 22 मई से जो वेदर चेंज होने वाला है, यानी कि गोरखपुर, बस्ती, यानी कि यूपी के बहुत से जिलों में वेदर चेंज हो सकता है, उत्तर पूर्वी जिलों में भी, ये बताया जा रहा है कि 22 तारीख को और 22 तारीख के बाद यानी कि बारिश और गरज चमक की संभावना जताई जा रही है। तो मैं कहती हूँ भगवान 22 तारीख का इंतजार मत करिए, प्लीज बरस जाइए, अपनी बहन वर्षा जी को भेज दीजिए धरती पर, क्योंकि हमें उनके बेसब्री से इंतजार है, बहुत इंतजार कर रहे हैं। क्यों आपने तो इतनी ज्यादा गर्मी कर रखी है, पता नहीं कैसे कितना गुस्सा आपको आता है। तो मैं कहती हूँ अपना गुस्सा शांत करिए, अपनी बहन वर्षा को भेज दीजिए धरती पर, क्योंकि थोड़ी सी हमें राहत

रोटी स्किप कर सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं आपने करना है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ गए हैं, सो चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, किनका मैसेज आता है और क्या कहना चाहते हैं ये। नमस्ते रीमा मैम। अरे सर रीमा कहाँ नाम रख दिया आपने भाई, कोई देखो तो मेरा नाम टीना रीना क्या रख देते हो यार, कोई बात नहीं, बहुत प्यारा नाम रखा है आपने मेरा। और नमस्ते आरजे आनंद सर, जो आपने रीना मैम और आरजे आनंद सर ने जो ये सोच बदलो प्रोग्राम हमें सुनाया ना, बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच जी। एफएम रेडियो पर जो आप बातें अच्छे अच्छे बताते हो, बहुत मतलब सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। सोनू कुमार सेक्टर 10 बुद्धि बिहार। अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, हेलो हेलो गुड वाला इवनिंग है रीना जी। मैडम 2.5 घंटे लेट हो आप, ओ माय गॉड, मतलब ये टाइम भी मैं देखते हैं भैया कौन कितनी देर लेट है, क्या करे सर, ट्रैफिक में जब आप एक बार फंस जाते हो ना फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

वंशी हमारे साथ कश्यप जी कनेक्ट होते हैं और कहते हैं कि आप कैसे हो, आपके परिवार में सब कैसे हैं? हाँ जी, हमारे परिवार में सब बढ़िया है। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, लाकड़ी फाजलपुर से बोल रहा हूँ। बिल्कुल जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? कितनी प्यारी बोलती हो, थैंक यू सो मच जी। आज मुझे पता चल गया कि मैं बहुत प्यार से और बहुत प्यारी बोलती हूँ। मेरे को तो आप बहुत अच्छी लगती हो, थैंक यू सो मच जी। और इन्होंने बताया कि मुझे एक गाना सुनवा दीजिएगा प्लीज, 440 4GB का जमाना। ओके, बिल्कुल जी, हरियाणवी गाना है तो हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे, लेकिन सुनवाएंगे तो जरूर आपको, बस हमारा रेडियो कनेक्ट करके रखना है। और जो अगला गाना आ रहा है ना आप सभी के लिए, सच बताऊं बहुत प्यारे। अरे राफ्ता राफ्ता, क्या जी राफ्ता राफ्ता, आंख लड़ी है क्या लड़ी है? वो तो गाना सुनने के बाद ही पता चलेगा। चलिए फिलहाल गाना इंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। ना भूले अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: असंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:51 हो चुके हैं और आज की तारीख 20 मई। और 20 मई में देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अभी यानी कि 48 या 24 घंटे के बाद यानी कि मौसम में चेंजेस आ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करूं सुबह की, तो दूध से लेकर ब्रेड तक महंगी हो चुकी है। यानी कि ब्रेड आप लेने जाएंगे तो 5 रुपये जहां 20 को मिलता था, वो 25 को आपको मिलेंगे। साथ ही साथ देखिए, इस गर्मी में ना मैं आपको ये कहती हूँ कि सुबह के टाइम देखिए चाय स्किप करिए, जितना हो सके उतना स्किप करिए। लेकिन जो चाय लवर है भैया, वो बोलेंगे कि भाई नहीं कर सकते, जहर को जहर ही काटता है। यानी कि गर्मी है तो गर्मी में चाय पियेंगे, चाहे कुछ हो जाए, पसीने टपके कुछ हो जाए भाई। लेकिन इस गर्मी में ना जो हमारी प्यारी वुमनियां हैं, जो गर्ल्स है किचन में खड़ी होकर खाना बनाती, भाई उनको उनके चरण छू लीजिए। बस सच बताती हूँ, चरण छूने के लायक है वो, कि इस गर्मी में आपको पकवान बनाकर परोसती हैं, खाने के लिए देती है, आपका पेट भरती है। और उनसे पूछ के देखे कि जब वो किचन में जाती है ना, तो किस सिचुएशन में वो खड़ी रहती है। भाई बहुत गर्मी है, सच बताऊं। आज तो खुद मैंने भी किचन से ना हाथ जोड़ लिए कि भैया कोई बात नहीं, बाहर से कुछ खा लेंगे, लेकिन खाना नहीं बना पाऊंगी, इतनी ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है। सो इस गर्मी में हमने एक ही चीज है जो राहत हमें दिला सकता है, वो है दही। दही को आपने खाना है, जो कि आपके पेट को ठंडा रखता है, खाना जल्दी पचाता है। और जलन जो आपको महसूस होती है इस गर्मी में, आप उल्टा सीधा कुछ खा लेते हैं तो उससे आपको राहत मिलती है। बहुत से कहते हैं कि भैया हम ना ओवर ईटिंग कर लिया है हमने, तो हम ना कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कोक पी लेते हैं, उससे ना मतलब जो खाना है वो पच जाएगा और थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो केमिकल होता है, जब आप पीते हैं ना तो जस्ट 5 मिनट के बाद आपको हल्का महसूस होने लगता है। यानी कि सोचिए, जब वो आपके पेट में जाकर वो जो केमिकल जब वो जाता है, तो अब वो खाने के बाद जो रिएक्ट करता है वो तो आपको भी पता चलता है। यानी कि जब उसके बाद गले में जो जलन होती, भाई कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए दही बहुत प्यारा है, आप उसको देखिए, रात में कभी नहीं खाना है आपको दही। यानी कि सुबह आप ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, जब आप लंच करते हैं, रात को तो दही बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और ये दही बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही साथ इस गर्मी में लेमन मतलब पानी पी सकते हैं, पानी के अंदर लेमन वगैरह डाल के, ताकि आप सेफ रहेंगे और आपको गर्मी से आप बचे रहेंगे। सो आज तो मैं कड़क सवाल नहीं पूछ पाऊंगी, लेकिन बातें बहुत सारी करेंगे। गाइस कहीं नहीं जाने, बस आरजे नीना के साथ कनेक्ट रहना, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास। हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और इनका कहना है कि मैम चाय पी लीजिए। मैम नहीं नहीं मैम, थैंक यू सो मच, आपने पूछा, धन्यवाद, दिल से तहे दिल से शुक्रिया आपका, कि आप इस गर्मी में भी, इनका कहना है कि गर्मी को गर्मी काटती हो भाई साहब, मतलब एक तरफ से पसीना टपकता है लेकिन चाय पीना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैम, आपने पूछा, हमने आपकी पूछने का जो मान रखा है, लेकिन हम चाय नहीं पी सकते। ऊपर से कहने की आप जो शो कर रहे हो बिंदास चल रहा है, ओके थैंक यू सो मच जी। और इनका कहना कि रात कैसी कट रही है जी? कट रही है बस मच्छरों के साथ, गर्मी के साथ। मतलब सच बताऊं, रात की रियलिटी तो भाई, सच बताऊं, लाइट तो ऊपर से पता नहीं क्या चली गई थी, यानी कि 2 घंटे बाद लाइट है। गाइस जब मैं उठी तो मतलब पूरे पसीने में मैं थी, मतलब सोचिए कि मैं 12 बजे उठ के बालकनी में घूम रही हूँ कि भाई कहीं से हवा ठंडी मिल जाए। मत पूछिए रात कैसी कटती है, बहुत गर्मी है और इस गर्मी में रात काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिन तो इंसान काट लेता है लेकिन रात नहीं कटती है। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और इनका कहना है कि मैम हमें भी लाइट बहुत परेशान कर रही है। अरे क्या बात है जी, गर्मी है और गर्मी में परेशानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए 4G का जमाना, गाना एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। फिलहाल आपने ट्यूनिंग रखना है अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.4। 4G का जमाना गया जी, 5G 6G का जमाना आ गया है।
और गर्मी कहीं ना कहीं इन चीजों का भाई, जो आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये चीज तो होगी, गर्मी तो बढ़ेगी। 4G 5G का मतलब क्या जरूरत है इसकी, 4G में काम चल रहा था ना। और साथ ही साथ आपने क्या करना है श्रोताओं, पक्षियों के लिए पानी आप जरूर रखिए। हम इंसान तो फिर भी पानी मांग कर पी लेते हैं, प्यास लगती है तो पानी ले लेते हैं, लेकिन बेचारे बेजुबान पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उनके उनको ध्यान रखना है। और इस गर्मी में मैं तो आपको यही कहूंगी, देखिए अब तो घर में आप गमले रख सकते हैं, छोटा मोटा पौधा लगा सकते हैं ताकि हवा शुद्ध मिले आपको। और जितना हो सके आप पेड़ लगाइए, कम से कम महीने में 1-2 पेड़ तो ज़रूर लगाइए। यही कारण है कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ आप जितने भी घर में भी देखेंगे ना, एक ना आपको एसी तो ज़रूर ही मिल जाएगा। और यही जो देखिए एसी है, जो अंदर तो आपको ठंडक फील कराती है, लेकिन बाहर जो इसका प्रचंड गर्मी जो बाहर निकलती है ना, मतलब मत पूछिए, उसी का रिएक्शन है जो आजकल इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं। मैं बोलती तो चुप नहीं होती थी।

0: STR Music.
1: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने अर्जेंटीना के साथ। और समय की बात करूँ तो श्रोताओं, 6 बजने में बस 1 मिनट बाकी है। फिलहाल जो मेरे पास मैसेज आए हैं ना, उनको मैं फटाफट शामिल करती हूँ और भी ढेर सारी बातें करेंगे आप सभी के साथ। बस कितने नहीं जाना है जी, अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट रहना है और इस गर्मी में बचने के लिए, यानी कि हीट वेव का इंटरव्यू मैं चलाने वाली हूँ, तो उसको आप ज़रूर सुनिए और अपने दिनचर्या में ज़रूर उसको फॉलो करिए। फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। साथ अगले मैसेज की तरफ बढ़ू तो हेलो दी, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं स्वाति एंड नेहा। और अगले मैसेज की बात करूँ तो प्रदीप जी कनेक्ट होते हैं MDA से, और इनका कहने की क्या बात है मैम, आप लेट आ गई हो आज, मन नहीं लगा हमारा मन नहीं लगा सर, कोई बात नहीं, आ गई हूँ मैं ना। तो इनके कहने की मैम आप टाइम पे आ जाया करिए प्लीज़, मतलब मैं जब भी आपका शो जरूर सुनता हूँ शाम के टाइम जब मैं ऑफिस से घर जाता हूँ, तो पता नहीं चलता कि कब मैं आपका शो सुनते सुनते घर पहुंच जाता हूँ। तो बातें आप इतनी अटपटे चटपटी करते हैं ना, मज़ा आ जाता है आपकी बातें सुनकर, और जो साथ ही साथ जो गाना प्ले करती है ना वो भी बहुत प्यारे होते हैं। और यूं ही आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम सभी का आशीर्वाद आप सभी के साथ है। थैंक यू सो मच सर, यूं ही अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखिए। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूँ तो ये वंशिका जी कनेक्ट होती हैं, ये दिल्ली से कनेक्ट होती हैं, और इनका कहना है कि मैडम अब तो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ने वाली है तो मजा ही आ जाएगा। अरे अरे अरे क्या बात है जी, बिल्कुल सही कहा आपने, अब तो बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन बहुत सी मम्मियां ये कहेंगी अरे धत तेरी किस अच्छर की, तू बच्चे स्कूल ही चले जाते हैं क्योंकि बच्चे अब घर पर रहेंगे तो नाक में दम करके, यानी कि परेशान तो करके रखती है तो कोई बात नहीं जी, गर्मी है और गर्मी में बचना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, यानी कि ईशान जी कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं PSC की तरफ से ही कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि आज मैं मैम इधर सच बताओ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, आप रेडियो पर ज़रूर बोलिए। बिल्कुल जी सर, हमने बोल दिया है, PSC की तरफ हरथला रोड की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है क्योंकि वो भाई भीड़ वाला इलाका है ना, तो गर्मी तो रहता ही है। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूँ तो ये पूजा जी कनेक्ट होती हैं, ये कहती है कि हम आपके पास से ही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो मैम बस एक चेयर है और पानी की बोतल है और ये लाइन प्रकाश नगर से ही बोल रही हैं। थैंक यू सो मच जी, और इनके कहने की गर्मी में पानी पीते रहिए और अरीना जी का शो सुनते रहिए। थैंक यू सो मच जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, इनके दोस्त है सैयद सारिक अली, और इनका कहने की गुड इवनिंग जी, आप कैसे हो? बहुत जी अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लग रहा है मेरा प्रोग्राम तो। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले हिट वे का आपको प्रोग्राम हम सुनाने वाले, उसको जरूर सुनिए। साथ ही साथ पहले तो एक प्यारा सा गाना हो जाए, उसके बाद हम यहाँ से लेंगे जाने की इजाजत। और रात के देखिए 9 बजे गाइज हम आप सभी के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, तो प्लीज कनेक्ट होना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ढेर सारी बातें करेंगे जो कि अब हम इतना नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 1 घंटा ही मिला, 1 घंटा में कितना ही बात कर लूं मैं। सो आपसे हम रात के 9 बजे मिलने वाले हैं और ढेर सारी बातें करेंगे, अच्छे गाने भी आप अच्छे प्ले करते हो। थैंक यू सो मच जी, इशरत जी आपने इतनी हमारी तारीफ कर दी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।

ये शाहजहान जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं. हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप बताइए कैसे हैं. आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे, मजेदार होंगे और गर्मी में पानी की बोतल अपने पास रखिए, पानी पीते रहिए, पानी पीना बहुत जरूरी है. चलिए जी गाने की तरफ बढ़ते हैं और रीना लेती हैं से फुर्र होने की इजाजत, क्योंकि रात को 9 बजे भी आना है गाइज. ढेर सारी बातें करनी है आप सभी से और ये गाना भी बहुत प्यारा है, सो इस गाने को एंजॉय करिए. बाय.

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026।

0: दबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
5: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह, घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
4: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्ची की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: फिर भी नहीं करेंगे उसे।
6: हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन
7: मैं नहीं जाऊंगा, भागता है मेरा।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ शाम शानदार शो में। आप सोच रहे होंगे कि रीना जी कैसे आ गई हैं। अरे अरे, वो तो हमने अपने शो के लिए आप सभी को बाय बाय टाटा बोला था, लेकिन अब फिर से आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। हां जी, ढेर सारी बातें करेंगे, बस आप आर्जो रीना के साथ यूं ही कनेक्ट रहिए ना।

0: देव।
1: हाँ जी, बहुत प्यारा आपने गाना सुना था आपके जिंदगी में, यानी कि सो आज मेरा शाम शानदार शो में आप सभी से एक क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपने बताना है कि अगर आपके जिंदगी में है कोई जिसे आप देखो ना तो चैन नहीं आता है, तो आपके जिंदगी में है ऐसा कोई तो हमें मैसेज करके बताइए। नंबर है 9837896896 पर, और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: विशेष ट्रेनें और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन 22 मई से शुरू होगी मकानों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त शहरी और ग्रामीण चिकित्सा स्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। तेज गर्मी से वन्य जीवों को बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क के उपनिदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी में शेरों के लिए एसी और खस की चटाई का प्रबंध किया गया है।
1: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। जो भी ब्रीडिंग वाली शेरनी है उसके नवजात बच्चे रहते हैं, शावक रहते हैं साथ में, उनको एसी के माध्यम से उनके कमरे का तापमान मेंटेन किया जाता है।
0: गर्मी और लू से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में भी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कानपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधान ने ऐसे नेटवर्कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिसमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचना पर तुरंत रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और होल्डिंग एरिया बनाए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की व्यवस्था के अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। परीक्षा की जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 6:15 बजे लखनऊ से कर 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
3: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsoneair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि गणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा, जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो।
4: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
0: प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी। नई उड़ान सेवा शुरू होने से प्रयागराज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
5: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है। और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी, क्योंकि अभी उसका पूर्णतः वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी, तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होंगी मकानों की गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
7: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
6: अरे वाह।
7: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
6: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
8: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
9: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
10: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
11: कॉल 8826213131।

0: अशांतिन के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कानूनी अधिकारों के बारे में, यानी कि हमारे बुजुर्ग समाज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन कई बार उन्हें अपने ही अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है।
3: थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
3: देखिए मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है। और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
2: सही
3: का, तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
2: बिल्कुल सर, तो चलिए इस सिलसिले को हम शुरू करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सीनियर सिटीजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है?
3: देखिए कानून के बारे में जानने से पहले मैं पहले अपने जो हमारे समाज में जो इस समय बुजुर्गों की स्थिति है उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। अधिकतर देखा गया जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन है उनको मोस्टली एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है आजकल के यूथ।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, उनको बिल्कुल किसी भी चीज की भरण पोषण की आवश्यकता है या कोई हेल्प चाहिए उनको इग्नोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा, हमें हमारे पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, हमारा भी दायित्व है कि अगर वो इस एज में है तो
2: उनकी सेवा करें,
3: सेवा करें हम भी। और भारत में सीनियर सिटीजन्स के अगर हम अधिकारों के लिए बात करते हैं, सुरक्षा के लिए उनकी बात करते हैं, तो मुख्य रूप से एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। ये कानून के तहत बच्चों या परिवार के सदस्यों के अपने माता पिता की देखभाल के लिए भरण पोषण का अधिकार है। अगर कोई जो भरण पोषण अपने माता पिता का नहीं कर रहा है, जैसे अधिकतर घर में देखते भी है कि भाई बच्चों की शादी हो जाती है तो वो अपना
2: अलग रहने की कोशिश करते हैं
3: और माता पिता को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, और उस समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती है सीनियर सिटीजन्स को, तो उसके लिए भी उनके पास राइट्स है, वो कोर्ट में वाद दायर करके उनके मेंटेनेंस इत्यादि मांग कर सकते हैं भरण पोषण की।
2: बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है हमारा सर, अगर बच्चों के द्वारा माता पिता की देखभाल नहीं की जाती तो बुजुर्ग क्या कर सकते हैं?
3: देखिए ऐसी स्थिति में आप किसी भी लीगल लॉयर की एडवोकेट की हेल्प लें, उसे पूरी बात बताएं, और ऐसी स्थिति में आपको जो है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में आप शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल बच्चों को आदेश दे सकता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। लोकल आप SDM कोर्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, DM के यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कानूनी विधि हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने बच्चों से मदद मांग सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रत्येक बच्चे को खुद ही आगे आके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।
2: जिस तरीके से हमें माँ बाप जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े करते हैं, वही हमारा दायित्व है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।
3: करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उसी स्थिति में थे कि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था।
2: बिल्कुल सर, और इनफैक्ट तो हम भी उस एज में आने वाले ही एक टाइम।
3: बिल्कुल, जैसा आप बीज
2: वैसे ही फल मिलेगा,
3: फल मिलेगा आपको।
2: बिल्कुल सर। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
3: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है लोकल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आवेदन करके आप जो है मांग कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग अपना खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा है तो वह अपने बच्चों से कानूनी वारिसों से भरण पोषण की मांग कर सकता है।
2: श्रोताओं आपको जो ये हमारी बात है आई होप कि बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपके भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837869689। यानी कि अगर किसी बुजुर्ग को उनके ही घर में जबरदस्ती निकाल दिया जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए?
3: देखिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या कोई जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करे, तो सबसे पहले तो आप 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएं। पुलिस आपकी तुरंत हेल्प करेगी। सीनियर सिटीजन एक्ट में भी ये आपको अधिकार दिया गया है। पुलिस आपकी तुरंत सहायता करती है। नजदीकी थाने या चौकी पे जाके अपनी पूरी बात बताएं। रिटन में अगर कंप्लेन करने को वहाँ पे पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं तो लिखित में अवगत कराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तुरंत किसी लीगल सलाहकार से बात करके ट्रिब्यूनल में अगर आप केस डालना चाहते हैं तो आप केस भी डाल सकते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी।
2: और बहुत से बुजुर्ग है सर, उनके पास फोन नहीं होते तो वो कैसे पहुंच सकते हैं?
3: देखिए, नजदीकी थाने में तो आपको पता होता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका मित्र है या संबंधी है तो आप तुरंत उसकी मदद मांगी कैसे भी करके, लेकिन सूचना आपको पुलिस को देना जरूरी
2: पहुंचाना जरूरी है
3: तुरंत।
2: चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं?
3: जी बिल्कुल उठा सकते हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग अपनी संपत्ति को देते समय कुछ शर्तें रख सकते हैं। अगर उन शर्तों का पालन के वारिसान नहीं करते हैं तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द भी कर सकते हैं कानूनी।
2: बिल्कुल।
3: तो लेकिन जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखित में होनी चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रॉपर

0: और उसकी वो फुलफिल आपके वारिस नहीं करते, तो आप उस चीज को लेके भी आप जो भी आपने कोई भी उनको फेवर दिया तो उस पॉइंट पे आप उनको रद्द भी कर सकते हैं।
1: ओके सर, क्या सरकार सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अदालत या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करती है?
0: हाँ बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को मुख्य रूप से प्रायोरिटी पे सुना जाता है। अगर हम कोई भी बात दायर करते हैं तो उनके लिए एक जो है कोर्ट का भी जो है अलग ही एक नजरिया रहता है। और मुख्य रूप से जो ये हमारी सरकार की नीति है या हमारी जुडिशरी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता प्रथम पायदान पे दी गई
1: दी जाती है। सीनियर सिटीजन को सरकारी योजनाओं में कोई विशेष सुविधाएं मिलती हैं?
0: सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी सुविधाएं काफी दी गई हैं, जैसे आप सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए पेंशन है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी है, यात्राओं में छूट दी गई है, उनके सामाजिक योजनाएं कई सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि वो अपना जीवन यापन सुरक्षित और सम्मान ढंग से कर सके।
1: बहुत अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बुजुर्ग के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो जाए तो क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, बुजुर्गों को सबसे बड़ी चीज है कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है वो सॉफ्ट टारगेट समझता है, क्योंकि इस एज में एक तो बुजुर्ग ज्यादा जो है सोचने विचारने की शक्ति थोड़ा सा उनकी
1: कम हो जाती है,
0: शरीर भी थोड़ा दुर्बल हो जाता है,
1: मतलब एनर्जी पावर थोड़ा लो हो जाता है।
0: क्रिमिनल व्यक्तित्व के लोग हैं वो सॉफ्ट टारगेट उनको लगता है कि वो बुजुर्ग को बनाए। अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप तुरंत जो है पुलिस में लेके शिकायत दर्ज कराएं, कानूनी सहायता आप लीजिए। कानून बुजुर्ग को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए ही सख्त प्रावधान कानून के तहत बने हैं, और बुजुर्गों की जो शिकायत है वो बिल्कुल प्रथम पायदान पे जाके सुनी जाती है पुलिस अधिकारियों द्वारा, तो निश्चित तौर पे आपको तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए।
1: क्या बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना कानूनी अपराध है?
0: जी हाँ, बुजुर्गों के साथ कानून अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है कोई, तो ये कानूनन अपराध है। आमतौर की डेली दिनचर्या में हम देखते हैं कि अगर हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं या पड़ोस में ही होते हैं तो हम किसी बुजुर्ग को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, धमका देते हैं, तो ये भी क्राइम है अपने आप में।
1: अच्छा, मतलब कोई धमका रहा है, कुछ गलत
0: तो
1: बोल रहा है
0: आप किसी को भी आप ऐसे अगर आप बोलते हैं बुजुर्गों को, तो खास तौर पे अगर आपने कोई भी ऐसी अपशब्द बोल दी तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, और खास तौर पे जो है पुलिस के आला अधिकारियों को जुडिशरी की तरफ से भी साफ इंस्ट्रक्शन है कि बुजुर्गों का, बच्चे और बुजुर्गों दोनों के लिए अगर कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत तत्काल लीगल एक्शन लिया जाए उसके।
1: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, हमें किसी के बारे में बोलने का कोई राइट्स?
2: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए टैलेंट हंट योजना हौसलों की उड़ान का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी पुरानी स्ट्रीट लाइट को हटाकर स्मार्ट एलईडी लाइट लगाने का निर्णय लिया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा, दिल्ली में 255 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे का निस्तारण किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक सहायक सतर्कता अधिकारी और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ अधिकारी को गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को विश्व तीरंदाजी महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल समिति का सदस्य नामित किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं के लिए टैलेंट हंट योजना हौसलों की उड़ान 2026-27 और इसके डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को पहचान देना, उन्हें निखारना और आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
3: मीडिया को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना की शुरुआत दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से की जा रही है, जिसमें 25,000 से अधिक युवा भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि गायन, नृत्य, रंगमंच, ललित कला, डिजिटल कला, वाद्य संगीत और संगीत संयोजन सहित 7 विधाओं में युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 16 से 35 वर्ष तक के युवा बिना किसी शुल्क के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर अपनी वीडियो एंट्री भेज सकेंगे।
4: सरकार युवाओं के गली मोहल्लों तक पहुंचेगी और उन तक अपनी इस प्लान को लेके जाएगी जिसका नाम हौसलों की उड़ान दिया गया है। एक भी

0: का खर्च नहीं करना है, ना रजिस्ट्रेशन में ना किसी और चीज में। सरकार अपना पोर्टल लॉन्च करेगी, उसके साथ अपने फोन नंबर देगी। उस पोर्टल पे दिल्ली के 16 साल से लेकर के 35 साल के युवा रजिस्टर करेंगे, अपनी वीडियोस वो शेयर करेंगे। एक ज्यूरीज का पैनल पूरा बैठेगा, वो उनको शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट होने पे पूरी दिल्ली में 35 जोन बनाए जाएंगे।
1: इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली क्रिएटिव कैपिटल और यूथ कैपिटल के रूप में उभर रही है। श्री मिश्रा ने कहा कि हौसलों की उड़ान युवाओं को अपनी कला और रचनात्मकता को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश का पालन करते हुए दिल्ली सरकार में सभी मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी सप्ताह में 2 दिन घर से काम कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मंत्रालय के सभी लोग कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए नागरिकों को प्रेरित कर रहे हैं।
3: वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया गया है हफ्ते में 2 दिन दिल्ली सरकार में, और उसी का सब लोग पालन कर रहे हैं। ज्यादातर मंत्री और अधिकारीगण वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बाकी दिनों पे भी सार्वजनिक यातायात का उपयोग कर रहे हैं या ईवी का उपयोग कर रहे हैं या सिंगल कार में जा रहे हैं। जो लोग पहले बड़े बड़े सुरक्षा के काफिले के साथ भी चलना पड़ता था तो एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। मैं भी अपने घर से ही काम कर रहा हूं और ज्यादातर मीटिंग हमारी ऑनलाइन है। बहुत आवश्यकता पड़ रही है तो अधिकारीगणों को यहीं पर ही बुलाकर इलेक्ट्रिक कार से आए, कार पुलिंग करके आए और महत्वपूर्ण फाइलों को घर से ही निपटाया जाए, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
2: श्री मिश्रा ने बताया कि मेट्रो मंडे अभियान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
3: मेट्रो मंडे में हमने देखा कि जनता की बढ़ चढ़ कर भागीदारी थी, इसी कारण मेट्रो को अपनी ट्रिप्स भी बढ़ानी पड़ी और डीटीसी को अपनी फीडर सर्विसेज भी बढ़ानी पड़ी और सड़कों पर ट्रैफिक भी कम दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है धीरे धीरे ये लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है।
2: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII की दिल्ली राज्य परिषद 2026-27 कार्यकाल के लिए आयोजित दूसरी बैठक में शामिल हुए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: बैठक में मंत्री कपिल मिश्रा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार 50% उद्योग भागीदारी के साथ दिल्ली पर्यटन बोर्ड गठित करने की दिशा में कार्य कर रही है। श्री मिश्रा ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत आधुनिक मंडियों के विकास, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के आयोजन तथा कौशल विकास केंद्र स्थापित करने में CII से सहयोग का आग्रह किया। श्री मिश्रा ने यह भी आश्वासन दिया कि दिल्ली में बड़े आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर संभव सहयोग देगी। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी पुरानी स्ट्रीट लाइट हटाकर स्मार्ट LED लाइट लगाने का निर्णय लिया है। लगभग 473 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इसकी मंजूरी दी गई है। ये निर्णय व्यय वित्त समिति की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में लिया गया। इन स्ट्रीट लाइट्स की कुल संख्या लगभग 96,000 है। नई स्मार्ट LED लाइट्स लगाने से दिल्ली में बेहतर रोशनी, ऊर्जा बचत और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित होने की उम्मीद है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय राजधानी का लैंडफिल रेमिडिएशन मॉडल एक मिसाल बनकर उभरा है। विज्ञान भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: बैठक के दौरान शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे लैंडफिल रिमेडिएशन कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल स्थलों पर अब तक 255 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे का बायो माइनिंग के माध्यम से निस्तारण किया जा चुका है। इससे लगभग 75 एकड़ भूमि दोबारा उपयोग योग्य बनी है। श्री सूद ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 में कचरा प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर लगभग 20,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार पुनः प्राप्त भूमि पर 5 नए एकीकृत ताजा अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
2: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सभी 12 जोन के अधिकारी और कचरा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां शामिल हुई। महापौर ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, उन्होंने अतिरिक्त संसाधन तथा मशीनरी तैनात करने के निर्देश दिए। श्री वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने हर वार्ड के लिए एक सफाई योजना बनाई है और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे अपने संसाधनों और मशीनरी को इस योजना के हिसाब से इस्तेमाल करें ताकि सफाई के स्तर पर सुधार देखा जा सके। महापौर प्रवेश वाही ने आज करोलबाग के राजेंद्र नगर क्षेत्र का निरीक्षण कर सिंधी पार्क में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। महापौर ने पार्क में विकसित किए जा रहे वॉकिंग ट्रैक को आधुनिक, सुरक्षित और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने पर बल दिया। वहीं मंगल बाजार रोड क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए श्री वाही ने दिल्ली जल बोर्ड की खुदाई के बाद सड़क मरम्मत में देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के एक सहायक सतर्कता अधिकारी और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार आरोपी सहायक सतर्कता अधिकारी पर एक पूर्व उपनिदेशक से सतर्कता मामले में अनुकूल जवाब भेजने के बदले 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। बाद में सौदा 3 लाख रुपए में तय हुआ। ब्यूरो ने बताया कि इस महीने की 18 तारीख को इस मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी एमटीएस कर्मचारी के माध्यम से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। एक रिपोर्ट।
6: इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। ये प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें रील्स, AI आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल है। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र मेला भारत टेक्स 2026 का आयोजन इस वर्ष 14 से 17 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने आज आगामी वस्त्र प्रदर्शनी के अनुरूप भारत टेक्स मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री राव ने कहा कि मोबाइल ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खोज के जरिए प्रासंगिक उत्पादों, आपूर्तिकर्ताओं और स्टॉल के स्थानों को तलाशने में विक्रेताओं और प्रदर्शकों के लिए मददगार होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोला गया। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मधुमक्खियों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का मूक योद्धा बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि मधुमक्खियां पौधों के परागण, जैव विविधता की सुरक्षा और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि मधुमक्खियों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर पड़ सकता है, कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है और खाद्य सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आवासों के लगातार नष्ट होने से मधुमक्खियों का अस्तित्व संकट में है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मधुमक्खियां पर्यावरण संरक्षण, कृषि उत्पादकता और जैव विविधता की महत्वपूर्ण संरक्षक हैं। उन्होंने बताया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 2017 में शुरू किए गए हनी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक देश भर में 2,46,000 से अधिक मधुमक्खी बक्सों और मधुमक्खी कॉलोनियों का वितरण किया है। राष्ट्रीय राजधानी में 28 मई से 1 जून तक आयोजित होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट और भारत अफ्रीका मंच सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने आज पूर्ण अभ्यास आयोजित किया। इसके अंतर्गत आज दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई। यातायात पुलिस के अनुसार रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग दोनों दिशाओं में आवागमन सामान्य रूप से खुले रहे, वहीं एसपी मार्ग और मथुरा रोड प्रभावित रहे। भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी का सदस्य नामित किया गया है। श्री सचदेवा वर्ष 2008 से पहले दिल्ली तीरंदाजी संघ और बाद में भारतीय तीरंदाजी संघ में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सक्रिय रूप से कार्य करते रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अब गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कल दिल्ली में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए टैलेंट हंट योजना हौसलों की उड़ान का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी पुरानी स्ट्रीट लाइट को हटाकर स्मार्ट एलईडी लाइट लगाने का निर्णय लिया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा, दिल्ली में 255 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे का निस्तारण किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक सहायक सतर्कता अधिकारी और एक मल्टी टास्किंग स्टाफ कर्मचारी को गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने कल दिल्ली में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को राष्ट्रमंडल खेल समिति का सदस्य नामित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
7: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
8: अपने बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं, तो फिर आप मेरा नाम सुन यहाँ चले आए हैं, तो फिर देख लीजिए इश्क में हारा ऐसा दिखता है। इसके आगे कि अपने शहर मुरादाबाद के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जब अब भी तेरी याद में है तो क्यों तेरे लिए सबसे बाद में है, हम जब अब भी तेरी याद में है तो क्यों तेरे लिए सबसे बाद में है, खुशी होगी तुम्हें ये जानकर हम तेरे ही शहर मुरादाबाद में।
9: हाँ जी, कैसे हालचाल है, गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है एंड आई रियली होप सब बढ़िया ही होंगे। देखो यार, शाम होते होते ना मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है यार, काश कोई शेर व शायरी सुना देता तो नींद थोड़ी अच्छी आ जाती। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि शेर व शायरी सिर्फ नींद के लिए सुनी जाती है, नहीं भाई, ये ना बिल्कुल सुकून देती है। शेर व शायरी जो होती है ना भाई, उसकी वाइब ही अलग होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो मैंने सोचा इस बात को जरा थोड़ा सा आज और बढ़ाते हैं, हालांकि नए रूप में लाने की कोशिश की है और कुछ ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में अपने साथ। हालांकि इनको आपने पहले भी सुना है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज वो कुछ नया लेकर आए हैं और मेरे साथ तो आई थिंक फर्स्ट टाइम होने वाला है उनको और मेरा कॉन्वर्सेशन, तो आई एम सुपर हैप्पी। और साथ में हमारी हवा हवाएं, आई मीन टू से अखिल भैया भी, जो अपने लैपटॉप में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं भाई, मतलब ही इज अ बिजनेस मैन यार, बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, वार्म वेलकम करेंगे। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में राघव जी। राघव भाई, बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, कैसे हाल चाल है आपके?
8: थैंक यू आनंद जी, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर?
9: मैं बढ़िया हूँ सर, एंड डोंट कॉल मी सर, हम सब ऐसे भाई भाई वाले हैं और एक महफिल जमाने आए तो यहाँ पे कोई नहीं, कोई आप नहीं, मतलब एक फ्रेंडली माहौल बनना चाहिए यार।
10: कोई क्योंकि मैम भी नहीं है, क्योंकि सर ही सर हैं।
9: हाँ मैम नहीं है, नहीं मेरा सर वैसे सही है। ओके ओके,
8: मैम का तो अभाव ही है जीवन में सर।
9: क्या बात है। तो राघव जी, थोड़ा सा अपने बारे में प्रो दीजिए भैया।
8: आई थिंक मुझे पहले भी काफी लोगों ने सुन रखा होगा।
9: एब्सोल्युटली
8: आरजे आनंद तो आप हैं ही, आरजे राज जी जो हैं उनके साथ में रहता था, हमारी जुगलबंदी रहती थी पोइट्री की।
9: बिल्कुल बिल्कुल।
8: और मेरा नाम राघव गुप्ता है, शहर बात से बिलोंग करता हूँ, पेशे से वकील हूँ और आज शाम आपकी खिदमत में।
9: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ यार, आपने बताया आपका प्रोफेशन कुछ और है, वकील, तो मतलब वकील लोग किस लड़ते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, ये मुझे पता नहीं था यार, गलती से कहीं अगर कुछ लिख दिया, लिखने की जगह कुछ दिल की बात लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगा।
8: ऐसा है सर, जो दलीलें जज के सामने पेश कर रह जाती है वो शायरी के तौर पर कह देते हैं।
9: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा पहले आपका इंटरव्यू ले लूँ, उसके बाद शुरू करेंगे सिलसिला। ये आपको आया कहाँ से, मतलब कि यार मुझे ये शेर व शायरी में भी करना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप लॉ कर रहे हैं आपका तो सारा फोकस वहाँ होना चाहिए, लेकिन ये वाला कैसे मतलब हुआ, पहले ये आया या पहले लॉ आया, मेरे को ये जानना है।
8: नहीं नहीं, पहले मैंने लिखना काफी समय से ही शुरू कर दिया था।
9: अच्छा।
8: मतलब 10th क्लास के बाद जब गैप मिलता है आपको, रिजल्ट का जब वेट होता है, तभी मैंने पोएम्स लिखना शुरू कर दी थी।
9: अरे वाह।
8: लेकिन फिर मैं पहले बीच में रैप सॉन्ग्स भी लिखे और उसके बाद फिर मैं पोइट्री की तरफ शिफ्ट हो गया, जो कि काफी मुझे सुकून देती है।
9: अरे वाह, बहुत।
8: और अगर देखा जाए तो कि मेरी मम्मी को पढ़ने की आदत काफी है, वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ती है।
9: ओ, वाव।
8: तो पुरानी किताब वो एकदम छोड़ती नहीं है हिंदी की, तो मुझे वहां थोड़ी आदत लगी।
9: मतलब इंस्पिरेशन मम्मी से मिली है, थोड़ा सा बैकग्राउंड कह सकते हैं वो पढ़ने पढ़ाने वाला।
8: बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे दादा तो उर्दू और हिंदी दोनों जानते थे।
9: अरे वाह, क्या बात है।
8: उनको काफी शौक था शायरी गजल सुनने का।
9: तभी आपके तलफ्फुज़ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, हम भी हिल रहे हैं आज बैठे बैठे। चलो कुछ नया सीखेंगे। तो राघव भाई थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से बताया। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि यार बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिनका दिल टूट जाता है या थोड़े से जो प्यार श्यार करते हैं वो कुछ ज्यादा शेर शायरी करते हैं, क्या ये सच बात है?
8: देखिए अगर हम गजल की और शायरी की बात करें तो इनिशियली इसकी शुरुआत लड़की की तारीफ करने से हुई थी।
9: ओके,
8: ठीक है। किसी आप कन्या की तारीफ कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका की तारीफ, अपने आप की आप तारीफ कर रहे हैं।
9: जी,
8: शुरुआत वहां से हुई थी। फिर उसके बाद उसको अलग अलग, आप ये कह सकते हैं अलग जोन में उसको बांट दिया गया।
9: ऑलराइट, कहीं डिपार्टमेंट में शिफ्ट
8: कर दिया। जी, कहीं सियासत वाली बात कह दी, कहीं गुरूर वाली बात कह दी आपने, ठीक है, और कहीं परेशानी आपने झलका दी, इंसानी जो एक परेशानी है उसको झलका दिया। तो इस स्तर में बढ़ता गया। तो अब आज के टाइम पे ऐसी कोई ब्रांच नहीं है कि आप उसको छोड़ सके, ठीक है। जैसे पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं, ऐसे ही अब लिखने की अलग अलग शाखाएं, आप जिस मर्जी टॉपिक पर लिख सकते हैं।
9: 100%.
8: तो ये डिपेंड करता है लिखने वाले पे, वो किस तरह से किस बात को बयां करता है। बस ये है, एक फाइनल एम हर राइटर का ये रहता है कि वो सामने सुनने वाले तक पहुंच जाए।
9: वेरी गुड यार, एक काम करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लें भाई।
8: बिल्कुल बिल्कुल।
9: चलो जी, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। बातें चल रही है इतनी खूबसूरत आज की शाम, और ये महफिल और भी खूबसूरत होगी क्योंकि राघव जी हमारे बीच में है, अखिल भैया भी है, तो कुछ शेरो शायरी करेंगे, कुछ उनकी दिल की बात सुनेंगे। फिलहाल आप सुनिए ये दिल से जुड़ा गाना, लौट कर आते हैं थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन जी। राघव जी, आपका स्वागत करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में। आई एम श्योर आपको भी आनंद आ रहा होगा आनंद के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपके नाम के साथ ये महफिल सूट कर रही है बिल्कुल।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल तो सूट कुछ और नहीं कर रहा है, वो जो लैपटॉप लेके भैया ऑफिस में नाच रहे हैं ना भैया, भरतनाट्यम मत करो, हम आज शेर व शायरी सुनेंगे। सो आगे बढ़ते हैं राघव जी। अब जो है मैं चाहूंगा कि आप जब यहाँ पर आए हैं तो ऑफकोर्स आप खाली हाथ तो नहीं आते हो यार मेरे ऑफिस में, कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आते हो। तो आज की शाम जो है आप क्या लेकर आए हो मेरे लिसनर्स के लिए, हमारे एफएम मुरादाबाद के श्रोताओं के लिए, क्या आप सुनाने वाले हो?
1: जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक बहुत फेमस पोएट हैं
0: जी,
1: जवाद शेख
0: जी,
1: पाकिस्तान के हैं
0: जी,
1: उनकी कुछ लाइनें मेरे जहन में आ गई थी।
0: अरे वाह।
1: तो मैं अभी आपने जस्ट पूछा तो मैं उनको ही कहता हूँ कि
0: सो राघव भाई की जो बात है ना वो मैं डेफिनेटली पूरी सुनना चाहूंगा और जरूर सुनूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो हवा हवाएं हैं, इन्होंने कहा है भैया मेरा माइक रेडी है तो जरा मेरे को तुम थोड़ा सा बोलने का मौका दो। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए आप कैसे हैं?
2: धन्यवाद आनंद जी, आपने इतना बेहतरीन स्वागत किया है
0: जी।
2: हवा हवाई हमें बोल के बिल्कुल याद दिला दिया है कि एक आप ही हैं जिन्होंने नया नाम रख दिया है हमारा।
0: एब्सोल्युटली, बिकॉज आप कभी गाड़ी में, कभी गाड़ी के बाहर, कभी स्कूटी में, कभी अपने जंक्शन पे, कभी हमारे स्टेशन पे, तो इतने सारे बंदे, एक ही बंदा इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा होगा तो उसका नाम तो यही होना चाहिए यार भाई।
2: तुम नाराज हो तो ये दिल उदास है,
0: आय हाय हाय,
2: तुम पास हो तो हर लम्हा खास है।
0: अरे वाह क्या बात है,
2: तुम ही है ये जिंदगी मेरी, तुम बिन हर खुशी बेकार है।
1: वाह वाह
0: वाह वाह वाह, क्या बात है
1: सर।
0: तो ये खुशी किसके लिए बेकार है, भाभी जी के लिए या अपने लिए, आप किसके लिए बोलना चाहते हो?
2: कुछ तो सरप्राइज है ना, तो तुम तो यहाँ पे भी जो है
0: टांग खींच रहे हो।
2: हाँ, यहाँ भी
0: देखो ऐसी बात है, जब शेरो शायरी या पोइट्री चलेगी तो भैया उसमें तो पता चलेगा किसके लिए कौन क्या बोल रहा है।
2: दोस्तों और... मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, ये जो जग्गा जासूस है ना ये हमारा आनंद ही है।
0: नहीं देखो ऐसा है ना, मैं चाहता हूँ कि अंदर की बातें भी थोड़ी सी बाहर आ जाए, जब जब बात दिल तक पहुंच जाती है तो जुबा पे भी आ जानी चाहिए, क्यों राघव भैया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और का तो काम ही यही है।
0: एब्सोल्युटली यार। तो राघव भैया मैं थोड़ा सा आपसे भी सुनना चाहूंगा, आपकी तरफ हम शिरकत करेंगे, कुछ आप भी पेश कीजिए जनाब
1: जी। वो जो लाइन थी,
0: हाँ मुझे लगता है कि शायद आ गई है।
1: हाँ हाँ,
0: जहन में वापस,
1: बिल्कुल जहन में।
0: तो प्लीज हम उसका इजहार
1: कहते हैं कि
0: जी
1: आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं।
0: अरे वाह।
1: आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं
0: जी,
1: मगर ऐसा ना कहिए वफा कुछ भी नहीं।
0: अरे वाह।
1: मगर ऐसा ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं, आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर।
0: वाह।
1: आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे मगर इस ताल्लुक में अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं।
0: क्या बात है,
1: कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, हम के चलते चले जाते हैं पता कुछ भी नहीं।
0: क्या बात है,
1: हम के चलते चले जाते हैं पता कुछ भी नहीं। अब क्या मैं अपनी मोहब्बत का भरम भी ना रखूं, मान लेता हूं शख्स में था कुछ भी नहीं, और मैंने दुनिया से अलग रह के भी देखा जवाद, ऐसी मुजोर उदासी की दवा कुछ भी नहीं।
0: अरे वाह।
1: ऐसी मुजोर उदासी की दवा,
0: फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया,
1: बहुत ही बहुत मुझे पसंदीदा गजल लगती है जवाद शेख की। और एक आपको आज के टाइम का पता होगा, जो कोर्स चलता है वो सेमेस्टर वाइज चलता है।
0: करेक्ट,
1: ठीक है। और वहां मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैं तब नैनीताल में रहता था मास्टर्स डिग्री के लिए, तब मैंने ऑब्जर्व किया कि शहर पे कोहरे की चादर हो तो कुछ नहीं दिख पाता है, शहर पे कोहरे की चादर हो तो कुछ नहीं दिख पाता है, धूप आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है। आजकल की मोहब्बत के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा सेमेस्टर पूरा नहीं होता, इनका प्यार बदल जाता है।
0: अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। और एक्चुअली ये सच्चाई भी है राघव भाई, जो आपने बोला ये सच्चाई से रूबरू कराने वाली बात है
1: जी। मैंने भी कहा तो मैंने बदलते हुए देखा है।
0: बिल्कुल सही कहा,
2: वो ऐसे ही होता है, सेमेस्टर में कभी कभी बैग भी लग जाती थी मगर तब भी चल रहा है मामला।
1: बैग से याद आया, और उसी सेमेस्टर में ब्लॉक भी हो जाते थे, तब मैंने लिखा था कि खिड़की से झांक कर देखो दिख जाएगा आशिक तुम्हारा।
0: अरे
2: वाह,
1: खिड़की से झांक कर देखो दिख जाएगा आशिक तुम्हारा, बस आज के लिए अनब्लॉक कर दो, आज जन्मदिन है तुम्हारा।
0: क्या बात है, बहुत ही शानदार। मुझे लग रहा है कि आज राघव जी चुन चुन के आपके लिए शेर व शायरी लेकर आए। गाइस अगर आपके पास भी कुछ अच्छी थॉट है, अच्छी शायरी है, तो डेफिनेटली आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, एफएम मुरादाबाद की ऑफिशियल आईडी पे, एफएम मुरादाबाद 9.6 की ऑफिशियल आईडी है, वहां जाके आपको जो भी लगता है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप जरूर शेयर करें। तो राघव जी आगे क्या क्या कहती है आपकी शेर व शायरी?
1: आपने ये देखा होगा बहुत से लड़के या बहुत से प्रेमी अपनी प्रेमिका को पसंद करते हैं, तो अगर वो डिनाई करते हैं, सामने से प्रेमिका डिनाई करती है तो पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन एक मेरी कोशिश देखिएगा, मैंने लिखा कि मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो।
0: वाह।
1: मैंने ये कब कहा कि तुम एक दायरे में रहो, ये तुम्हारी मर्जी, तुम जिसके साथ में रहो वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना, वैसे तुम मेरे साथ भी घर बसा सकती हो जाना, मैं तो यही चाहूंगा तुम फायदे में रहो।
0: अरे
1: मैं तो यही चाहूंगा तुम फायदे में।
2: इन्हीं बातों पे एक बात याद आ रही है,
0: स्वागत जी, स्वागत है आपका।
2: मतलब थोड़ा ऐसा है, अटपटा सा है, मगर चलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सच्ची मोहब्बत चेहरे से नहीं होती। मतलब जो आजकल मोहब्बतें चल रही है ना
1: जी,
2: वो आजकल लाइक वाइक तभी मिलते हैं जब आपके सामने चेहरा बिल्कुल एकदम गोरा हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सच्ची मोहब्बत चेहरे से नहीं होती,
1: नहीं होती।
2: सच्ची मोहब्बत दिल से होती है, वो जो बिना कहे समझ जाए हर दर्द, वही तो असली हमदर्द होती है।
1: वाह
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। उस हमदर्द को अपने पास रखना थोड़ी देर, नहीं तो मुझे दर्द हो जाएगा आपकी शायरी सुन के। तो एक काम करते हैं गाइस, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर। आप सुनते रहिए आपकी शायरी का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एमएफएल, ऐसी जमती रहेगी, कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।

0: वंस अगेन वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में महफिल जमा रहे हैं राघव जी। राघव जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरे को दिमाग से आउट हो रहा है
1: जी, मैं राघव गुप्ता लिखता हूँ।
2: अच्छा गुप्ता जी, हमारे गुप्ता जी,
1: क्या देश के अच्छे नागरिक बनिए।
0: बहुत ही बढ़िया। और गुप्ता जी जब यहाँ पर पधारे हैं तो वो बढ़िया बढ़िया शेरो शायरी से जो है आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो गाड़ियों में अगर आप हैं गाड़ियों में तो वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ा लो, कुछ अगला और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे उनके चेहरे की स्माइल से लग रहा है कि कुछ तो तगड़ा सुनाने वाले हैं राघव जी।
1: एक बहुत कॉमन चीज आपने देखी होगी, अगर व्हाट्सएप पे हम या फेसबुक पर होते हैं तो सबसे पहले हम किसी की प्रोफाइल चेक करते हैं, तो डीपी जो डिस्प्ले प्रोफाइल है वो देखते हैं।
0: आजकल हालांकि उसका स्क्रीनशॉट लेना अब अलाउड नहीं है, अब आप ले नहीं सकते हो, बंद हो गया, सिर्फ अंधेरा आएगी, पिक्चर नहीं आएगी।
1: लेकिन डीपी अगर लेकिन अगर आप फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो डीपी दिख जाती है।
0: करेक्ट।
1: तो है कि इंसान दिल का कमजोर है मगर मकान पक्का बना लिया।
0: क्या बात,
1: इंसान दिल का कमजोर है मगर मकान पक्का बना लिया। वो जब मेरे साथ था तो सबसे छिपाया, वो आज जिसके साथ है उसे डीपी बना लिया।
0: अरे क्या बात,
1: आज जिसके साथ
2: है उसे डीपी। अब ये राज खोलिए दो।
0: लेकिन यार राघव जी, जो आपने बात बोली ये एक्चुअली बिल्कुल सच्चाई से रूबरू करा देती है। आपकी सारी बातें, सारी जितनी भी आप बातें बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि एकदम रिलेटेबल है। ऐसा लग रहा है कि आपने चीजों को सोच सोच के लिखा है। ये आपने खुद ने लिखा है?
1: जी बिल्कुल, मेरा ही लिखा
0: है। वाह क्या बात है, नहीं सकता ओरिजिनल है इसका मतलब।
2: बिल्कुल सही,
0: बहुत ही बढ़िया। अब और क्या कुछ स्पेशल सुनाने वाले हो आप?
1: और मुझे मालूम है हर कोई जिंदा रह जाता है
0: जी,
1: मुझे मालूम है हर कोई जिंदा रह जाता है जुदा होने के बाद किसी के बिना, जैसे तारे निकल आते हैं आसमान में चांद के बिना।
0: क्या बात,
1: मुझे आज उसका एक खत आया है जिसमें लिखा है, राघव मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना।
0: वाह,
1: राघव मैं खुश नहीं हूँ।
0: क्या बात है,
2: जी लिखना भूल गई वो उसमें।
0: यार लेकिन मानना पड़ेगा राघव जी, आपकी बातें और आपके अल्फाज एकदम मतलब दिल को छू जा रहे हैं। गाइस आपको भी मजा आ रहा है ना?
2: बहुत
0: ही बढ़िया। आप,
1: मुझे ऐसा लगता है फिर आपने भी कहीं ना कहीं स्टेज पे कुछ ना कुछ इनमें से जो मैंने कहा है वो कहीं ना कहीं आपने
2: इनके साथ
1: फेस किया होगा।
2: इनके साथ तो हर बार फेस करते ही आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, अब देखिए ऐसा होता है ना, जब आदमी बड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो वो चीजें उसके साथ धीरे धीरे चल रही होती है। क्यों राघव जी?
1: बिल्कुल,
0: समय के साथ हर किसी के साथ होती है।
1: बिल्कुल,
0: और ये जो समय है ना ये दोबारा नहीं आने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम में आपको जो चीज मिल रही है ना उसका आनंद उठाओ।
2: आनंद जो तुम्हारी
1: और आनंद उठाओ की बात से याद आया कि आपको ना हर चीज के लिए व्याकुल नहीं हो जाना है।
0: ये भी बात
1: जो जीवन में घट रहा है उसके पीछे आपको पढ़ने ही जाना है, उससे समझौता आपको करना ही होगा, अपना मन को आपको समझाना होगा,
0: समझाना होगा।
1: ठीक है, और इसीलिए शायद लिसनर्स के सामने हम हैं जो हमें सुन पा रहे हैं।
2: आनंद आनंद जी के मन की बात मैं थोड़ी सी पढ़ पा रहा हूँ। आनंद जी कहना चाह रहे हैं, रूठना भी जरूरी है मोहब्बत में,
0: अरे वाह,
2: तभी तो मनाने का मजा आता है।
0: अरे वाह,
2: जो बिना कहे समझ जाए दिल की बात, वही तो सच्चा हमसफर कहलाता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपके हमसफर से मैं आज ही बात करता हूँ। आपकी तरफ आना चाहूंगा जी, आप प्लीज कुछ सुनाइए बढ़िया सा। और यार माहौल वैसे इंटरेस्टिंग बना हुआ है, नो डाउट, बहुत अच्छा लग रहा है राघव जी। गाइस अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पर्सनली राघव जी से भी जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम आजकल बहुत वायरल हो रहा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा एक बार आप बता दें अपना इंस्टाग्राम भी, भाई जरूरी है
1: जी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यूजर नेम है adv.raghavgupta।
0: अच्छा मतलब अपना प्रोफेशन सब कुछ उसमें ऐड कर दिया आपने, शॉर्ट शॉर्ट।
1: मल्टीपल पेजेस नहीं बनाए, मैंने एक ही पेज बनाया।
0: वेरी नाइस यार, वेरी।
1: तो adv.raghavgupta, और अगर आप सर्च करेंगे एडवोकेट राघव गुप्ता से तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाऊंगा।
0: दैट्स वेरी नाइस।
1: वरना आप आनंद जी को मैसेज भेजिएगा, एफएम पर पढ़कर हमको बताएंगे जरूर।
0: अरे डेफिनेटली बताएंगे, उसके लिए आपको सुनना भी तो पड़ेगा।
1: मैं सुनता हूँ सर, मैं सुनता हूँ सर।
0: अब आप ये मत बोलिए, पड़ोसी भी सुनता है मेरा, इसलिए मैं आपको सुन।
1: ये सच बात है, मैंने आपको अभी ऑफ माइक भी बताया था। मैंने अभी आपको
0: ये एक दो बार और आपने बताया, हम कहीं शादी में हम मजे की बात पता है क्या है गाइस, इनकी बात रोक के कह रहा हूँ मैं, हम जब भी मिलते हैं किसी दावत में मिलते हैं, वैसे तो खाली में नहीं मिलते हैं। ये आई डोंट नो, ये हुआ है हमारे साथ राघव जी एक दो बार।
1: ये इत्तेफाक है कि जब भी मैं आपसे मिला हूँ तो आपने मुझे खाने का सौभाग्य प्राप्त कराया है।
0: इसका मतलब ये है कि आज हम खाने का सौभाग्य बिल्कुल आपको प्राप्त कराएंगे। आप आए हैं
2: जो पार्टी है वो आनंद जी जो है, मतलब
0: मैं भी नहीं दे रहा हूँ, वो हम शादी में मिल रहे होते हैं।
1: हमारा बॉन्ड ही ऐसा है ना,
2: दोनों का लिफाफा एक हो जाता है उस समय।
0: नहीं यार वो बात अलग है, नहीं ऐसा नहीं होता, राघव जी का अपना होता है, मेरा अपना होता है, वो बिल्कुल नहीं है। और
1: खाली अपनी अपनी है लिफाफा।
2: देखिए साहब कैसे आप सभी लोग सुन रहे हो, इस बात को कैसे छुपाया जा रहा है ये आप आज सब जान सकते हैं कि आनंद ने और गुप्ता जी ने दोनों ने कैसे इस बात को एकदम पानी डाल दिया।
0: बिल्कुल भैया, और आप जो है पानी डाल के आग मत बुझाओ, माहौल को गर्म ही रहने दो अभी। सो राघव जी अभी आपने बताया ना मुझे, एक दो शादियों में बताया था कि आपके पड़ोसी भी रेडियो सुनते हैं।
1: बिल्कुल, मैं जहाँ रहता हूँ टाउन हॉल जगह है मुरादाबाद में, तो वहाँ पर ही मेरा निवास है, उसके बराबर में एक परिवार है, तो वो मतलब मॉर्निंग में 8-8:30 के आसपास जब मैं 9 बजे करीब निकल रहा होता हूँ घर से ऑफिस के लिए, तब मैं सुनता हूँ कि आपकी आवाज़ आ रही होती है। तो मैंने एक बार कहा भी है, बराबर में जो पड़ोस में बड़े भैया हैं, तो उनको बताया था मैंने कि ये हमारे मित्र हैं और काफ़ी अच्छा बोलते हैं आरजे आनंद जी, ठीक है। तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आपको परिचित हूँ।
0: ऐसा होता है भैया ऐसा, क्योंकि जो लोग सुनते हैं ना जब आप उनको बताते हैं उनको लगता नहीं है थोड़ा,
1: पर वो डेली आपको सुनते हैं।
0: क्या
1: मॉर्निंग में वो डेली सुनते हैं, आप शाम को FM यूज करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है ना थोड़ा पुल होता है।
0: एब्सोल्युटली, ठीक है। और बंदे को अपडेट चाहिए होती है,
1: बिल्कुल
0: एकदम से। वो क्या होता है ना, न्यूज़पेपर खोलने का मन नहीं करता, उसने अपना ट्यून कर दिया और अपने काम काज में
1: वो, हाँ बिल्कुल, गृह कार्य करते हुए आपको सुन लिया, ये हो रहा है।
0: बड़ी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं राघव जी, हमें उस स्टूडियो से बाहर भगाने की इरादा है क्या?
1: नहीं,
0: मतलब
1: नहीं।
0: इतनी बढ़िया हिंदी आप बोलोगे तो कल ऐसा ना हो कि बॉस बोले बेटा आनंद तू बाहर, राघव जी तुम अंदर आओ, तुम्हारा टिकट जो है बाहर का है। मतलब इतना बढ़िया,
1: आप राघव गुप्ता देख के राघव चड्डा समझे क्या?
0: यार राघव चड्डा तो उनकी बात ही मत करो यार। चलो बैक टू पॉइंट यार, बातचीत के साथ साथ जो है
1: पॉलिटिकल टॉक्स,
0: समझदार है, समझ गए मेरी बात को। सो बैक टू पॉइंट, अब एक काम करते हैं, कुछ बढ़िया सा सुन लेते हैं राघव जी से, और मैं चाहूंगा कि यार हमारे लिसनर के लिए कुछ बढ़िया सा सुना दो यार, जो लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। और आजकल ना मुरादाबाद के अंदर एक समस्या बड़ी हो रही है जाम की, शाम को जब आप सड़कों में निकलेंगे तो तगड़ा जाम मिलता है, तो ऐसे में वो आपकी आवाज,
1: वो तो कॉमन है ना, शाम को तो जाम चलता ही है,
0: वो तो चलता ही है। ओ माय गॉड, समझ गया मैं, हाँ थोड़ा सा ना समझ हूं बट अब समझदार बन गया हूं मैं। हाँ तो कुछ सुना दो यार हमारे लिसनर्स के लिए बढ़िया,
2: पूरा बोल लेना। ट्रैफिक जाम
0: अखिल जी आपकी बातों ने जो है ना हमें भी थोड़ा सा पूरी बात कहना भुला दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि जब एक प्रेमी के अंदर दर्द होता है ना, और वो इस स्थिति में होता है या उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है वो, और भुला भी नहीं पा रहा है, तो उस एक स्टेज में लिखा था मैंने कि तस्वीर फेंकी नहीं जलाने की बात नहीं की, तस्वीर फेंकी नहीं जलाने की बात नहीं की, हिज्र के दिन भी हमने जुदाई की बात नहीं की, तस्वीर फेंकी नहीं जलाने की बात नहीं की, हिज्र के दिन भी हमने जुदाई की बात नहीं की, क्या इतने गैर हो गए हम तेरे लिए, करीब से गुजरे तो तूने बात नहीं की, करीब से गुजरे तो तूने बात नहीं की, और कोई कैसे कोई इतना करीब आ गया तेरे, तू तो कहती थी ना किसी से बात नहीं की, तू तो कहती थी ना किसी से बात नहीं की, और लग जाए सर के बल चोट हमें, लग जाए सर के बल चोट हमें, भूले तुझको जैसे कभी बात नहीं की, भूले तुझको जैसे कभी बात नहीं की।
2: बहुत ही बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रेमी को समझ नहीं आ रहा कि वो डोलो खाए या डिस्प्रेन। दर्द बहुत है,
0: क्या बात है। अखिल जी आप भी कुछ बढ़िया सा सुना दीजिए।
2: मोहब्बत की राहों में क्या क्या सितम सहते हैं, हम तो तैयार बैठे हैं साहब, आप जी, जी, बस बोलो सुना दो, हम तो एकदम
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सेवा में।
2: हाँ, गूगल वालों को लेके बिल्कुल सामने बैठे। मोहब्बत की राहों में क्या क्या सहते हैं, जो प्रपोज करते हैं वही ब्लॉक भी रहते हैं, जिन्हें प्रपोज कर दिया वही ब्लॉक हो जाते हैं।
0: अगली बार
2: वो कहती थी तुम ही हो मेरी दुनिया, अब वही स्टेटस लगाती है फीलिंग सिंगल अगेन।
0: चलिए मैं आपसे बाद में पूछूंगा कौन है जो आपके लिए सिंगल बैठी है। आगे बढ़ते हैं। तो श्रोताओं देखिए, राघव जी के साथ यानी राघव गुप्ता जी के साथ हमारी जो ये कॉन्वर्सेशन है वो चलती रहेगी, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे आके आप हमें DM कर सकते हैं। अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं बहुत ईजी है, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से आपको मिलता हूँ, डोंट फॉरगेट, वहां भी अच्छी चीजें आपके लिए चलती रहती हैं, तो फॉलो कीजिए, ऑफिशियल पेज मिलेगा FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से। कोई आपके आसपास है जो ऐसी शेरो शायरी करता है या कुछ बढ़िया लिखता है तो उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म खुला है, आप हमें इंस्टेंट DM करिए और हम जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, शाम हो रही है, आई नो दैट। आपकी जो शाम है वो और खूबसूरत बना रहे हैं मैं, साथ में राघव जी हैं, अखिल भैया हैं, और हम तीनों लोग मिलकर आपको थोड़ा सा प्यार वाला एहसास भी दिला रहे हैं। उनकी पोएट्री, उनकी जो शायरी है वो कहीं ना कहीं आपको फील दे ही रही होंगी, बाकी हमें भी फील आ ही रहा है यार। मतलब अब तो लग रहा है कि यार प्यार करना एक अलग बात है, लेकिन प्यार में जब दिल टूटता है उसकी फीलिंग अलग होती है। वैसे राघव भाई आपका क्या मानना है, लाइफ में कुछ लोग कहते हैं एक बार दिल जरूर टूटना चाहिए,
1: मुझे ऐसा
0: मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लाइफ में ना एक बार दिल जरूर तोड़ना चाहिए। मैंने क्या कहा है, वो डॉक्टर जो कहते हैं दिल में हड्डी नहीं होती, फिर उनसे भी मिलो। आपको क्या लगता है अखिल भाई, सच में
2: दिल टूटना तो नहीं चाहिए, दिल लगाना जरूर चाहिए लाइफ में एक बार,
0: लेकिन जब जो दिल लगाते हैं ना उसका दिल टूट भी जाता है।
1: देखिए मुझे ऐसा लगता है कृपा ना अलग अलग प्रकार की होती है जो भगवान आपके ऊपर देते हैं। आपको प्रेम होता है ये अलग प्रकार की कृपा है, और आपका दिल टूटता है अलग प्रकार की कृपा है। लेकिन अगर आप चाहे प्रेम में हो या दिल टूटा हो, आपको अपने आप को बनाना ही होगा। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप उसको अपने आप को डिमोलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है।
0: एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ कुछ लोग ना इतना सीरियस वाला प्यार कर लेते हैं कि वो एक ही बंदे में पूरी दुनिया बसा लेते हैं राघव भाई, और वो बाद में बड़ा उनके लिए बहुत तकलीफ वाला होता है।
1: और वो इसके आगे की अगर मैं आपको बात बताऊं, सामने वाले को और तकलीफ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई प्रेम है, ठीक है, एक फीलिंग तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे की लाइफ की केयर बहुत जरूरी है।
0: करेक्ट यार, मतलब मुझे लगता है कि देखो हम प्यार कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला अगर नहीं इतना इंटरेस्टेड है तो हमें भी हम उसे प्यार समझ के भी छोड़ सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: बुलाया जा सकता है, बट वही होता है ना कि कई बार ऐसा लगता है हम खुद भी परेशान हैं, कोशिशें करते हैं कि शायद चीजें सही हो जाएं, बट हमें पता है कि वो होंगी नहीं, उसके बावजूद भी हम मशक्कत करते रहते हैं कि शायद।
1: देखिए आपकी फीलिंग एक अलग साइड है, लेकिन दूसरे की जो सोच है या दूसरे का जो डिसीजन है उसकी रेस्पेक्ट एक बहुत जरूरी है।
0: गॉट इट यार।
2: पहली मोहब्बत की खुशबू भी अजीब होती है।
0: वाह।
2: दिल धड़कता है मगर बात नसीब होती है।
0: वाह वाह वाह।
2: वो नाम सुनते ही मुस्कुराना पड़ता है
0: जी,
2: क्योंकि पहली मोहब्बत कभी गरीब नहीं होती है।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तभी मैं कहूँ आपके पास इतनी बड़ी कार कैसे है, समझ चुका हूँ मैं। मतलब पहली मोहब्बत इनकी बहुत अमीर वाली थी, समझ चुका हूँ मैं अखिल भाई।
2: अमीरी,
0: अमीरी मैं कली भाभी से मिलता हूँ, मैं कली भाभी से मिलूंगा।
2: भाभी पे क्यों पहुंच जाते हैं,
0: जरूरी है ना इतनी सारी मोहब्बत।
2: तुम्हें मुस्कुराता हूँ अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं।
0: नहीं बहुत अच्छा लग रहा, वो बात अलग है, वो बात अलग है।
1: इस कन्वर्सेशन में भी ना भाभी जीत गई, डर दिख रहा है ना, भाभी जीत गई।
0: बिल्कुल सुन रही हूँ, नहीं पता है, डर तो है। आज घर पे आ जाओगे फिर शाम को तो सारी अमीरी और गरीबी एक साथ ही होगी।
1: तो आप
2: डर के आगे जीत है।
1: आरजे आनंद जी, अब आप इस एंगल से देखिए कि जो भाभी प्रेम करती है भैया से
0: जी,
1: वो कितना खुश हो रही होंगी ना।
0: करेक्ट,
1: उनका प्रेम तो जीत गया ना।
0: बिल्कुल, चलिए भाभी जी हमने आपकी भी तारीफ करी दी, और बाकी
1: लाइन सुनाने के लिए
0: मैं वही कह रहा था,
2: ये जो उनके पास जो घर में भाभी रहती है उन्हें मना
0: नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अभी ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, जो लोग अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, जो हस्बैंड अपनी बीबी के साथ जा रहे हैं, उनके लिए कुछ बढ़िया सो जाए।
1: बिल्कुल, मैं सारी सुंदर कन्याओं के लिए, और जो पति हैं अपनी पत्नी के साथ या प्रेमिका के साथ बैठे हुए, तो उनकी तरफ से
2: पति भी प्रेमिका के साथ बैठा दिए।
0: नहीं मतलब एक बार बताओ, शादी के बाद हमारी बीबी हमारी प्रेमिका नहीं हो सकती यार, आकर
2: गाड़ी
0: यार कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये तो गलत बात है यार।
2: ये गाड़ी जो है मतलब पहुंचाना चाहता
0: मैं आपकी बात में यहीं पे, मैं अखिल जी, अखिल भैया आपकी बात पे कहना चाहता हूँ। आपने बोला क्या आपकी बीबी आपकी प्रेमिका नहीं है,
2: अब आप
1: बताइए।
0: चलो राघव जी शुरू करते हैं यार, प्लीज यार।
1: एक बहुत सुंदर मैंने लाइन लिखी थी, वो आपने याद दिलाया बस, कि हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, हम एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर लाएंगे, तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे।
0: वाह,
1: तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे, मेरे शौक वैसे इतने खास तो नहीं, मगर हाँ हम तुम्हें अपना जरूर बनाएंगे। और मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने वाले, तेरी झूठी कॉफी को मुंह जरूर लगाएंगे, और कोई तस्वीर जमाने में उदासीन दिख गई तो फिर, तेरी चमकती मुस्कुराहट का हिस्सा उसमें लगाएंगे, और फूल लगाकर घर की रौनक नहीं बढ़ाऊंगा। आनंद जी, फूल लगाकर घर की रौनक नहीं बढ़ाऊंगा, हम तेरे दुपट्टे से अपना कमरा सजाएंगे।
0: आनंद जी मुझसे पहले ख्याल में खोया हुआ था यार,
2: तुम शायरी सुनते खो जाते हो ना।
0: अरे यार
2: मैं बस इनसे यही कहूंगा कि जी, जो अभी इन्होंने बात कही
1: मिट्टी के बर्तनों में हम चाय पीने
2: नहीं, नहीं मिट्टी के बर्तनों से पहले वाली बात जो इन्होंने स्टार्टिंग में ही बात बोली थी,
1: तेरे जन्मदिन की खुशी हम मनाएंगे।
2: तो ये अपना जन्मदिन भले ही भूल जाना शादी के बाद, मगर बीवी का जन्मदिन मत भूलना कभी भी।
0: कितनी बार याद रखा यार ये बता दो।
1: और सर इसके आगे बोल दीजिए,
2: लिया टैटू बनवा लिया
1: इसके आगे बोल दीजिए जनहित में जारी।
0: मैं आज इनका टैटू इंस्टाग्राम पे रिवील करता हूँ, हैवी यानी
2: भाभी के लिए कुछ नहीं बोले, भाभी के लिए मैं बोल देता हूँ।
0: अच्छा आप ही बोल दो,
1: हमारी भाभी के लिए
0: राघव जी मैं, अच्छा हमारी भाभी के लिए
2: जनरल भाभी
0: जितनी भी लोग ऑलराइट। तो राघव जी काम करते हैं और आप बाहर निकलते हैं, जूते अगर पड़े तो हम दोनों बच जाएंगे, बेटर यही है। तो आप
2: ये आनंद के ही बोल हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। भाभी का प्यार भी अजीब होता है,
0: अरे वाह,
2: डांट में भी मिठास करीब होता है, राखी सही पर खास होता है, घर में वो खुशियों का आकाश होता है।
1: क्या अलग एंगल पे मोड़ दिया सर।
0: नहीं समझदार है, मुझे पता है। अच्छा राघव जी मैं बस जाते जाते आपसे एक चीज पे बात करना चाहूंगा, मतलब अगर आप इसमें कुछ कह सको कि आजकल ना लोग रिश्ते दिल से नहीं, उनका वो फायदा देखकर रिश्ते निभाते हैं। अब जो है रिश्तों में फायदे ज्यादा हो गए और प्यार थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब जो जेन्युइन चीज मुझे लगती है अब जैसे आजकल सुपर
1: बेनिफिशियरी रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं।
0: करेक्ट करेक्ट वही वाला, तो उसके ऊपर कुछ अगर आप कहना चाहें मैं चाहूंगा, क्योंकि आजकल ये हो रहा है नो डाउट।
1: बिल्कुल ऐसा है, एक हमने लिखा था, देखता हूँ कितनी आपकी बात से बात पे, एक मैंने लिखा था देखता हूँ कितने आपकी बात पर फिट बैठता है कि
0: जी
1: हमें छोड़कर तुझको जो मुनाफा हुआ, हमें छोड़कर तुझको जो मुनाफा हुआ
0: जी,
1: दुगना करो ये शख्स फिर तुम्हारा हुआ।
0: क्या बात है,
1: दुगना करो ये शख्स फिर तुम्हारा हुआ, कैद रखिए अपनी निगेबानी में हमें, वसूल लीजिए अगर तुमको कोई खसारा हुआ।
0: क्या बात है,
1: कैद रखिए अपनी निगेबानी में हमें, वसूल लीजिए अगर कोई खसारा हुआ, कर लेंगे खुद को हम खत्म तेरे लिए, हमारे लिए तू शख्स इतना प्यारा हुआ, और बता हमसे ज्यादा ख्याल रखता है क्या, वो रकीब जो तेरा नया सहारा हुआ, वो रकीब जो तेरा नया सहारा।
2: बहुत
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और ये जो शेरो शायरी का सहारा ही आप हमें देते रहिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसी अच्छी अच्छी पोएट्रीज और शायरियां अपने दिल के जज्बात हमारे रेडियो श्रोताओं तक जरूर शेयर करते रहेंगे। आपको कैसे लगा राघव जी आकर स्टूडियो?
1: मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो जुगलबंदी हम तीनों की बैठी है बहुत अच्छा लगा।
0: नहीं आपकी और राज की तो बैठती रहती थी, बट आज थोड़ा सा चेंज हो गया है
1: जी। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आपने एकदम खट्टा मीठा एक,
0: वो तो हमारे अखिल भाई की क्रेडिट है इसमें, थैंक यू सो मच अखिल जी। आप सोचने जाते जाते भी कुछ चिपका दूं तो वो बात अलग है। फिलहाल अब हम इस रैप अप करेंगे अपने शो को,
1: तो जाते जाते बस इतना कहूंगा कि कैंडल पिघल रही है तुम कब आओगे, हमारे केक की मिठास तुम कब बढ़ाओगे, तुम्हारे बगैर ही गुजर रहे हैं जन्मदिन सारे, तुमने क्या सोच रखा है सीधे मौत पे ही आओगे। बहुत
0: बहुत ही बढ़िया राघव जी, थैंक यू सो मच जी। अखिल जी आप प्लीज कहिए।
2: मैं तो कहता धमाकेदार, बहुत ही बात एकदम, मतलब आपने गहरी सोच, मतलब दिल से एकदम गहरेपन से निकाल के कही है।
0: राघव जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि अगली बार भी आप अपने दिल के पन्नों से ऐसी ख्याल शेरो शायरी करते रहें और लाते रहें, और हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपने जो ये एक बहुत ही अच्छा अपना एक प्लेटफॉर्म चुना है बेसिकली, क्योंकि यार मुझे लगता है पढ़ना हर किसी को आता है लेकिन लिखना हर किसी को नहीं आता।
1: बिल्कुल सर,
0: करेक्ट, जो लिखता है वही एक कलाकार होता है, क्योंकि कॉन्टेंट किसी का चुरा के तो कोई भी पेस्ट कर देगा, लेकिन खुद से क्रिएट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
1: तो थैंक यू, और आरजे आनंद जी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और मैं थैंकफुल हूँ FM मुरादाबाद का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। हर मेरे को यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा प्लेटफॉर्म मुरादाबाद में है हमारे पास, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लिसनर से भी कि बने रहें, सुनते रहें 89.6 मेगाहर्ट्ज FM मुरादाबाद, और साथ ही जो भी कोई यहाँ पर सुनाना चाहते हैं, अपने आप पेश करना चाहते हैं, तो ओपनली आप आरजे आनंद जी से कॉन्टेक्ट कीजिए, और मेरी जगह एक दिन वो भी होंगे।
0: जरूर जरूर, हम तो चाहेंगे साथ में बिठाएंगे भाई, हो सकता है राघव जी भी आपके साथ बैठे और आप मिलके एक धमा चौकड़ी मचाओ। तो वही बात मैं भी अगेन रिपीट करूंगा, अगर आपके पास भी कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, स्पेशली शेर और शायरी का, आप लिखते हैं या आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आपका स्वागत है FM मुरादाबाद स्टेशन में। आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, FM मुरादाबाद 89.6 हमारी ऑफिशियल ID है, वहां जाके आप हमें बता सकते हैं आपकी जो भी आपके पास टैलेंट है, आप प्लीज हमें मैसेज कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कर

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: बलपुर ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं, ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
3: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आनंद, तुम बताओ तुम कैसे हो? इस गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
2: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
3: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
2: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
3: बिल्कुल सही।
2: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं, इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
3: और स्टूडियो में है ना तब भी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी, मिर्ची वाली धूप लग रही है।
2: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है, और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गाँव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गाँव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियाँ सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहां हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती हैं, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा। नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल, जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए।
0: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में, किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल,
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz से। तो श्रोताओं, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
8: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
9: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
8: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
9: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
10: कॉल 7500153841।

जी गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ। और समय की बात करूं तो 9:07 हो चुके हैं और आर्जेरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। श्रोताओं, तो आपने क्या करना है, बस आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। ओनली ऑन, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए कनेक्ट होना है गाइज। और जो भी आपके दिल की आवाज है, दिल की बात है, आप हमेशा शेयर कर सकते हो। देखिए, और शेयर करने के साथ साथ आपका फेवरेट कुछ है तो भी सुन सकते हो। आप समझ गए होंगे, देखिए श्रोता आप बहुत समझदार है और समझ जाते हैं, ये सारा काफी होता है। बस उसके लिए देखिए कॉल नहीं करना है आपने, सिर्फ मैसेज करना है हमें। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896 पर कॉल करना है। और मैंने आप सभी से 7 बजे पूछा था एक क्वेश्चन कि आपके जिंदगी में ऐसा कौन है जिसे देखकर आपको चैन करार आता है, तो उसी के साथ अपना मैसेज भेजेंगे। और जो भी आप सुनना चाहते हैं बिल्कुल हमें बता सकते हैं, किसी का नाम मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इन रीना इंतजार करिए, फटाफट मैसेज करिए गाइस। फिलहाल ये गाना बहुत प्यारा।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ। और समय की बात करूं तो 9:12 हो चुके हैं और आप आज रीना के साथ कनेक्ट हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोता, आगे बढ़ते शो में, क्योंकि शाम जैसे जैसे ढलती है ना, वैसे ही बस हमें किसी की ना याद आने लग जाती है। और इतनी ज्यादा याद आती है कि बस समझो, एक बार बस उसकी झलक, आवाज अगर सुन ले तो बस उसी में दिल खुश हो जाता है। सो मेरे पास ना एक बहुत ही प्यारा सा ख्याल है। उसने उसके आने से पहले वो मुस्कुरा रही थी, वो जिंदगी में आया तब भी वो मुस्कुरा रही थी, फिर वक्त बीता उसने मुस्कुराना बंद कर दिया, फिर वो चाहा अब वो पहले जैसा भी नहीं रहा और उसे अब हमेशा के लिए मुस्कुराना बंद कर दिया। उसने हमेशा के लिए मुस्कुराना बंद कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी के जिंदगी में जाते हो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो उस मुस्कान को हमेशा बरकरार रखें, उसे बस ढलने ना दें। क्योंकि जब वो ढलती है ना, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि उसके ऊपर बीतती क्या है। फिलहाल आप अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट हैं और एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया मेरे पास, तो चलिए उनको भी शामिल करते हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं

इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन ये लिखती हैं, एक बार मोहब्बत होती है, एक बार मोहब्बत होती है, 100 बार फसाने होते हैं, उन्हें नींद कहाँ फिर आती है, जो लोग दीवाने होते हैं। क्या बात है जी, इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है, इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दूसरा पहले के दौरान किया है, मतलब जो इनका कहना है कि जो दूसरा प्यार होता है वो पहले के जहाँ कहाँ होता है, छोड़ कर तुमको तुम्हें चुना है, यानी कि जो पहले प्यार को छोड़कर दूसरा तुम्हें चुना है, हैरत है, यानी नुकसान पे नुकसान किया है उसने। अरे अरे क्या बात है जी, बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है आपने, और मैं बस यही चाहूँगी, बस आर्जेरीना के साथ अपना जो भी संदेश है, आपकी दिल की आवाज़ है, उसको ज़रूर भेजिए आर्जेरीना के साथ, हम हैं ना जी आपकी मैसेज शामिल करने के लिए।

सो चलिए एक और मैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला मैसेज आता है यानी कि पंजाबी कॉलोनी से कनेक्ट होते हैं विजय राठौर जी। गुड इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग सर। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और इन्होंने लिखा है, घूमता हूँ दर बदर, आवारा नहीं हूँ मैं। क्या बात है। घूमता हूँ दर बदर, आवारा नहीं हूँ मैं, हालत का मारा हुआ हूँ पर, हालत का मारा हुआ हूँ पर बेचारा नहीं हूँ मैं। क्या बात है जी। बहुत प्यारी लाइन लिखी आपने। और इन्होंने आगे लिखा है, हंस मत ए जिंदगी, हंस मत ए जिंदगी, मुझे गिरता हुआ देखकर फिर संभल जाऊंगा, अभी हारा नहीं हूं मैं। वेल डन। बहुत प्यारा लाइन लिखी है सर आपने। बहुत प्यारी, ये सुंदर सी प्यारी सी लाइन है जो कि वो इंसान वही लिख सकता है जिसने कभी प्यार किया हो। जिसके दिल में है भैया शायराना, तो वो आप हमें हमारे तक पहुंचाइए। आरजेडीना है आप सभी के साथ कनेक्ट, सो आप सभी के मैसेज जरूर शामिल करेगी। फिलहाल अगला गाना भी बहुत प्यारा है और ये इश्क की बाजिया, सो इस गाने को एंजॉय करते हैं।

0: बसंतीन के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लविना रेस्टोरेंट, कांट रोड।

क्या बात है जी। हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं तो 9:23 हो चुके। अक्सर प्यार में ना हम ये सोचते हैं कि नाराज क्यों हो गया कोई, तो मैं आपको बताती हूँ, नाराजगी वही होती है जहां मोहब्बत होता है, और जहां नाराजगी नहीं है ना वहां मोहब्बत फीकी पड़ जाती है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे। देखिए, जो आपके फिक्र करता है, आपसे प्यार करता है, लड़ता है, नोक झोंक होती है ना जिंदगी में, तो असल में प्यार भी वही होता है। वो इंसान आपसे, क्योंकि अपने के ऊपर ही हक जताया जाता है, गुस्सा किया जाता है, इसीलिए अगली बार आपके साथ कोई नाराज होए, नाराजगी दिखाए आपको, थोड़ा सा गुस्सा करे, तो बस आपने उस टाइम सहन कर जाना है। और यही कि देखिए, आप ही तो हैं जिसके ऊपर वो गुस्सा कर रहा है, दूसरे के ऊपर कोई नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे को समझेगी। अगर मैं दूसरे के ऊपर गुस्सा करूंगा तो वो डबल मुझे सुनाएगा या सुनाएगी। इसीलिए अगली बार नाराज हुए तो सोचिए कि प्यार बहुत ज्यादा है और उस नाराजगी से दूर नहीं जाना है, बल्कि हमें उस सिचुएशन में उसके साथ रहना है। सो अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, ये कनेक्ट होते हैं यानी कि मुरादाबाद से, और इन्होंने अपना नाम तो नहीं मेंशन किया है, और इनका कहना है कि अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि आपके जिंदगी में ऐसा कौन है जिसे देखने से आपको चैन आता है, बिल्कुल जी हमने वही पूछा आपसे, तो इनका कहना है कि मेरी बीवी है जिसको मैं ना देखूं तो मुझे चैन करार नहीं आती है। क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा मैसेज है आपका। और यूं ही आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। चलिए फिलहाल अगला गाना भी बहुत शानदार, बहुत प्यारा है, सो इस गाने को एंजॉय करिए, लौट कर आते हैं जी।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

गुड वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट है अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एंजॉय कर रहे हैं आप, जो आप सभी के लिए प्यारी प्यारी बातें तो लेकर आते हैं गाइज। उसके साथ जो गाने होते हैं ना, बहुत प्यारे गाने होते हैं। कल ना मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता है और उसका यही कहना होता है कि मैंने ना कल, मेरे पास एक लड़के का मैसेज आया, मैं कहा ओके, तो मतलब बहुत अच्छे से बातें कर रहा था वो, फिर जब बातें अच्छे से करने लगा मेरा मन भी बदल गया, फिर मैंने भी बातें स्टार्ट कर दी और बातें हमारी इतनी हुई कि समझिए 4 दिन तक कंटिन्यू बातें चलती रही। लेकिन 5वें दिन ये हुआ कि हमने डिसाइड किया कि हम मिलते हैं किसी कैफे पर, बर्गर पिज्जा खाते हैं, यानी कि बैठकर बातें करते हैं, सो अच्छा लगे। तो लड़के की तरफ से मैसेज आते हैं ओके चलिए चलते हैं घूमने के लिए। जब वो जाते हैं घूमने के लिए तो क्या होता है, यानी कि देखिए आपको भी पता है कि लड़कियों का बस मोमोज बर्गर मिल जाए बस वही प्यार है उसके लिए, हल्का सा उसको पैम्पर कर दो वही प्यार है, हल्का सा उसकी केयर कर दो बस उतना ही चाहिए लड़कियों को। और जब वो मिली तो कहना है कि मेरी दुनिया दुनिया नहीं रही अब। तो वो लाइनें भी लिखती हैं, मोहब्बत का कोई इरादा तो नहीं था, दोस्त बनकर मिली थी। मोहब्बत का कोई इरादा तो नहीं था मेरा, पर तुझे देखा तो नियत बदल गई, तुझे देखा तो नियत बदल गई। ना जाने कौन सी किस्सा था, न जाने कौन सी किस्सा थी तेरी बातों में, कि तुमसे बात करते करते मेरी दुनिया बदल गई। तो प्यार तो ऐसा होना चाहिए गाइस कि बात करते करते कब आपकी दुनिया बदल जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। आपके जिंदगी में भी है कोई ऐसा जो आपको बहुत पैम्पर बहुत प्यार से रखता है, और मतलब गुस्सा भी होता है ना, वो प्यार वाला गुस्सा होता है, वो एटीट्यूड वाला गुस्सा नहीं होता है। अगर आपके पास ऐसा प्यार है ना तो उसको संभाल कर रखिए और अर्जेंटीना के साथ अपना मैसेज जरूर शेयर करिए। हमारा नंबर है 9837896896। तो चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमारे पास किन का आता है, ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं राहुल जी मुरादाबाद से, बुद्धि बिहार से कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि आज आप शाम को शो कर रही हूँ। हाँ जी मैं कर रही हूँ। इनका कहना है कि मैं अभी गाड़ी में हूँ राइट नाउ, और आपकी बातें जो आप बोल रही हो ना, सच बताओ बहुत प्यारी लग रही है। और मैं जैसे ही मुरादाबाद में क्रॉस किया, मैंने 89.6 मैंने FM कनेक्ट किया है, और मुझे लग रहा है कि मैं बस आप पूरी रात बोलती रहो, अरे अरे सर ऐसा मत कीजिए। फिर मैं अगर मैं पूरी रात बोलती रही तो सोचिए कल मेरी हालत ऐसी रहेगी कि मैं यहाँ आप सभी से यहाँ बैठकर बातें नहीं कर पाऊंगी। तो अब बस कनेक्ट रहिए, अब बातें करते रहेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। आपके मन में भी है कोई ख्याल तो जरूर शेयर करिए। अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, यानी कि ये प्रीत जी कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि देखिए मैम शाम होते होते ना मुझे बस ख्याल आता है तो मेरे दोस्त की, क्या बात है जी। और वो ऐसा दोस्त है, मतलब देखिए प्यार भी नहीं मान सकते उसको, लेकिन हमारी दोस्ती है, बहुत प्यारी दोस्ती है। मैं समझ रही हूँ जी, लड्डू मीठा लगने लगा है अब। इनका कहना है कि देखिए जब भी हम, मतलब मेरा ऐसा दोस्त है कि मेरा ना बहुत मतलब केयर करता है वो, मुझे कुछ भी चाहिए तो वो मुझे ला कर दे देता है, मतलब उसे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इसको क्या समझूं, कुछ मत समझिए, बस दोस्त है संजो कर रखिए, क्योंकि ऐसी दोस्ती बहुत कम मिलती है। और ऐसी दोस्ती कब आगे बदल जाए लाइफ पार्टनर के लिए वो कुछ नहीं कह सकते गाइस अभी के लिए, क्योंकि जो आपका इशारा था वो हम समझ गए हैं और उनको भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक गाना है सुन साथिया, ये गाना एंजॉय करते हैं जी।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
3: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
2: अरे वाह।
3: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
2: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

गुड वाली इवनिंग राजरीना के साथ कनेक्ट है आप एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 9:46 हो चुके हैं और आप अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो देखिए शाम का वक्त है और शाम के वक्त में जब आप नाइट में सफर करते हैं ना, तो नाइट का जो सफर होता है ना बड़ा सुहाना होता है। इतना मन करता है, बस ऐसा मन करता है पूरी नाइट आउट, यानी कि बस घूमते रहे, नाइट आउट कर देते हैं आज तो इतना सुहाना पल होता है। तो आगे बढ़ते अपने शो में। तो एक लाइन फिर से मैंने पढ़ी और मैं सोचा आप सभी के साथ साझा किया जाए। तो सुनिए जरा, अक्सर हम वहीं जाते हैं जिस गली में नहीं जाना चाहिए, भटक गए हम उन राहों में मंजिल का ठिकाना नहीं, भटक गए उन राहों में मंजिल का ठिकाना नहीं, ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था, ले गई मंजिल उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था, कुछ किस्मत की मेहरबानी कुछ हमारा कसूर था, कुछ किस्मत की मेहरबानी कुछ हमारा कसूर था, हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां कुछ पाना ही नहीं था। अक्सर हम उसी गली में जाते हैं जहां कुछ पाना नहीं होता है और वहीं अपना दिल चैन करार खो देते हैं। सो चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमारे पास किन का आता है, ये मैसेज है हमारे पास कनेक्ट होते हैं पंकज जी, जो कि ये लाइन पर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। और इनका कहना है, दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल है, दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल है, किसी के साथ दूर तक जाकर तो देखो अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल है। आय हाय क्या बात है जी, बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है आपने। सो अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, ये दिनेश जी कनेक्ट होते हैं हरथला से। और इनका कहना है, वो उनकी मोहब्बत का नया दौर है, वो उनकी मोहब्बत का नया दौर है, जहां कल हम थे वहां आज कोई और है। अरे अरे क्या बात है सर, जहां कल हम थे वहां आज कोई और है, कैसे इजहार ए इश्क, कैसे इजहार ए इश्क बया करें हम, नजरों के सामने हम और ख्वाबों में कोई और है। क्या बात है जी, नजरों के सामने हम और उसके ख्यालों में कोई और है, बस हमने उस गली जाना अब छोड़ दिया जहां हमारी कद्र नहीं होती। अरे वाह क्या

बात है जी, बहुत ही प्यारी लाइन लिखी आपने सर। सो चलिए अगले मैस गाने की तरफ बढ़ते हैं। गाना बहुत प्यारा है और इसके बाद कनेक्ट होंगे और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत।

रही क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना उड़ारिया आपने एंजॉय किया है अर्जेंटीना के साथ। और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 9:55 हो चुके हैं, और जाते जाते एक और आप सभी के लिए प्यारा सा संदेश, यानी कि लोग रूप देखते हैं, लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं। लोग सपने देखते हैं, हम तुम्हें देखते हैं। लोग सपने देखते हैं और हम तुम्हें देखते हैं, बस फर्क इतना है कि लोग पूरी दुनिया देखते हैं और हम पूरी दुनिया में तुम्हें देखते हैं मुरादाबादीज। आप सभी के लिए संदेश था, और इसी के साथ रीना लेती है यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे जी हरियाणवी अपने शो में मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, और फिर शायद 9 बजे फिर से कनेक्ट हो जाए। अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। और आप अभी सफ़र में हैं तो होले होले गाड़ी चलाइए और अपनी मंजिल तक पहुंचिए, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और आराम से गाड़ी चलाइए। और आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा गाना छोड़कर जा रही हूँ मैं, यानी कि कल फिर से कनेक्ट होंगे। और अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ, बाय जी।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, काम के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
5: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुंच गया है। गर्मी अधिक हो रही है, लू की संभावना है, अतः सभी सजग रहें। जब तक बहुत आवश्यक न हो 11 बजे से 4 बजे तक सुरक्षित जगह घर या छायादार स्थान पर रहें। मजदूरों को भी उक्त अवधि में काम एवं सुरक्षा के बीच संतुलन का नियम लागू किया जाए। साथ ही अभिभावकों से अपील है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी या लस्सी इत्यादि पेय पदार्थ के सेवन की सलाह दी जाती है। यदि जी मचलाना, दस्त, उल्टी, तेज बुखार, चक्कर इत्यादि की दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं ममता मालवीय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्त अधिकारीगण से आग्रह करती हूं कि हीट वेव लू को लेकर सतर्क रहें तथा जिला स्तरीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग है, आप भी सजग रहें। धन्यवाद।
4: याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां मिलती है जानकारियां भी, जागरूकता भी और ढेर सारा अपनापन भी।
0: एक बार फिर से दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे RJ आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त RJ रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं, ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों RJ रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
6: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आनंद, तुम बताओ तुम कैसे हो? इस गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
0: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
6: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
0: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से AC में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
6: बिल्कुल सही।
0: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं, इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
6: और स्टूडियो में है ना तब भी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
0: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है, और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गाँव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गाँव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर।
0: Okay.
1: पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियाँ सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं, तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा। नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पर हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी जिम्मेदारी
0: है, बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए।
0: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल।
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है, तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे के ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है और जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: लगाइए। तुम क्या कहोगी ना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए,
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास। अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ, फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
0: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
4: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
5: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
4: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
5: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
4: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: नमस्कार, मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज मुरादाबाद और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अखिल, और मेरे साथ है प्राची। प्राची, कैसे हो आप?
2: मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स भी बढ़िया होंगे।
6: आज ये शो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
2: हाँ अखिल, जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं पर सिर्फ सेल्फी के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं।
6: बिल्कुल सही बात, और कुछ लोग करियर चूज करते हैं सिर्फ चाचा जी के कहने पर अपने।
2: तो फिर आज का हमारा टॉपिक है करियर कंफ्यूजन से करियर क्लैरिटी तक।
6: मुरादाबाद के दोस्तों, याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं।
2: अखिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, तो आप ये कहना चाहेंगे?
6: मेरे हिसाब से सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ 3 चीजों को लिखो अपने पास, मुझे क्या करना पसंद है, दूसरा मैं किस चीज में अच्छा हूँ, और तीसरा मार्केट में किस चीज की डिमांड है।
2: और अखिल, मुझे लगता है कि एक चीज और ऐड हो गई है आजकल की लाइफ में, करियर प्रेशर से ज्यादा डेंजरस आजकल कंपैरिजन प्रेशर बन गया है। लोगों बच्चों में कंपैरिजन और कि मम्मी पापा की कंपैरिजन रहती है बच्चों को, वो कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों से, तो इससे बच्चों के लिए जो पूरा एटमॉस्फेयर बन गया है बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
6: बिल्कुल सही बात कही। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, शर्मा जी का भाई हमारे पड़ोस में, वो IIT में है।
2: अच्छा।
6: पर हाँ, पर जो एक और पड़ोसी है मिश्रा जी, उनका जो बेटा है उसका टैलेंट थोड़ा सा यूट्यूब में, मतलब वो इस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और कई चीजों पे, जैसे आजकल फूड ब्लॉगिंग है, कभी बिजनेस को लेके किसी कोई मोटिवेशनल ब्लॉगिंग है, तो वो इज लाइक अ गुड स्पीकर। वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे आके अपने आप को दिखाऊं, मगर क्या है, बगल में शर्मा जी का बेटा जो है वो IIT में लगा हुआ है, तो ये बात रहती है, सुबह सुबह यही चर्चा रहती है कि भाई मेरा बेटा तो IIT के उसमें है और तुम्हारा बेटा देखो ये फालतू की चीजें कर रहा है, तो यहाँ पे लोग कंपैरिजंस में आ जाते हैं।
2: हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पेरेंट्स का तो ये फेवरेट डायलॉग बन चुका है कि पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो, फिर अपना पैशन फॉलो कर लेना, जैसे पैशन कोई वीकेंड पिकनिक हो।
6: बिल्कुल सही कह रही हैं प्राची जी। चलिए, हम तो इस बात पे बात करते ही रहेंगे, अभी सुनते हैं बढ़िया सा गाना।

0: चलिए मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉल करता है, नाम है राहुल।
1: मैं बीकॉम कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा फ्यूचर क्या है।
0: राहुल पहले ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है।
1: मुझे पसंद है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया भी पसंद है। अच्छा राहुल, तो तुम डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करो।
0: आजकल ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक लिमिटेड नहीं रह गया है।
1: डेटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, रेडियो जॉकी।
0: पर हाँ, अगर रेडियो जॉकी करना है तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा।
1: सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने अखिल। वो लिसनर्स, आप हमें बताइए कि आप किस करियर फील्ड को चूज करना चाहेंगे। आप हमसे बातें कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर 9837896896। तो सुनते रहिए हम अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़। हमारे इस कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है।
1: तो आज अखिल आप क्या लेकर आए हमारे लिसनर्स के लिए?
0: मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ टैलेंट सिर्फ ब्रास तक लिमिटेड नहीं है।
1: वैसे ये तो सही कहा, क्योंकि हमारे मुरादाबाद के लोग बहुत सारी फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं।
0: यहाँ के यूथ ना स्टार्टअप तो शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी, फूड आउटलेट्स भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चालू कर रहे हैं।
1: अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो 2026 के लिए कुछ आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ। होम बेकरी, डिजिटल सर्विस एजेंसी, ट्यूशन सेंटर, फूड कार्ट विद हाइजीन कॉन्सेप्ट।
0: लेकिन प्लीज हर गली में ना मोमोज मत खोल देना यार। जहाँ भी जाओ ना, जिस गली में जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ बुद्धि विहार में, तो कहीं ना, मतलब वो जो अपना परशुराम चौक है और उससे थोड़ा आगे चलते हैं जब अपना हनुमान उसकी तरफ, जो हनुमान जी का पार्क है अपना, तो वहाँ पे भी भाई मोड़ पे भी वहाँ पे ही मोमोज वाला मिल जाता है। थोड़ा और आगे चला तो वहाँ पे भी एक शॉप पे मोमोज वाला है। तो प्लीज प्लीज प्लीज हर गली में हर जगह ना मोमोज नहीं होना चाहिए।
1: बस प्लीज आप ज्यादा मोमोज की बात मत करिए, बस मेरा बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का।
0: तभी ये इसलिए कह रहा था मैं, हर जगह मोमोज नहीं होने चाहिए। कम्युनिटी को ना सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोकल से खरीदो और लोकल को बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है आजकल के समय।
1: तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि लोकल से मोमोज खरीदो और लोकल को बहुत बढ़ाओ। फिलहाल दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ। बस दोस्तों आपको ऐसे आइडियाज मिलते रहेंगे एफएम मुरादाबाद पर, और आप भी हमें भेज सकते हैं हमारी मैजिकल नंबर 9837896896 पर। और रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज। आपके अपने ही कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं और प्राची लेकर आए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी।
1: तो चलिए शुरू करिए आप।
0: एक छोटे से गांव का लड़का 3 बार एग्जाम में फेल हुआ।
1: लोग हंसते थे, कहते थे तुमसे नहीं होगा,
0: लेकिन उसने हर फेलियर का फीडबैक बनाया और आज वो अपना बिजनेस चला रहा है।
1: दोस्तों, फेलियर का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।
0: लाइफ में गिरना अलाउड है, मगर रुकना अलाउड नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल आपने। तो दोस्तों, लाइफ में आप रुकिए मत, चलते जाइए, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे।
0: मगर वहाँ रुक जाना जहाँ पे आगे गाड़ी रुकी हुई हो, क्योंकि MDA में ना इस समय अच्छा खासा जाम मिलता है, PAC से लेके किले तक। तो बहुत आराम आराम से गाड़ी चलाना भाई साहब, सीट बेल्ट जरूर पहनना।
1: पर दोस्तों, टेंशन मत लेना, ये जाम शाम छट ही जाएगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हो प्राची। प्राची को तो जैसी शाम होती है ना, या प्राची का जहाँ भी कोई गोलगप्पे वाला स्टॉल दिख जाता है, प्राची की तो गाड़ी अपना भी वहाँ रुक जाती है।
1: फिलहाल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। और अगर आपके पास भी है कोई मोटिवेशनल कहानी, आपकी दोस्तों की, आपकी अपनी जिंदगी की कहानी, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर जो है 9837896896।

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: वेलकम बैक टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आप है प्राची और अखिल के साथ, और दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर। तो अखिल आप शुरू करिए।
1: अच्छा ये बताओ प्राची, सक्सेस या स्लीप?
0: सक्सेस, स्लीप बाद में।
1: चाय या कॉफी?
0: करियर टेंशन में थोड़ी बहुत चाय सही है।
1: अच्छा गवर्नमेंट जॉब या स्टार्टअप?
0: दोनों, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही, चाय कुछ भी कर लो बस मम्मी जरूर खुश रहनी चाहिए।
0: हाँ अगर मम्मी खुश है तो सब खुश है।
1: तो मम्मी को खुश करने के लिए चलिए कोई गाना बजाते हैं।

0: क्या सुना क्या मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुनाई कहाँ दिया, ये नालायक विवेक बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक?
2: अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो, आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
0: कोई काम सब तो मैं ही करूंगा ना। मामा तू लाओ इधर। चलो मामा, सभी लगाओ।

0: का डर। तो दोस्तों ये जो गाना है ये सिर्फ आपकी मम्मी के लिए डेडिकेटेड है, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: तो श्रोताओं हम एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुरादाबाद याद रखो, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते।
0: तो दोस्तों आज ही अपना गोल लिखिए और अब कल से एक्शन करना शुरू कर दीजिए।
1: अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो, कंफ्यूजन को क्लियर करो और कुछ भी मन की बात हो ना हमें जरूर मैसेज करो।
0: तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर के साथ 9837896896। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
5: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
4: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
5: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।

0: चतुर एक पैर है ना, या गोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर ना।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

¿Por

क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।